सुप्रभात, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की तिथि है 26, तदनुसार 16 मई 2026, सुबह के 5:58 और 45 सेकंड होने को आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही क्षणों में सुबह की 6 बजेंगे और 6 बजते ही आप सभी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्चस्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन

0: केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। हिंदी में समाचार के बाद आज का चिंतन, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
2: जीवन की परवाह, क्योंकि उनके हृदय में असीम करुणा थी। हाँ, वो करुणा ही तो थी जो उमड़ पड़ी थी उनके अंतरतम से। यही करुणा मानव को महामानव बना देती है। तभी तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर मानव जाति के लिए एक दृष्टांत बनकर इतिहास के पृष्ठ में अमर हो गए। मनुष्य के अंदर दया और करुणा होनी चाहिए। वो दया और करुणा अपने परिवार तक ही सीमित न होकर अड़ोस पड़ोस, परिचित अपरिचित किसी के लिए भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोक सेवा के लिए आपके पास प्रचुर धन राशि हो। आपके पास कुछ नहीं है, पर आपके हृदय में मात्र करुणा के 2-4 कण हैं तो वो भी बहुत बड़ा खजाना है। समस्याएं कहां नहीं बिछी हैं, संकटग्रस्त कौन नहीं है। सेवा और करुणा की जरूरत चारों ओर है। आपको जरूरत है उसकी चादर बिछाने की। रास्ते के हर मोड़ पर पीड़ित हैं, असहाय हैं, जरूरत है उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने की, उनके दर्द को अपना दर्द समझने की। कुछ क्षण के लिए आप स्वयं पीड़ितों के जीवन की कल्पना कीजिए, उसकी देहरी पर खड़े होकर देखिए और सोचिए। आपके हृदय में स्वयं करुणा उमड़ पड़ेगी और उमड़ी हुई करुणा के 2-4 छींटों से ही उन्हें नहलाइए। फिर देखिए उनके आशीर्वादों की फुहार, उसमें नहाकर आपको कैसी अलौकिक शांति मिलती है। छोटी छोटी सेवाओं को भी कभी छोटा मत समझिए। अड़ोस पड़ोस, मोहल्ला, रास्ता, नगर, कहीं भी आप ऐसी जरूरत देखिए, अपनी करुणा का दरवाजा तुरंत खोल दीजिए। हो सकता है आपकी करुणा भरी छोटी सी सेवा सहायता किसी को काल के गाल से निकाल दे, किसी माँ का लाल लौटा दे, किसी सुहागिन का लुटता हुआ सुहाग लौटा दे, किसी बच्चे को अनाथ होने से बचा दे, किसी वृद्ध या किसी परिवार को बेसहारा होने से बचा दे। हो सकता है इसके लिए बदले में आपको कोई कीमत ना मिले, पर आपका हृदय परमानंद से परिपूर्ण जरूर होगा। दया और करुणा रहित मानव मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गिरजाघर जाए, वो ईश्वर से बहुत दूर है। और ईश्वर के नजदीक वही है जिसने सोच लिया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सम्राट अकबर के दरबार में रहने वाले प्रधान सेनापति खानखाना रहीम, हाथ में एक पत्र है। पत्र में है सिर्फ 2 पंक्तियां, सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय। पत्र लाने वाला है एक दीन दरिद्र ब्राह्मण। रहीम सोच में है। पत्र किसी ऐरे गैरे का नहीं, ये तो उनके परम श्रद्धेय मित्र संत तुलसी का है। उन्होंने तुलसी के अधूरे दोहे को पूरा किया। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। साथ ही ब्राह्मण की थैली उन्होंने पर्याप्त अशर्फियों से भर दी। उसे धन की जरूरत थी,

0: बेटी की शादी करनी थी। वो निर्धन था। तुलसी के पहेली नुमा इशारे पर यहां रहीम ने ब्राह्मण को धन दिया। महत्व उसका नहीं है, महत्व है रहीम के भाव का, उनके उदात्त चरित्र का। क्योंकि तुलसी ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, और खानखाना रहीम मुसलमान। पर वे तो तुलसी के परम मित्र हैं, परम भक्त हैं। तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी वे प्रभावित हैं। रहीम तो काशी उनकी कुटिया में भी आए हैं। तुलसी ने उनका आलिंगन किया है, भव्य सम्मान दिया है अपनी कुटिया में। रहीम ने मोहरों की थैली भेंट की है और तुलसी के इनकार करने पर कहा है इसे रखना ही होगा, क्योंकि चित्रकूट में जो तुम संत सम्मेलन और भंडारा कर रहे हो उसमें इसे लगा देना, मैं भी उस सत्संग में भाग लेने जरूर आऊंगा। चित्रकूट में रहीम संत तुलसी के साथ बहुत दिन तक रहे थे, इसके प्रमाण भी हैं। एक दिन तुलसी ने चित्रकूट में एक हाथी को स्नान के बाद सूंड से अपने ऊपर धूल डालते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने मित्र रहीम से पूछा, धूरी धरत निज शीश पर, कहु रहीम के ही काज? और रहीम ने चट जवाब में कहा, जेहिरज मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। बात तुलसी और रहीम की नहीं, बात इन कविताओं और कवित्व प्रतिभा की भी नहीं, बात है कट्टर जात पात के उस जमाने में भी हिंदू मुस्लिम एकता की, सद्भावना की। कहां है वहां सांप्रदायिकता का द्वेष या भेदभाव? कोई भी संत या सूफी जाति पाति के प्रपंच से बहुत ऊपर होता है, वह तो मानवता का उपासक होता है। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, त्याग, परोपकार, अहिंसा और दया। उसका कोई दुश्मन नहीं होता। कबीर, नानक, रैदास आदि संत फकीर हिंदू मुस्लिम धर्मकांडों से बहुत ऊपर उठ चुके थे। उन्होंने बहुत पहले ही इस बात का अनुभव कर लिया था। सांप्रदायिक भावना से एकता का खंडन होता है, वह राष्ट्र की जड़ को खोखला करता है, हिंसा और रक्तपात कराता है। उन्होंने एकता की डोर से उसे एक करने की कोशिश की। तभी तो कहा, हिंदू कहे हम बड़े, मुसलमान कहे हम, एक मूंग दो दाल हैं, को ज्यादा को कम। उन्होंने बार बार समझाया, राम रहीम एक हैं, उन्हें दो मत जानो। अपनी आत्मा को निर्मल बनाने पर, स्वयं को सुधारने पर ही उन्होंने हमेशा जोर दिया, संपूर्ण मानव जाति एक ही परमात्मा की संतान है। जात पात के भेदभाव से परे होकर जो मानवता को मानव धर्म मानता है, जो भिन्न और विरोधी मतों को एक एकता की सुदृढ़ डोर से बांधने का प्रयास करता है, वही संत है, वही मानव है, और वही ईश्वर या अल्लाह के निकट है।
1: चिंतन आप सभी सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में सबसे पहला भजन महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में है। आइए सुने और आत्मसात करें।

और अब हरिओम शरण के स्वर में इस भजन को सुनिए। सुनते रहिए भक्ति संगीत पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: महेंद्र कपूर के गाए इसी भजन के साथ वंदना का ये सफर, भक्तिमय सफर, ये अब यहीं तक। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से श्री रामचरित मानस गान की आज की श्रृंखला,
1: एपिसोड नंबर 379।

काग भुशुंडी से श्री राम अवतार की कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ के मन का संशय मिट गया। नागपाश में एक साधारण मनुष्य की भांति बंध जाने के कारण गरुड़ को यह संदेह हुआ कि जो परम ब्रह्म परमेश्वर है वो मायापाश में किस प्रकार बंध सकता है। लेकिन इस संदेह रूपी मोह के कारण ही गरुड़ को कागभुशुंडी का सत्संग प्राप्त हुआ। गरुड़ के उद्गार सुनकर कागभुशुंडी ने कहा, हे पक्षीराज, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं। प्रभु ने आपको यहां भेजकर मेरा मान बढ़ाया है, मुझे बढ़ाई दी है। आपने मोह होने की बात कही, सो हे नाथ, जब नारद स्वयं शंभु और ब्रह्मा भी इससे नहीं बच सके तो सामान्य प्राणी की क्या पिसात। त्रिभुवन में ऐसा कौन है जिसे काम क्रोध मोह ने नहीं नचाया। परम ज्ञानी योद्धा कवि विद्वान कोई भी तो इससे नहीं बच सका है।

श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी सुन रहे थे आप सभी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हुआ है आज आपको ये बता देने का कि आपके आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से रात्रि 11:10 तक अभी से लेकर कौन कौन से कार्यक्रम प्रसारित और रिले होने हैं। कार्यक्रम विवरण थोड़ी ही देर में 6:55 पर संस्कृत में समाचार होंगे। लोक गीतों का लुत्फ उठाइए आज सुबह 7:07। आज नागपुरी और भोजपुरी लोक गीत का आनंद लेंगे आप सभी। सामाजिक वार्ता का कार्यक्रम प्रसंग सुबह 7:20 पर होगा। आज की वार्ता का विषय साहस से शिखर तक का सफर। वार्ताकार होंगी अरुणिमा सिन्हा। आज सुबह श्रोताओं 7:30 पर सुगम संगीत का लुत्फ उठाएंगे। सुबह 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज होगा, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आकाशवाणी के रांची केंद्र से 8:30 पर प्रादेशिक समाचार होगा। सुबह 8:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का मेलोडियस कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। सुबह 9:00 विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से होंगे। 10:00 हेलो हजारीबाग और 11:00 विविध भारती के कार्यक्रम। 11:58 पर कुछ विज्ञापनों के बाद 12:00 विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। और इस तरह से शाम 4:02 पर भी विविध भारती के कार्यक्रम ही चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

इसी बीच 1:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। 2:55 पर भी आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे आप सभी। शाम 4:00 आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार होगा। संध्या 5:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। 5:02 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। आज की चर्चा का विषय 2026-27 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य। 5:32 का समय खेती बारी का। किसान भाइयों का एक और कार्यक्रम है प्रादेशिक मुख्य समाचार संध्या 6:00 और 6:02 पर सुनिएगा मेहनतकश। आज की चर्चा का विषय होगा महिलाएं श्रमिकों के लिए क्या है सरकारी योजनाएं, साथ ही भेंट वार्ता और गीतों संगीत भी। 6:30 पर फिल्म संगीत का लुत्फ उठाइए। संध्या 7:00 प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर जिले में आजकल होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से, इसे हम रिले करेंगे। 7:15 पर फिल्म संगीत का दैनिक कार्यक्रम सुनिए झनकार। 7:30 पर सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। 8:00 फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होता है आपकी चाहत। 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 न्यूज एट 9। 9:15 पर स्पॉटलाइट, इन्हें हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से 9:30 पर। 10:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिए रजनीगंधा। 10:30 पर आआज के फनकार। 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और 11:10 पर कार्यक्रम का करेंगे समापन, सभा का करेंगे समापन। तो ये थे वो कार्यक्रम जिन्हें रिले होने हैं आज और प्रसारित होने हैं आज सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। कार्यक्रम विवरण ले रहे थे आप सभी, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। सुबह के 6:54 होने को है, बस कुछ ही सेकंड्स में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। संस्कृत में समाचार के बाद अब आइए सुनते हैं लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम लोक रंग में आज आपका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि सबसे पहले नागपुरी लोक गीत से कर रहे हैं आगाज। स्वर दिया आजाद अंसारी ने।

0: और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सबसे भरोसेमंद और सबसे सटीक विश्वसनीय आपका आकाशवाणी। आजाद अंसारी से नागपुरी लोकगीत सुन रहे थे हम सभी। अब आइए शारदा सिन्हा से सुनते हैं ये भोजपुरी लोकगीत।

लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम चल रहा है आपके आकाशवाणी केंद्र से लोक रंग। भोजपुरी लोक गीतों का लुत्फ उठा रहे हैं आप सभी शारदा सिन्हा के स्वर में।

0: और इसी भोजपुरी निर्गुण के साथ लोक रंग यहीं तक। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 होने को हैं और अब प्रसंग सामाजिक वार्ता का ये कार्यक्रम लीजिए, सुनिए। आज की वार्ता का विषय है साहस से शिखर तक का सफर। वार्ताकार है अरुणिमा सिन्हा।
1: अरुणिमा सिन्हा, साहस से शिखर तक का सफर। भगवान ने अपनी सृष्टि में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में रचा है। उसे सोच विचार करने की शक्ति प्रदान की है, कार्य कर सकने के लिए हाथ पैर प्रदान किए हैं, असीम बल और क्षमताएं प्रदान की हैं, अनुभव करने के लिए मन दिया है, उत्साह और साहस जैसे महान गुणों से संपन्न किया है। ईश्वर प्रदत्त सभी गुणों से संपन्न होकर भी यदि मनुष्य परिस्थितियों के सामने घुटने टेक कर बैठ जाए और निराशा के अंधेरे में स्वयं को भटकने दे तो यह उसकी अपनी श्रेष्ठता का अपमान तो है ही, उस परमात्मा का भी अपमान है जिसने उसे बनाया है। अतः भूल कर भी निराशा की छाया मन तथा आत्मा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। बुद्धिमान लोग परिस्थितियों की विषमता की मार पड़ने पर भी अपनी मानसिकता को, अपनी क्षमता को तथा अपनी दृढ़ता को कभी भी हाथ से नहीं जाने देते। वे सुख के समान दुख को भी निश्चित मानकर चुपचाप सब बर्दाश्त कर लेते हैं। अपने कठोर परिश्रम तथा आत्मविश्वास के सहारे अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तथा विकास की ओर अग्रसर रहते हैं। उर्दू में एक कहावत भी है, हिम्मते मर्दा मतते खुदा, अर्थात जो मनुष्य किसी कार्य के लिए स्वयं हिम्मत करता है उसे खुदा भी उसी की सहायता करते हैं। हमारे देश भारत की पवित्र धरती पर कई कर्मवीरों ने जन्म लेकर यह सिद्ध किया है। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीरों के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीरों के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। ऐसे ही कर्मवीरों में पहाड़ के समान मजबूत हौसला रखने वाली अरुणिमा सिन्हा का महत्वपूर्ण स्थान है। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1988 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में हुआ था। बचपन से ही अरुणिमा सिन्हा अत्यधिक मेहनती तथा साहसी थी। अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश से ही पूरी की, साथ ही पर्वतारोहण का कोर्स भी किया। बचपन में अरुणिमा को वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलने में ज्यादा मन लगता था, अतः वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी के रूप में उसने अपनी पहचान बनाई। इसी दौरान एक बड़े हादसे ने उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। 11 अप्रैल 2011 राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। बीच रास्ते में लुटेरे ने उनके सोने की चैन छीनने का प्रयास किया। अरुणिमा ने अत्यधिक साहस का परिचय देते हुए लुटेरों का सामना किया। जब अपराधी सफल नहीं हुए तो उन्होंने अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ट्रेन से बाहर फेंकने के कारण उनकी कमर और पेट में गहरी चोट आई। वे उठने की हालत में नहीं थी। पास वाले ट्रैक पर एक ट्रेन उनकी तरफ आ रही थी। उन्होंने ट्रैक से हटने की भरपूर कोशिश की लेकिन असफल रही। ट्रेन उनके बाएं पैर से होकर निकल गई जिससे उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। पूरे 7 घंटों तक अरुणिमा पटरी पर ही असहाय पड़ी रही। उनका पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था पर वह मानसिक रूप से जागृत थी। चूहे उनके कटे पांव को कुतर रहे थे पर वे उन्हें भगा पाने में असमर्थ थी। सुबह कुछ ग्रामीणों ने उन्हें देखा और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए उनकी बाएं टांग काटकर अलग कर दिया। बरेली के स्थानीय अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कॉलेज होते हुए उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचाया गया। 4 महीने तक उनका दिल्ली के

0: एम्स में इलाज करवाया गया। पैर के कटने की वजह से उनके कृत्रिम पैर लगाया गया। इस हादसे ने उन्हें लोगों की नजरों में भले ही असहाय बना दिया, पर वह खुद को असहाय नहीं देखना चाहती थी। दिल और दिमाग को झकझोर देने वाली इस घटना के बाद भी उसने अपना आत्मविश्वास कायम रखा। उन्होंने फैसला किया कि अब वह वॉलीबॉल नहीं जिंदगी की सबसे कठिन खेल खेलेंगी। ऐसी स्थिति में बिस्तर पर पड़े हुए ही अरुणिमा ने यह संकल्प लिया कि दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का। उन्होंने ईश्वर से कहा, तूने मुझे विकलांग बनाया है, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। अब यह विकलांग विश्व के सबसे ऊंची चोटी पर ही तुम्हें धन्यवाद देगी। कृत्रिम पैर लगाए जाने के बाद अरुणिमा ने अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास आरंभ किया। दुर्घटना से पहले अरुणिमा ने पर्वत पर चढ़ने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो भी उसके इस संकल्प को के बारे में सुनता वह उसका मजाक उड़ाता, पर अरुणिमा अपने निश्चय पर अटल रही। अरुणिमा के पूरे परिवार ने उनका हौसला बढ़ाया, खासकर उनके भाई ओम प्रकाश सिन्हा ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया। अरुणिमा के पूरे परिवार को यह उम्मीद थी कि अरुणिमा अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर अपनी मंजिल जरूर प्राप्त करेंगी। अस्पताल से निकलने के बाद सामान्य लोग घर जाकर आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन अरुणिमा सिन्हा अपने अधमरे जख्मों के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने प्रेरणा स्रोत बछेंद्री पाल के पास पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। बछेंद्री पाल ने अरुणिमा की शारीरिक दशा देखी और उसका हौसला भी। उन्होंने अरुणिमा की पीठ थपथपाकर कहा, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा, तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से कहीं बड़ा है। बछेंद्री पाल से मिलना अरुणिमा के लिए वरदान साबित हुआ। वह दुगने आत्मविश्वास से भर उठी। बिना समय गवाए उसने उनसे पर्वतारोहण के सारे नियम सीख लिए। उनके मार्गदर्शन में ही अरुणिमा ने पर्वतारोहण का अभ्यास शुरू किया। प्रारंभ में अरुणिमा की शारीरिक दशा ने उसे कई बार निराश किया, क्योंकि तन मन का भरपूर साथ नहीं दे पा रहा था। कई बार वह हताश हो जाती थी तथा उनके कदम रुकने लगते थे, लेकिन अंत में जीत उनके हौसले की ही हुई। सच ही कहा गया है कि व्यक्ति तन से अपंग नहीं होता, यदि मन में विश्वास हो तो सफलता उसके कदमों को अवश्य चूमती है। 21 मई 2013 को सुबह के 10:55 पर आखिर वह घड़ी आ ही गई जब अरुणिमा का सपना साकार हुआ। अरुणिमा सिन्हा, जिन्हें लोग विकलांग समझ रहे थे, उसी ने अपने संकल्प तथा दृढ़ निश्चय के बलबूते पर दुनिया के छत पर खड़ी होकर तिरंगा लहराया। उस समय वह इतनी भाव विभोर हो रही थी मानो चीख चीख कर उन लुटेरों को जवाब दे रही हो जिन्होंने उनकी बर्बादी चाही थी और एक अवला समझकर चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। अरुणिमा ने विश्व में मिसाल कायम किया और यह दिखा दिया कि हाथ पैर से कोई विकलांग नहीं होता, बल्कि विकलांगता तो एक मनोदशा है। अरुणिमा की कमजोरी ही उसकी शक्ति बन गई। उसने जो लक्ष्य बनाया था उसमें वह पूरी तरह से जुट गई। अपने लक्ष्य तथा अपने बीच उसने किसी को नहीं आने दिया और अंत में यह दिखा दिया कि मनुष्य यदि चाह ले तो असंभव को भी संभव बना सकता है। अंत में इन प्रेरणादायी उक्तियों के द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है।
1: ये ऊर्जावान वार्ता, साहस से शिखर तक का सफर, अरुणिमा सिन्हा। वार्ताकार थी बबीता मिश्रा। और इसके साथ ही सामाजिक वार्ता।

का यह कार्यक्रम प्रसंग अब यहीं तक। सुबह के 7:30 और 5 सेकंड्स होने को अब सुगम संगीत का लुत्फ उठाएंगे हम सभी। सबसे पहले सुगम संगीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत आशा भोसले के इस गजल के साथ करते हैं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: और सुगम संगीत में अब आखिर में लव इज ब्लाइंड, इस एल्बम से हमने जगजीत सिंह की आवाज को आप तक पहुंचाया। इसी गजल के साथ सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है।

आप सभी सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। सुबह 8:30 पर प्रादेशिक समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर ये शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को

0: फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
3: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
4: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1.5 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी

0: आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह स्ये फेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में 5 अरब डॉलर का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपये महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपये बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Akashwani presents Morning News. Good morning, I am VC Pramod. The headlines. India and the UAE signed slew of agreements including setting up strategic petroleum and gas reserves in India. Prime Minister Narendra Modi reaches Netherlands on second leg of his five-nation tour. Prime Minister Modi rejects media report imposing tax on foreign travel. CBSE announces window for re-evaluation of answer sheets for class 12 students. Israel and Lebanon extend ceasefire for 45 days. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Malaysian duo in semi-finals of Thailand Open. India and the UAE have signed a series of landmark agreements covering strategic petroleum reserves, long-term LPG supply and defence cooperation. The pacts were inked following high-level talks between Prime Minister Narendra Modi and President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, held amid the ongoing West Asia conflict. The UAE has also pledged investments worth $5 billion in India. Prime Minister Modi reached UAE yesterday on the first leg of his five-nation tour. One of the pacts include strategic collaboration agreement signed between Indian Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company to strengthen India's energy security, including cooperation in petroleum reserves and possible collaboration on liquid natural gas and liquefied petroleum gas LPG storage facilities. The Ministry of External Affairs in a statement said the agreement will enhance the UAE's participation in India's strategic petroleum reserves to 30 million barrels and set up strategic gas reserves in India. The two sides also signed a separate strategic collaboration pact on LPG, which is supposed to ensure long-term supply of the cooking fuel widely used in India. India and the UAE also signed a framework for a strategic defence partnership which focuses on defence industrial collaboration, technology sharing, innovation and regional security cooperation. Prime Minister Narendra Modi arrived in the Netherlands late last night on the second leg of his five-nation tour aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen upon his arrival at the Amsterdam airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. Our correspondent covering the Prime Minister's Netherlands visit has filed this report.
1: During the visit, the Prime Minister will hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on their majesties the King and the Queen. This visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. On Saturday, Prime Minister Modi will address the Indian communities and meet CEOs of leading Dutch companies. Several important agreements are expected to be signed, particularly in the field of semiconductor chips and AI, where Netherlands stands as a global leader. From the trade perspective, Netherlands is India's key economic partner, one of the largest export destinations as well as investor in India. Both the countries have robust partnership and cooperations in the fields of water management, renewable energy, green hydrogen economy, agriculture technologies and health. This is Shushru Sharma for Akashwani from The Hague, Netherlands.
0: After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Gothenburg in Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. Mr. Modi will also hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. The two prime ministers will also address the European Round Table for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with President of the European Commission Ursula von der Leyen. Prime Minister Narendra Modi has reiterated government's commitment to improving ease of doing business and ease of living for the countrymen. In a social media post, Mr. Modi rejected a media report on imposing cess, tax or surcharge on foreign travel. He said the report is completely false and there is not an iota of truth in it. The Prime Minister said there is no question of imposing any such restrictions on foreign travel. The government has imposed a special additional excise duty of 3 rupees per litre on export of petrol. According to official gazette notifications issued by the Ministry of Finance yesterday, the special additional excise duty on diesel exports has been brought down to 16 rupees 50 paise per litre from 23 rupees. The special additional excise duty on aviation turbine fuel, ATF, has also been reduced to 16 rupees from 33 rupees a litre. The revised rates will remain in force for the next fortnight beginning today. There has been no change in the existing excise duty rates for petrol and diesel for domestic consumption. Union Home Minister Amit Shah has said India has set a national goal of achieving a drug-free India by 2047 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He said Indian security agencies have prepared a roadmap to dismantle drug syndicates and are actively working towards this objective. Delivering the R.N. Kaur Memorial Lecture in New Delhi yesterday, the Home Minister said drug trafficking is not merely a law and order issue, but one that has a long-term impact on society and future generations, requiring a comprehensive response. In West Bengal, an FIR has been registered against Trinamool Congress leader and Member of Parliament Abhishek Banerjee in connection with alleged provocative remarks made during the campaigning for the recently concluded West Bengal Assembly polls. The complainant alleges that certain remarks, including comments directed at Union Home Minister Amit Shah, were widely circulated on social media, including the MP's official Facebook page. Meanwhile, in a separate development, the West Bengal government has suspended 3 senior IPS officers, including former Kolkata Police Commissioner Vineet Goyal, in connection with alleged lapses in the investigation of the R.G. Kaur Medical College rape and murder case. Announcing the decision, the Chief Minister said serious procedural irregularities were found in the handling of the case. West Bengal Chief Minister has also called for greater transparency in assembly proceedings by proposing live streaming of question hour, debates, bills and budget sessions. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIRNewsAlerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Central Board of Secondary Education has issued a notice outlining post-result declaration facilities for Class 12 students, reaffirming its commitment to a fair and transparent evaluation process. In the notice, the board said students dissatisfied with their results can avail a 2-stage review system. In the first stage, students may apply online for scanned copies of their evaluated answer books, which can be downloaded for review. In the second stage, students can seek verification of discrepancies or request re-evaluation of specific answers based on the marking scheme. CBSE said applications for scanned copies can be submitted online from the 19th to the 22nd of this month at a fee of 700 rupees per subject. Applications for verification and re-evaluation can be submitted between the 26th and the 29th of this month. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan has said no poor person in India will remain without a permanent house, stating that providing pakka houses for all is a key commitment of the central government. Mr. Chauhan was addressing the gathering after inauguration of completed houses and a state-level award ceremony under the Maha Avas Abhiyan held at Satara in Maharashtra.
2: This is Prime Minister Narendra Modi's resolve that no poor person on the soil of India will live in a kacha house. Every poor family will be provided with a permanent pakka roof. Maharashtra has received nearly 30 lakh houses within a span of about 1 year, something unprecedented in history.
0: Israel and Lebanon have agreed to a 45-day extension of their ceasefire after another round of talks in Washington. We have a report.
3: U.S. State Department spokesperson Tommy Pigott said the April 16 cessation of hostilities will be extended by 45 days to enable further progress after America hosted 2 days of highly productive talks between Israel and Lebanon, which concluded yesterday. In a social media post, Mr. Pigott said the U.S. State Department will reconvene the political track of negotiations on 2nd and 3rd of June. In addition, a security track will be launched at the Pentagon on 29th of this month with military delegations from both countries. He further said the U.S. hope these discussions will advance lasting peace between the two countries, full recognition of each other's sovereignty and territorial integrity, and establishing genuine security along their shared border. Meanwhile, the Israeli Air Force continued its attack on infrastructure linked to Hezbollah group in Lebanon. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
0: U.S. President Donald Trump has said that the Strait of Hormuz will be opened and that the United States will not allow Iran to acquire a nuclear weapon. In an interview with a television channel, Mr. Trump defended America's actions amid the West Asia crisis, saying he's going to do what's right. The U.S. president also criticized Iran over ongoing negotiations with the United States, alleging that agreements with Tehran are not consistently honored. Mr. Trump said that every time Iran makes a deal, it later acts as if the conversation never happened. He reiterated that Iran must not be allowed to obtain nuclear weapons. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face Malaysian shuttlers Noor Izzuddin and Goh Zee Fee in semifinals of the Thailand Open in Bangkok today. Earlier, the Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami 21-12, 21-13 in the quarterfinal clash yesterday. Meanwhile, other ace Indian shuttlers, including P.V. Sindhu and Lakshya Sen, bowed out of the tournament. Sindhu lost 21-19, 18-21, 15-21 to world number 3 Akane Yamaguchi of Japan in the women's singles quarterfinal. In IPL cricket, hosts Lucknow Super Giants defeated Chennai Super Kings by 7 wickets at the Ekana Stadium last night. Chasing a target of 188 runs, Lucknow Super Giants overhauled the winning mark in 16.4 overs, riding on Mitchell Marsh's fabulous innings of 90 runs in just 38 balls. Marsh was also adjudged player of the match. In today's fixture, hosts Kolkata Knight Riders will take on Gujarat Titans at the iconic Eden Gardens this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. The Indian Met Department has forecast heatwave conditions over Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha today. The weather agency has also predicted hot and humid weather conditions over Konkan and Goa during the day. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
4: Thank you, Pramod. NEET paper leak continues to grab newspaper front page. NEET insider held for paper leak. Government says exam to be online from next year. Leads the Indian Express, while the Times of India headlines NEET retest to be held on June 21st. CBI arrests retired chemistry professor in Latur. Most papers also carry the story of petrol and diesel prices being hiked by 3 rupees a litre, even though LPG and PNG prices remain unaffected. Economic Times headlines, turmoil spills over. Mostly all papers lead with the story of Madhya Pradesh High Court holding that the Bhojshala complex in Dhar town is a temple dedicated to Goddess Saraswati and barring Muslims from offering Friday prayers. Times of India headlines, disputed Bhojshala site a temple, declares HC. In its editorial titled When Trump and Xi Met, the Hindustan Times says that their meeting in Beijing failed to deliver any big deal. In April 2025, U.S. President Donald Trump fired the first shots in the trade war against China and the rest of the world. Some countries quickly capitulated, but the Chinese dug in their heels and responded in kind. The paper concludes what the meeting has achieved is that the two most powerful men are talking and open to more talking. And finally, the Hindu reports monsoons to arrive 1 week earlier on the 26th of May in Keralam. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and UAE signed slew of agreements including setting up strategic petroleum and gas reserves in India. Prime Minister Narendra Modi reaches Netherlands on second leg of his five-nation tour. Prime Minister Modi rejects media report imposing tax on foreign travel. CBSE announces window for re-evaluation of answer sheets for class 12 students. Israel and Lebanon extend ceasefire for 45 days. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Malaysian duo in semi-finals of Thailand Open. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। चिकित्सा के क्षेत्र में झारखंड को बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने दो मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 250 करने की दी मंजूरी। कोयला राज्य मंत्री की रांची में बड़ी घोषणा। देश की 147 बंद कोयला खदानों का किया जाएगा कायाकल्प। बड़े पैमाने पर होगा फलदार वृक्षारोपण और मत्स्य पालन। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। देवघर त्रिकूट रोप वे हादसे की जांच में देरी और प्रशासनिक लापरवाही पर उठाए गंभीर सवाल। रांची में झारखंड और कर्नाटक के बेल्लारी चैंबर ऑफ कॉमर्स की संयुक्त बैठक। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और क्रिटिकल मिनरल्स में निवेश पर बनी सहमति। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए जारी किया आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आज और कल 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत धनबाद के एसएनएम, एमसीएच और जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाकर 250 की जाएंगी। इस परियोजना के लिए कुल 375 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। रांची में आयोजित पर्यावरण कार्यशाला में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे शामिल हुए। उन्होंने घोषणा की कि देश की 147 बंद खदानों का कायाकल्प कर वहां फलदार पौधे लगाए जाएंगे और मछली पालन होगा। बाद में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने हेमंत सरकार पर कोयला चोरी रोकने में नाकाम रहने का आरोप भी लगाया।
6: पूरे झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हैं। जितना सपोर्ट मिलनी चाहिए नहीं मिल रहा है, जिसके चलते परेशानियां हो रही है और आम जनमानस को भी परेशानी हो रही है कि जितना ताकत के साथ हमको समर्थन मिलना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिला है। लेकिन कोयला मंत्रालय इस पे मंथन कर रहा है कि हम अपनी फोर्स, अपनी ताकत और बढ़ाएं जिससे हम चोरी रोक सकें।
5: राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इस सिलसिले में 22 मई को राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। अभियान के तहत 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा ने बताया कि फर्जी और मृत मतदाताओं को सूची से बाहर करने के लिए भाजपा के बूथ स्तरीय एजेंट बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे।
7: क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ के जो वोटर लिस्ट बने हैं, इस वोटर लिस्ट में अनेक ऐसे नाम शामिल हो गए जो भारत के नागरिक नहीं है। जो नाम शामिल है वो या तो मृत पाए गए हैं, ऐसे बहुत सारे नाम इसमें जुड़े हुए हैं जिनका संशोधन करना इस एसआईआर के माध्यम से बहुत जरूरी है।
5: इधर कांग्रेस भी एसआईआर को लेकर तत्पर है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने सभी जिला अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्रों में बूथ स्तर के एजेंटों यानी बीएलए की नियुक्ति जल्द पूरी करने का कड़ा निर्देश दिया है।
8: एसआईआर के काम को सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष देखेंगे और सभी को जिम्मेदारी अलग अलग प्रमंडल की दी गई है। हम समझते हैं सभी लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक दो दिन में हम लोग दौरा का कार्यक्रम बना रहे हैं और हर जिले में जो हमारे बीएलए बने हैं उनसे बात करेंगे।
5: राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत आज से डोर टू डोर मकान गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए प्रगणकों की टीमें राज्यभर में घर घर जाकर मकानों का विवरण दर्ज करेंगी। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय कार्य में अपना सहयोग दें। भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर देवघर त्रिकूट रोपवे हादसे की जांच में देरी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि हादसे के 4 साल बाद भी पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला है और प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के चैंबर भवन में झारखंड और कर्नाटक के बेल्लारी चैंबर ऑफ कॉमर्स की संयुक्त बैठक हुई। इसमें उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने झारखंड को खनिज समृद्ध औद्योगिक पावर हाउस बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों ने व्यापारिक साझेदारी और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री प्रशासनिक और स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। समाहरणालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बिना आईडी कार्ड के कर्मी को शोकॉज करने और कुष्ठ पीड़ितों के लिए बोरिंग कराने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने सदर अस्पताल का जायजा लेकर मरीजों का हाल जाना और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए।
9: सदर हॉस्पिटल रांची के पेशेंट से भी हम लोगों ने बातचीत की है और अटेंडेंट से भी। साफ सफाई के मामले में अच्छा मेंटेन किया जा रहा है सदर हॉस्पिटल में, और डॉक्टर्स की भी और स्टाफ की भी अच्छा सुविधा है। यहाँ जांच जो हो रही है सीटी स्कैन का, एमआरआई का, अल्ट्रासोनोग्राफी, लगभग जीरो पेंडेंसी है, उसी दिन रिपोर्ट भी आ जाती है।
5: दुमका जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा चुटोनाथ धाम के पास वन विभाग ने एक भव्य बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण कराया है। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बने इस चुटोनाथ पार्क का उद्घाटन जामा विधायक डॉ. लुईस मरांडी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस खूबसूरत पार्क में मनोरंजन के साथ साथ लोगों को पेड़ पौधों और बोटानिकल पहलुओं की जानकारी भी मिलेगी।
10: बाबा चुटोनाथ के नाम से यह पार्क बना है, उनको समर्पित करते हुए इस क्षेत्र को निश्चित रूप से बड़ा सौगात मिला है। सभी का स्वास्थ्य के लिए, आने जाने वाले लोगों के लिए भी यह पार्क एक अहम भूमिका निभाएगा।
5: दुमका से दिल्ली के बीच सीधा रेल संपर्क आसान बनाने के लिए नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन सेवा को मंजूरी दी गई है। यह ट्रेन 22 मई से प्रत्येक शुक्रवार दुमका से आनंद विहार के लिए रवाना होगी। दुमका सांसद नलिन सोरेन ने इसे संताल परगना के विकास के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए केंद्र सरकार की सराहना की है। राज्य में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल रांची, धनबाद और बोकारो समेत कई जिलों में तेज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लोहरदगा जिला स्थापना दिवस के अवसर पर आज से 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। आज बीएस कॉलेज स्टेडियम में क्रिकेट, फुटबॉल, कुश्ती और बैडमिंटन के कड़े मुकाबले होंगे। वहीं कल सुबह 6 बजे नए समाहरणालय से रन फॉर लोहरदगा का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद फुटबॉल और रस्साकशी की प्रतियोगिताएं होंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, 4 वर्षों में पेट्रोल डीजल के दाम में पहली बार सरकार ने की बढ़ोतरी। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, झारखंड हाईकोर्ट में 18 मई से होगा ग्रीष्मकालीन अवकाश, जरूरी मामलों की सुनवाई करेगी 3 बेंच। हिंदुस्तान के अनुसार आंधी और बारिश के बीच ठनका से राज्य में 7 मरे। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है जिसमें धार भोजशाला को वाघ देवी मंदिर माना गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। चिकित्सा के क्षेत्र में झारखंड को बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने दो मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 250 करने की दी मंजूरी। कोयला राज्य मंत्री की रांची में बड़ी घोषणा। देश की 147 बंद कोयला खदानों का किया जाएगा कायाकल्प। बड़े पैमाने पर होगा फलदार वृक्षारोपण और मत्स्य पालन। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। देवघर त्रिकूट रोपवे हादसे की जांच में देरी और प्रशासनिक लापरवाही पर उठाए गंभीर सवाल। रांची में झारखंड और कर्नाटक के बेल्लारी चैंबर ऑफ कॉमर्स की संयुक्त बैठक। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और क्रिटिकल मिनरल्स में निवेश पर बनी सहमति। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए जारी किया आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आज और कल 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, एक रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ के चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए सामर्थ्यवान है, चलते रहेंगे।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है और मैं आपकी रेडियो सखी मोनिता पुनः स्वागत कर।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हुआ मेलोडियस फिल्म संगीत के कार्यक्रम को सुनने का और वो कार्यक्रम आपका अपना ही है मॉर्निंग मेलोडी। तो चलिए मॉर्निंग मेलोडी में सबसे पहले चंबल की कसम इस फिल्म का ये गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में।

0: आधार टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: A Love Story, इस फिल्म के इसी गीत के साथ मॉर्निंग मेलोडी का ये सफर यहीं तक।

0: मॉर्निंग मेलोडी सुन रहे थे आप सभी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को है विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग यही संपन्न होता है। कलाकार थे श्रीकांत महतो और साथे। अब से कुछ ही देर में हम हाजिर होंगे अगले कार्यक्रम के साथ।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और मैं मोनिता आपकी रेडियो सखी स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रससंजन में। दोस्तों क्या खूब कहा है किसी ने कि कोई पूछ रहा है मुझसे मेरी जिंदगी की कीमत, मुझे याद आ रहा है तेरा हल्के से मुस्कुरा देना।

उसे समझने का कोई तो रास्ता निकले। मैं चाहता भी यही था कि वो बेवफा निकले। हाले दिल हम भी सुनाते, लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब ये याद आया।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पुनः स्वागत है आप सभी साथियों का कार्यक्रम रसंजन में। दोस्तों क्या खूब कहा है किसी ने कि उसके वादे से इतना तो साबित हुआ कि वो पासे ताल्लुक तो है। ये अलग बात है कि वो है वादा शिकन, ये भी कुछ कम नहीं, उसने वादा तो किया।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।

यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है और प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज आप सुनेंगे सितार पर राग रागेश्वरी में आलाप और जुड़ के बाद दो गति प्रस्तुत है। विलंबित गत तीन ताल में और द्रुत गत एक ताल में निबद्ध है। गायक कलाकार है चिर सत्य ठाकुर और तबले पर संगत कर रहे हैं संदीप चटर्जी।

पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

0: साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।
1: जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा, जुनू के आग में उबलती।

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर

क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

0: विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।
1: कांधे पे सूरज

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 10 बजे हैं और 10 बजते ही आपको इंतजार होता है आपके अपने कार्यक्रम हेलो हजारीबाग का।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स

हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।

हेलो हजारीबाग, आज 16 तारीख की सुबह एक घंटे के लिए सारे अपडेट्स और अपडेट्स से जुड़े हुए गीत लेकर हाजिर आपका दोस्त माणिक चक्रवर्ती कहता है सबको नमस्कार जोहार। आज एक तरफ तो वट सावित्री पूजन चल रहा है, उस पर चर्चा करेंगे कि ये क्यों होता है और इसकी मान्यताएं क्या है, और विश्व प्रकाश दिवस भी है तो प्रकाश और उसके गुण की विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। इधर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और मौसम का हाल भी कुछ उल्टा पुल्टा सा है। ऐसे में सब कुछ ठीक करने के लिए और अपडेट्स हो जाने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि हम कहने आपसे आ गए, आप भी कहिए हमसे हेलो हजारीबाग।

हम जब भी मिलते हैं और हेलो करते हैं, प्रणाम करते हैं और सादर नमस्कार करते हैं, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, क्या हाल है आपका। तो उसी हाल का हाल लेने के लिए गीत के रास्ते से होकर गुजरते हैं।

तो साथियों, हालचाल तो हो गया, अब शुरू तो हो चुका है ये कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं हेलो हजारीबाग। तो जान ले कि हालचाल के साथ तापमान का क्या हाल है। तापमान और मौसम का हाल जो है वो दिन का, आज का जो अधिकतम डिग्री सेल्सियस है वो 38 डिग्री सेल्सियस है श्रोताओं, और रात का न्यूनतम डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री सेल्सियस है। और हजारीबाग की अगर बात करें, क्योंकि हम हेलो हजारीबाग कह रहे हैं और ये कार्यक्रम आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम है, और मौसम से जुड़ी जब बात है तो हजारीबाग में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। हाँ, दोपहर बाद बादल छाए रहे। हजारीबाग में कल शुक्रवार को मौसम का दोहरा रूप देखने को मिला। सुबह से ही तेज धूप थी और भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। दिन के शुरुआती हिस्से में आसमान साफ था, जिससे तेज धूप और उमस ने आम जनजीवन को काफी प्रभावित किया। दोपहर 1 बजे के बाद मौसम ने अचानक बदलाव कर दिया और आसमान बादलों से ढक गया, और इसके साथ ही उसमें और भी उमस में वृद्धि हो गई। शाम होते होते बादलों की गतिविधि और बढ़ गई, जिससे कई क्षेत्रों में गरज और चमक के साथ तेज हवा चली। हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से थी, और मैं समझता हूं कि 50 से 60 किलोमीटर के प्रति घंटे के रफ्तार से भी तो चली है, और ये मौसम का उल्टा पुल्टा हाल है। और ऐसे में एक उल्टा पुल्टा और समाचार जो सीधे तौर पर हमारी जेब से जुड़ा है, जो उल्टा पुल्टा तो कहा ही नहीं जा सकता। जिले में अब आपको 102.05 रुपए के डीजल और 96.88 पैसे डीजल बिकेगा, और पेट्रोल 102। तो देश भर में तो 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है सुबह से ही, लेकिन पंपों पे लाइन लगे हुई है। अगर हजारीबाग की बात करें तो जिले में पेट्रोल और डीजल को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। डीजल 96.88 रुपए और पेट्रोल 102.05 रुपए के दर पर पहुंचा, और 3 रुपए की बढ़ोतरी होने के बाद सुबह से पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लाइन लग गई। लोग वाहनों की टंकी अपनी जो है वो फुल करवा रहे हैं। लोगों का मानना है कि ईरान युद्ध के चलते ये सब हो रहा है। यही हालत रहे तो पेट्रोल डीजल के दामों में और भी बढ़ोतरी हो जाएगी। इतना ही नहीं, आपूर्ति भी बंद हो सकती है। ईरान और इसराइल के बीच छिड़ा युद्ध का असर अब अन्य देशों पर भी पड़ने लगा है। भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पहले तो गैस की किल्लत हुई, अब पेट्रोल और डीजल की भी ये किल्लत दिखाई दे रही है। शुक्रवार को देश भर में, हजारीबाग ही नहीं साथियों श्रोताओं, पेट्रोल और डीजल की दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। ये वृद्धि प्रति लीटर 3 रुपए की हुई है। और इधर हजारीबाग की ओर रुख करें तो जिला प्रशासन ने पंप को और पेट्रोल पंप को स्टोर जो है वो डीजल स्टोर रखने के निर्देश भी दिए हैं। पेट्रोल पंप पर लाइन लगी देख अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं लोग। तो हम तो यही कहेंगे कि इतनी अफरा तफरी नहीं है, 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आप आराम से अपने वाहनों में पेट्रोल डलवाएं, डरे नहीं। और बंद होने के, जैसे डीजल और पेट्रोल की जो आपूर्ति है वो बंद होने के डर से टंकी फुल मत करवाएं। और इसके साथ ही अब जो समय हुआ है वो हुआ है कि आज वट सावित्री पूजन है। तो वट सावित्री पूजन के दिन हम क्या करते हैं, क्यों होता है ये पर्व, इसकी मान्यताएं क्या है, आइए अब इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए।

श्रोताओं, वट सावित्री पूजा एक ऐसा पर्व जहां आस्था भी है, प्रेम भी है, समर्पण भी है और भारतीय संस्कृति की अद्भुत शक्ति भी है। बरगद की छांव में बसी है दुआओं की लड़ी, सावित्री के साहस से सजी है हर नारी की कड़ी। सात जन्मों तक साथ निभाने की यह प्रार्थना है। वट सावित्री केवल व्रत नहीं, प्रेम की परिभाषा है। हेलो हजारीबाग के श्रोताओं, ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला वट सावित्री व्रत जो है वो आज है। विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है ये पर्व। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए उपवास रखती हैं और बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करती हैं। तो आखिर क्यों मनाया जाता है वट सावित्री व्रत? वट सावित्री व्रत जो है, इस पर्व के पीछे एक अत्यंत प्रेरणादायी कथा जुड़ी है, सावित्री और सत्यवान की कथा। कहा जाता है कि राजकुमारी सावित्री ने सत्यवान नामक राजकुमार से विवाह किया, लेकिन ऋषियों ने पहले ही बता दिया था कि सत्यवान की आयु बहुत कम। फिर भी सावित्री ने अपने प्रेम और विश्वास को नहीं छोड़ा। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, उस दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गए और बरगद के पेड़ के नीचे उनका प्राण निकल गया। तभी यमराज उनके प्राण लेने आ गए, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वह यमराज के पीछे पीछे चलती रही। अपने ज्ञान, तप, समर्पण और दृढ़ निश्चय से उन्होंने यमराज को इतना प्रभावित किया कि अंततः यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। यही कारण है कि यह व्रत अटूट प्रेम, निष्ठा और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें बरगद यानी वट वृक्ष का क्या महत्व हुआ? अब सवाल यही तो है। दरअसल भारतीय परंपरा में वट वृक्ष को बहुत पवित्र माना गया है। यह पेड़ लंबी आयु, स्थिरता और जीवन शक्ति का प्रतीक है। इसकी जड़ें जितनी गहरी होती हैं, उसका विस्तार उतना ही विशाल होता है। मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। बरगद हमें यह भी सिखाता है कि परिवार की जड़ें मजबूत हों तो जीवन हर तूफान में अडिग रहता है। आज आधुनिक समय है और ऐसे में वट सावित्री का क्या संदेश होगा? दोस्तों, आज के समय में वट सावित्री केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं रही, बल्कि रिश्तों की मजबूती का संदेश भी दे रही है। यह पर्व हमें बता रहा है कि विश्वास, धैर्य और समर्पण से हर कठिनाई को हराया जा सकता है। आज जब रिश्तों में जल्दी से जल्दी दूरियां देखी जा रही हैं, बढ़ जा रही हैं, तब सावित्री का साहस हमें यह सिखाता है कि सच्चा साथ केवल सुख में नहीं, संघर्ष में भी निभाया जाता है। क्योंकि रिश्तों की डोर जब विश्वास से बंध जाती है, हर मुश्किल की राह भी आसान हो जाती है। सावित्री की तरह जो प्रेम में अटल रह गए, उसकी जिंदगी भी पूजा बन जाती है। सभी को वट सावित्री पूजा की और इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं माणिक चक्रवर्ती और हेलो हजारीबाग के श्रोताओं के साथ।

तो साथियों, वट सावित्री हमें केवल पूजा नहीं सिखाती, बल्कि ये भी सिखाती कि विश्वास रखना, रिश्तों को निभाना और कठिन समय में धैर्य बनाए रखना। चलते चलते आपसे बस यही कि बरगद की छांव सा हो हर रिश्ता हमारा, सुख दुख में साथ दे हर अपना प्यारा, सावित्री सा साहस हर नारी को मिले, हर आंगन में खुशियों का दीप यूं ही जले। इसी शुभकामना के साथ मैं माणिक चक्रवर्ती इस चर्चा से, इस बातचीत से अब विदा लेता हूं। हेलो हजारीबाग सुनते रहिए और साथ ही वट सावित्री पर्व के विशेष अवसर पर इस गीत को भी सुनते रहिए।

वट सावित्री पूजा तो है ही और आज है विश्व प्रकाश दिवस। क्या है प्रकाश एवं इसके गुण और क्या है इसकी विशेषताएं जो आज हम सभी मना रहे हैं विश्व प्रकाश दिवस।

श्रोताओं, जहां अंधेरों ने हर उम्मीद को घेरा था, वहीं एक किरण ने नया सवेरा किया था। प्रकाश केवल रोशनी नहीं दोस्तों, इसने ही जीवन को सुंदर बसेरा दिया था। आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज मनाया जा रहा है विश्व प्रकाश दिवस। एक ऐसे दिवस को आज हम मना रहे हैं, याद कर रहे हैं कि प्रकाश केवल आंखों से देखने की शक्ति नहीं देता, ये भी जान रहे हैं, बल्कि यह विज्ञान, ज्ञान, ऊर्जा, संस्कृति और जीवन की गति का आधार भी तो है। यदि प्रकाश न हो तो यह संसार कैसा होगा? न रंग दिखाई देंगे,

न चेहरे, न प्रकृति की सुंदरता, न सूरज की किरणें, न चांदनी रात की शीतलता। प्रकाश यानी जीवन का उत्सव, और इसी अद्भुत प्रकाश के उत्सव को समझने के लिए आज हम करेंगे विशेष चर्चा। प्रकाश क्या है, गुण इसके क्या हैं और क्या है विशेषताएं। सरल शब्दों में कह दें तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। सूर्य इस धरती पर प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। इसके अलावा बल्ब, दीपक, मोमबत्तियां, टॉर्च, बिजली, ये सारी चीजें कृत्रिम प्रकाश के स्रोत हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और इसकी गति संसार में सबसे तेज मानी जाती है। प्रकाश की गति लगभग 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है श्रोताओं, यानी पलक झपकते ही प्रकाश धरती से चांद तक पहुंच जाता है। अब इसके गुणों की चर्चा कर लें। बात करते हैं प्रकाश के अद्भुत गुणों की। जी हाँ, जब हम टॉर्च जलाते हैं या सूरज की किरणें खिड़की से आती हैं तो वे सीधी दिशा में चलती दिखाई देती हैं, है ना? तो इसी गुण के कारण छाया भी बनती है। तो सूरज की आदत है हर रोज निकलना, अंधेरों को की फितरत है चुपके से मचलना, मगर जीत हमेशा उजालों की हुई है क्योंकि प्रकाश जानता है आगे बढ़ना। साथियों, प्रकाश के 7 रंग होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों से गुजरता है ना, तब वो इंद्रधनुष हो जाता है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, ये 7 रंग मिलकर सफेद प्रकाश बनाते हैं। यही प्रकृति का सबसे सुंदर विज्ञान है। क्यों मना रहे हैं आज हम विश्व प्रकाश दिवस? विश्व प्रकाश दिवस हर वर्ष आज ही के दिन 16 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य यह है कि लोगों को यह बताना कि प्रकाश विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को बहुत आसान बना दिया है। चिकित्सा हो, संचार हो, इंटरनेट, लेजर तकनीक, फाइबर ऑप्टिकल्स, मोबाइल कैमरा, हर जगह प्रकाश विज्ञान का योगदान है। आज के समय में एलईडी बल्ब ऊर्जा बचाने में मदद तो कर रहे हैं, है ना? सोलर एनर्जी यानी सूर्य ऊर्जा भी प्रकाश का ही तो अद्भुत उपयोग हो गया है। जीवन में प्रकाश का बहुत महत्व है। प्रकाश केवल विज्ञान नहीं बल्कि प्रेरणा भी तो है। जब जीवन में निराशा आती है तब आशा की एक किरण ही इंसान को आगे बढ़ाती है। इसलिए कहा गया है, दिया जलाना ही भाता रहे, अंधेरों से यूं ही नाता रहे। जो खुद रोशन होकर जीता है वही दुनिया को राह दिखाता रहे। चलते चलते कुछ और बात करूंगा आज विश्व पर्यावरण प्रकाश दिवस के बारे में। तो आज जरूरत है कि हम ऊर्जा की बचत करें साथियों। दिन में प्राकृतिक रोशनी का अधिक उपयोग करें, अनावश्यक बिजली बर्बाद न करें। छोटी छोटी आदतें पृथ्वी को सुरक्षित बना सकती हैं। आज विश्व प्रकाश दिवस पर हमने जाना है कि प्रकाश केवल चमक नहीं बल्कि विज्ञान, विकास, प्रेरणा और जीवन की पहचान है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी किरण उसे मिटाने की ताकत रखती है, है ना? तो राह में चाहे कितने भी अंधेरे मिल जाएं, साथियों हौसलों के दीप हमेशा जलाए रखिएगा। प्रकाश बनकर जो दूसरों के काम आ जाए, ऐसा खूबसूरत रिश्ता जीवन में बनाए रखिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ माणिक चक्रवर्ती इस चर्चा से विदा चाहता है, और सुनते रहिएगा और कहते रहिएगा हेलो हजारीबाग। और प्रकाश एवं उसके गुण और विशेषताओं के बारे में जाना, विश्व प्रकाश दिवस के बारे में जाना। अब आगे अगला पड़ाव। आज 16 मई, तो विश्व के इतिहास में और भारत के इतिहास में 16 मई को क्या घटा था, किन विभूतियों का जन्म हुआ था, कौन सा विशेष दिवस है और
किन विभूतियों ने हमें हमेशा के लिए अलविदा कहा था उसकी बारी आ गई। कहते रहिए हेलो हजारीबाग अपने दोस्त माणिक के साथ। 16 मई को भारतीय और विश्व इतिहास में मील के पत्थर के जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं श्रोताओं। 1975 में आज ही के दिन सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। वहीं जापानी पर्वतारोही जुनोको तोबई एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी।

1860 की बात करें तो 1860 में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थियोडोर मेमन ने पहले फंक्शनल लेजर का सफल परीक्षण किया था। 1929 में पहली बार हॉलीवुड में अकादमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए गए थे। है ना महत्वपूर्ण दिवस 16 मई का। आज जिन विभूतियों ने जन्म लिया उनमें सबसे पहला नाम देख रहा हूं पियर्स ब्रॉन्सन का, मशहूर हॉलीवुड अभिनेता और पूर्व जेम्स बॉन्ड। पियर्स ब्रॉन्सन ने जन्म लिया था आज के दिन। जैनेट जैक्सन का भी जन्म आज के दिन ही हुआ था, तो प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप गायिका और ये डांसर थी। मेगन फॉक्स का भी आज जन्म हुआ था, लोकप्रिय हॉलीवुड अभिनेत्री थी ये। विक्की कौशल जो भारतीय बॉलीवुड के प्रमुख अभिनेता हैं, इनका भी जन्म हुआ। सोनल चौहान बॉलीवुड अभिनेत्री और गायिका, आज उनका जन्म हुआ। तो इन सबको हेलो हजारीबाग की ओर से हैप्पी बर्थडे टू यू। और आज के दिन जिन जिन विभूति ने हमें हमेशा के लिए अलविदा कहा उनमें सबसे पहला नाम जिम हैंसन का है, प्रसिद्ध अमेरिकी कठपुतली कलाकार जो द पपेट्स के नाम से बहुत ही मशहूर थे। सेंसेम स्ट्रीट के रचयिता भी यही थे। एलियट नेस ने आज हमें अलविदा कहा था, अमेरिकी संघीय एजेंट जिन्होंने कुख्यात अपराधी अल कपोन को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी अलविदा कह गए थे आज के दिन। जेंगो रेनहार्ड ने भी आज के दिन हमें अलविदा कहा था। जेंगो रेनहार्ड जो है वो बेल्जियम में जन्मे थे, रोमानी फ्रांसीसी जैज गिटार वादक थे।

0: सुर में गाना सीखिए।
1: साथियों, रोशनी की बात हो रही है, विश्व प्रकाश दिवस की बात हो रही है, तो ऐसे में प्रकाश गीतों में भी तो होता है, और वो प्रकाश सीधे दिल तक पहुंचकर हमारे मन मस्तिष्क को शांत और सुकून से भर देता है। आज के इतिहास के बाद प्रकाश की ओर आइए बढ़ें, वो भी संगीत की बागडोर थामे हुए।

रहे रोशनी सलामत सदा आप सबकी जिंदगी में, यही तो ख्वाहिश है हमारी। हेलो हजारीबाग के श्रोताओं, अभी तो बहुत कुछ हमें देखना है, समझना है, जानना है इसी रोशनी के साथ। विश्व प्रकाश दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।

और अब एक बार फिर से थोड़ा सा पहले चलते हैं। सुबह आज जब हुआ था तो ऐसी ही आवाजें आपने सुनी क्या? जी हाँ, हेलो हजारीबाग के श्रोताओं, सुबह उठने से लेकर रात्रि को सोने तक ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे जीने का तरीका ही बदल जाए? साथियों, हर सुबह एक नई किताब का पहला पन्ना ही तो होती है। जो मुस्कुराकर जी ले वही जिंदगी की असली दौलत होती है। जिंदगी केवल सांस लेने का नाम थोड़ी ही ना है, बल्कि हर दिन को सही ढंग से जीने की कला का नाम भी है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अगर हमारा तरीका संतुलित, सकारात्मक और अनुशासित रहो तो जीवन सुंदर बन जाता है। आज हम यही तो बात कर रहे हैं कि कैसा हो हमारा दिन और कैसे हों हमारे जीने के तरीके। श्रोताओं, जिस सुबह में उम्मीद की किरण हो उस दिन की हर राह आसान हो जाती है। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान, प्रकृति या अपने माता पिता को याद कीजिए। मोबाइल की स्क्रीन नहीं देखिए बल्कि उगते सूरज को देखिए। कुछ पल खुद के लिए निकालिए, गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए। सुबह का समय हमारी पूरी दिनचर्या तय करता है। अगर सुबह तनाव में बीतेगी तो दिन उलझा हुआ ही रहेगा ना। हल्का व्यायाम, योग, प्राणायाम या थोड़ी सैर शरीर ही नहीं मन को भी ऊर्जा देती है। और हाँ, घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलिएगा, क्योंकि माँ बाप की दुआओं में वो असर होता है। जहाँ दवा काम ना करे वहाँ ये असर करता है। देखिए, दिन भर का व्यवहार फिर कैसा हो जाएगा। जीवन केवल अपने लिए ही नहीं जिया जाता। हमारे शब्द, हमारा व्यवहार किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। ऑफिस हो, स्कूल हो, बाजार हो या घर, बात करने का तरीका मधुर होना चाहिए। आजकल लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए, मीठे शब्दों का कोई वजन नहीं होता, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। किसी की मदद करने का मौका मिले तो पीछे बिल्कुल ना हटिएगा, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। अपने काम को ईमानदारी से कीजिएगा, छोटा काम हो या बड़ा, समर्पण बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, दूसरों की खुशी देखकर जलिए मत, बल्कि प्रेरणा लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके अंदर भी उस प्रकृति ने, उस ऊपर वाले ने कुछ अनोखा ही छोड़ रखा है। बस उसे ही ध्यान लगाकर हमें प्राप्त करना होता है। साथियों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग खाना तो खा रहे हैं लेकिन सुकून नहीं। समय पर भोजन कीजिए, फास्ट फूड कम और घर का खाना ज्यादा खाइए। पानी भरपूर पीजिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार जो है वो जन्म लेते हैं। कुछ समय परिवार के साथ भी बिताइए। आज घर में लोग साथ रहते हैं लेकिन दिलों में दूरियां बढ़ी है। रात को खाने की मेज पर मोबाइल नहीं बल्कि अपनों की बातें होनी चाहिए, है ना। और दिन भर की दौड़ के बाद जब शाम हमें यही सिखाती है कि थोड़ा ठहरना जरूरी है तो उसे भी सुनिए। कुछ समय अपने मन से बात कीजिए, आज क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, जरा उस पर भी तो सोच लें। अगर किसी का दिल दुखाया हो तो माफी मांग लीजिए। रिश्ते अगर दिल से निभाए जाएं तो छोटी छोटी गलतियां भी मुआफ हो जाती हैं। जब सुबह, दोपहर और शाम की बात हुई तो रात की भी बात चलते चलते कर ले। सोने से पहले शिकायतें मत कीजिए, बल्कि शुक्रिया होना चाहिए आपके अंदर। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि एक और दिन शांति से बीत गया। मन में सकारात्मक विचार रखिए और मोबाइल देखते देखते मत सोइए। आज की सबसे बड़ी बुरी आदत तो यही बन गई है। कोशिश कीजिए कि सोने से पहले कुछ अच्छा पढ़ें और या मनपसंद गीत सुने या अपना हेलो हजारीबाग को याद करते हुए रात में जो रजनीगंधा और आज के फनकार आता है उसे सुनकर सुने सोएं। देखिएगा, सुकून के साथ नींद आपको आएगी और सुबह हल्की फुल्की मुद्रा में आप उठेंगे। तो इस चर्चा से अब विदा होने का समय हो गया। सुबह की सकारात्मक शुरुआत, दिन भर का मधुर व्यवहार और रात का शांत मन, यही है अच्छे जीवन का सही तरीका। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।
सुनते रहिए हेलो हजारीबाग, अभी भी हमारे पास समय बचा हुआ है अगले पड़ाव को सुनने के लिए। सुबह की बात हुई और सुबह का ये गीत आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य हो गया।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: हेलो हजारीबाग, सुन रहे हैं आप सभी। 10:45 और 26 सेकंड्स की ओर घड़ी की सुइयां बढ़ रही हैं। और ऐसे में अब आइए खेल गतिविधियों पर थोड़ा नजर डालें। ईशान को बिहार सरकार का तोहफा मिला है, उनको मिले 1 करोड़ रुपए। जी हां, 2020 विश्व कप जीत में योगदान के लिए ये सम्मान उन्हें मिला और अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। साक्षी, लवलीना व जादूमणि ने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों का कटा लिया टिकट। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए फ्रांस की टीम घोषित, एम्बाप्पे कप्तान होंगे। और फ्रांस की ग्रुप 1 में सेनेगल, इराक और नॉर्वे के साथ रखा गया है। इधर भारत की नजर 2036 ओलंपिक पर। बैठक में बनी रणनीति नई दिल्ली में। भारत के राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों की समीक्षा के लिए हुई बैठक के दौरान देश को 2036 ओलंपिक बोली में आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। इधर पीवी सिंधु थाईलैंड ओपन से बाहर होकर क्वार्टर फाइनल में याग मुची से

इधर श्रोताओं, आईएमडी ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा में गरज के साथ बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार में 50 से 70 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। और एमपी सीजी के साथ ही महाराष्ट्र में कुछ हिस्सों में बारिश की और आंधी की आशंका है। वहीं दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान हीट वेव से राहत की उम्मीद दिखते नहीं पाए जा रही।

और इधर नीदरलैंड दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का भारतीय डायस्पोरा ने स्वागत किया। इस दौरान वहां बजते साजों से लेकर परफॉर्मेंस तक हर चीज में भारतीय अंदाज की झलक दिख रही है।

उम्र है 55 साल, 2500 से ज्यादा परीक्षा, 138 डिग्रियां और डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ये सफर अभी थमा नहीं, बात कर रहा हूं डिग्री मैन की, जो दुनिया के सबसे पढ़े लिखे पूर्व सैनिक हो गए हैं। 138 डिग्रियां हैं इनके पास। डिग्री मैन कहलाने वाले जयपुर के दशरथ सिंह शेखावत को सेना से रिटायर हुए 22 साल हो गए। इन 22 साल में उन्होंने फिलॉसफी, धर्म, पत्रकारिता, कानून, राजनीति, अर्थशास्त्र, डिजास्टर मैनेजमेंट, पीस स्टडीज, वास्तु वैदिक स्टडीज, लेबर लॉ, न जाने किन किन और किस किस विषय के कोर्स इन्होंने कर लिए। उनकी ज्ञान की भूख अब भी अनवरत जारी है।

आज वट सावित्री पूजा है। हर साल पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस साल 16 मई यानी आज ही के दिन यह व्रत रखा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखकर सुहागिने वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा कर रही है। कहा जाता है कि इसी दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी, तभी से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं।

और इधर जी एडवांस एग्जाम है कल। जी एडवांस एग्जाम कल दो सेशन में होगा। देश भर में 221 शहरों में सेंटर बनाए गए हैं। एडमिट कार्ड कल तक डाउनलोड किए जा सकते हैं।

और इधर बंगाल से खबर, शुभेंदु सरकार का एक बड़ा एक्शन। बंगाल की शुभेंदु सरकार ने आरजी कर डॉक्टर हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया। 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया। इनमें कोलकाता के पूर्व कमिश्नर ऑफ पुलिस विनीत गोयल के साथ ही डिप्टी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता शामिल हैं। सीएम शुभेंदु ने खुद इसकी घोषणा की। बेमौसम बरसात से अब हजारीबाग की बात कर रहा हूं। बेमौसम बाजार से इचाक बाजार की जर्जर सड़क से बहुत परेशानी हो रही है। जल जमाव की बनी हुई है मुसीबत और राहगीरों को पैदल चलना तक मुश्किल हो जा रहा है। दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। निर्माण हुए मात्र 2 साल ही हुए हैं। इधर बरही के विभिन्न पंचायतों में लगा है सत्यापन शिविर। मैया व पेंशनधारियों की उमड़ रही है भीड़। और कटकमसांडी में

और इधर इचाक अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर पर जीएम इंटर महाविद्यालय में पारिवारिक समरसता का पाठ यहां पढ़ाया गया। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर पर जीएम इंटर कॉलेज इचाक में पारिवारिक समरसता का पाठ पढ़ाया गया। और इधर जिले के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का हजारीबाग डीसी ने किया है निरीक्षण, कई निर्देश भी दिए हैं। कहा है इन्होंने विद्यार्थियों के कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

के जे यसुदास जो सुबह सुहानी की बात कर रहे हैं, ये सुबह सुहानी कैसे होगी? हम अक्सर स्वाद के पीछे भागते भागते ऐसी चीजें साथ में खा लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाती हैं। कई बार पेट दर्द, गैस, एसिडिटी, एलर्जी और भारीपन की वजह से हमारी यही छोटी छोटी गलतियां सामने आ जाती हैं। तो आइए आज बात करते हैं कि कौन सी चीज खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले बताता हूँ, दूध अपने आप में संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन इसके साथ कुछ चीजें नुकसान कर सकती हैं साथियों। दूध के बाद खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, अनानास नहीं खाना चाहिए, इससे पेट में गैस और अपच हो जाती है। और याद रखिए, मछली खाने के बाद दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। पुराने लोग कहते थे कि इससे त्वचा संबंधी परेशानी हो जाती है। जी हाँ, जो स्वाद लगे अच्छा हर बार सही नहीं, कुछ मेल ऐसे हैं जो शरीर को रास नहीं आते। गर्मियों का मौसम है, तरबूज खाएंगे आप, तो तरबूज खाने के तुरंत बाद पानी पीना कई लोगों को भारी पड़ रहा है, इससे पाचन बिगड़ जाता है और पेट फूलने लगता है। और तरबूज के साथ दूध या दही तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। अब बात करें फल केले की, तो केले के साथ या उसके तुरंत बाद कुछ ज्यादा लोग चाय या ठंडा पानी लेकर ले लेते हैं, इसे ठीक नहीं माना जाता। इससे पाचन पर असर पड़ता है साथियों, और कुछ लोग केला खाकर तुरंत भारी भोजन कर लेते हैं जो शरीर को सुस्त बना देता है। अपने रस पे चल पड़े दिन के मुसाफिर, तो दिन के मुसाफिरों चाय पीने के तुरंत बाद खीरा, ककड़ी या ठंडी चीजें खाने से बचिए। और लोहे से भरपूर चीजें जैसे पालक या अंकुरित अनाज खाने के तुरंत बाद भी चाय नहीं पीजिए, क्योंकि चाय आयरन को शरीर से सही तरीके में अवशोषित होने ही नहीं देती। तो सुबह सुहानी आपकी तभी होगी जब आम का मौसम आ गया, तो आम खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीना ठीक नहीं माना जाएगा, इससे पेट और खराब हो जाता है। पुराने लोग कहते थे पहले आम खाइए, थोड़ा समय दीजिए, फिर पानी पीजिए। और हाँ, एक और खास बात इसी गीत के साथ, दही के साथ गर्म चीजें या मछली का सेवन बहुत नुकसानदेह, मत कीजिएगा। ठंडी दही तासीर की होती है, इसलिए इसका संतुलन जरूरी है। तो आज ये जो टिप्स हैं इसके लिए इतना ही समय। उम्मीद है कि अब आप खाने की प्लेट में स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखेंगे।

मोहम्मद रफी अब बताएंगे कि ये सुहाना सफर कैसे आहा आहा आहा हो जाता है जब जीवन में हम संतुलन के साथ आगे बढ़ते हैं और रोज सुबह 10 से 11 आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से हेलो हजारीबाग सुनते हैं।

तो ये सुहाना सफर आपका बना रहे, और साथ में अब चलते चलते सुविचार, ज्ञान की शुरुआत किसी ऐसी चीज की खोज से होती है जिसे हम नहीं समझते। तो अब आज हेलो हजारीबाग से हमें अनुमति दीजिए, अपने दोस्त माणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप सभी सुन रहे थे हेलो हजारीबाग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने को है विविध भारती के कार्यक्रम, बस थोड़ी ही देर में आप सभी सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

देश में निकला होगा चांद और मधुर मन में गीत गाता होगा। सुनते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में भरत व्यास का लिखा ये गीत। संगीत रमेश नायडू का है।

मन्ना डे के स्वर में आपने सुना ये गीत श्याम सागर का संगीत था। और अब सुनते हैं इंद्रानी रिजवी और राजकुमार रिजवी की गाई ये गजल। कलाम डॉक्टर बशीर बद्र का है और संगीत है बेनी सतमाकर का।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में डॉक्टर बशीर बद्र का कलाम।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटनी शो। मैटनी शो में आज बातें और गाने उन फिल्मों के जो अपने रिलीज के बरस के मुताबिक आज उम्र के खास पायदान पर जा पहुंची हैं, यानी साल 2026 में या तो पहुंच चुकी हैं या पहुंच जाएंगी। रिलीज से अब तक 25 बरस या 50 बरस का सफर पूरा कर चुकी हैं या कि आने वाले महीनों में पूरा कर लेंगी ये फिल्में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म लगान की। साल 2001 में रिलीज हुई ऐतिहासिक खेल ड्रामा फिल्म लगान, निर्माता आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर। इस फिल्म की पृष्ठभूमि थी ब्रिटिश शासनकाल, जिसमें एक छोटे से गांव के लोग करों के बोझ से दबे हैं और उस पर सूखा पड़ जाता है। ऐसे में एक घमंडी ब्रिटिश अधिकारी उनके सामने क्रिकेट खेलने की शर्त रखता है। गांव वालों के लिए ये बिल्कुल नया खेल है, उन्हें क्रिकेट सीखना भी होगा और जीत के लिए खेलना भी होगा। फिल्म की कहानी आशुतोष गोवारिकर ने लिखी थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी आमिर खान और ग्रेसी सिंह ने। चुनौतीपूर्ण कहानी को फिल्म का रूप देने में कई चुनौतियां आई और आखिरकार ये फिल्म 15 जून 2000 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। देखते ही देखते साल 2001 की सफलतम फिल्मों में शुमार होने लगा फिल्म लगान का और जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक खास मुकाम बनाया इस फिल्म ने। साथ ही मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद एकेडमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की कैटेगरी में नामांकित होने वाली फिल्म भी ये बन गई। गीत संगीत बहुत मधुर था, चलिए इस गीत का ही एक झलक सुनते हैं।

मायूसी के वक्त में करुण पुकार बनकर ऊपर वाले को पुकारने वाली ये प्रार्थना वाकई बहुत हिट हुई और साथ ही फिल्म लगान भी आज भी प्रासंगिक है और इसके गीत तो और भी धूम मचाते रहे हैं। फिल्म का संगीत दिया था ए आर रहमान ने, तो आइए अब सुनते हैं ये गाना।

उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और श्रीनिवास की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा यह गीत आपने सुना और हमने जैसा कि बताया था एआर रहमान का संगीत था इस फिल्म में। और अब अगर हम बात करें तो बात हो रही है उस फिल्म की जो जून में ही रिलीज हुई थी 15 जून 2001 को और काफी हिट हुई थी। ये फिल्म थी गदर। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म शक्तिमान तलवार की कहानी पर आधारित थी जिसमें ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा का ताना बाना बुना गया था। 1947 की पृष्ठभूमि में घटित होती घटनाओं के बीच तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी कैसे परवान चढ़ती है और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचती है यही इस फिल्म में दिखाया गया था। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शौक, लिलित दुबे और उत्कर्ष शर्मा ने। 25 बरस पहले रिलीज हुई ये फिल्म, इसके संवाद आज भी लोगों की जुबान पर हैं और साथ ही इसके गीत भी अक्सर गुनगुनाए जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

और ये जो गाना आपने सुना गदर फिल्म का उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार की आवाजों में था, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत था और उत्तम सिंह का संगीत था। 2001 से अब चलते हैं 1976 की ओर। फिल्म चरस, एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने बनाया था। फिल्म में धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी का जादू सिर चढ़कर बोला और साथ में नजर आए अजीत, अमजद खान, अरुणा ईरानी और असरानी। नशे की तस्करी के काले पहलू को दर्शाती हुई ये फिल्म बहुत हिट रही और इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनते हैं ये गाना।

ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, आनंद बख्शी की आवाज शुरू में गीत के आपको सुनाई दी होगी और आनंद बख्शी का ही लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। 1976 की फिल्मों की बात हो रही है तो कई फिल्में इस साल रिलीज हुई थी, नागिन, लाला मजनू, कभी कभी, दस नंबरी, हेरा फेरी।

चरस की तो हमने बात की अभी, फकीरा, कालीचरण माँ, दो अनजाने, नहले पे दहला, शंकर दादा, बारूद, चिच्चोर, छोटी सी बात, ये सभी फिल्में काफी हिट रही थी। हालांकि फिल्में तो बहुत सारी रिलीज हुई थी, लेकिन हम उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी भीड़ बटोरी थी। अब बात कर रहे हैं फिल्म बारूद की, जो 2 अप्रैल 1976 को रिलीज हुई थी। बारूद फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अशोक कुमार, ऋषि कपूर, शोमानंद, अजीत और रीना रॉय, और इस फिल्म का संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं

0: के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आमने सामने फिल्म के इस गीत से। मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ अगला गाना मस्ताना फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

शोर मचाते मनमोर के अंदर एक सवाल। आसरा फिल्म का ये गाना लेकर आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यादों की महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ उपहार फिल्म का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आए दिन बहार के फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब इसी जोड़ी का एक और गीत सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में आपने सुना फिल्म राजपूत का ये गाना, और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में चलते चलते राजा जानी फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं जरूरी संदेश।
1: हमार बाबू जी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: सुतम, अभी आप सुन रहे थे जरूरी संदेश।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजने को है। अब आपको लिए चलते हैं अपने मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। तो कीजिए कुछ ही क्षणों का इंतजार।

नमस्कार, मई की ये तपती हुई दोपहर शीतल छांव में बदल जाएगी जब शुरू होगा एक सुरीला सफर जो कि बस शुरू ही हो गया है। आज है इस कार्यक्रम में आप मेरे यानी राजुल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सादर नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम जो इबारत या टेक्स्ट या वाक्यांश पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, उसी में वो शब्द समाए होते हैं जिनमें जिन पर कोई गीत सुना जा सकता है, और वो गीत आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन से शब्दों पर गीत सुने जा सकते हैं। तो मैं बता दें कि आज भी बहुत सारे अंदाजे लगाए गए हैं और सच में हमारी और आपकी पसंद तो काफ़ी मिलती जुलती सी लग रही है। वैसे अगर आपका हमारी लिस्ट से मैच कर जाए गाना तो वाह वाह, और मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आपने जो बताया है हो सकता है वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर ही लिए जाएं। तो अब आज की इबारत हम आपको बताए दे रहे हैं उन सभी श्रोताओं के लिए भी जो फेसबुक पर नहीं देख पाए हैं। आज की इबारत है, जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं, मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, कभी किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। हाँ तो भाई, रोशनी को लेकर अपने अपने विचार, अपनी अपनी बातें आप सबने रखी हैं, और बहुत सारे ऐसी भी संदेश हैं जिनमें जीवन से जुड़ी हुई बातें छिपी हुई हैं। क्या बात है, संदेशों तक हम आए तब तक एक सवाल पूछ लेते हैं कि रोशनी के लिए हमारे एक श्रोता ने कहा भी है कि शुरुआत हुई थी सूरज की रोशनी से, और उसके बाद बात सूरज की रोशनी की होते होते दिए की रोशनी पर पहुंच गई। सूरज का महत्व अलग है, वो प्रकाश ही नहीं देता, प्राणियों को ऊर्जा भी देता है, जीवन देता है। बिना सूरज के जीवन की कल्पना भी बेईमानी है। रही बात दिए की रोशनी की, तो सूरज के छिप जाने के बाद अंधेरे से लड़ने का प्रबल शस्त्र यदि है तो दिया ही है, जिसकी रोशनी में हम कुछ ताने बाने बुनते हैं और जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। वाकई दिया सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में जलता है, लेकिन रोशनी तो देता है और बहुत सी बातें भी रोशनी देती हैं। तो दिए की बात चली है तो हमें ये बताइए कि क्या वो वक्त याद है जब, अभी तो हम बिजली का उपयोग करते हैं और बड़े धड़ल्ले से बत्ती जलाते हैं, बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इन्वर्टर की भी बात कही है। वैसे जब इस बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था उस वक्त दिए के अलावा एक और चीज थी जो बहुत सारे घरों में जलती थी। अगर आपने वो देखा हो या उसका नाम याद आ रहा हो तो हमें जरूर बताएं। एक संदेश है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्दों का अनुमान लगाना बहुत रोमांचक है। जलते सूरज और रोशनी के शब्द पर तो कई शब्द हो सकते, कई गाने हो सकते हैं। वाह क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि रोशनी सिर्फ अंधेरों को दूर करने का नाम नहीं बल्कि ये उम्मीद, विश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है हर तरफ एक नई ऊर्जा फैल जाती है। रोशनी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में हमेशा अपने भीतर उम्मीद और अच्छाई की रोशनी जलाए रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। एक और श्रोता का संदेश है, आसमान से जब रोशनी आती है तो वो जर्रे जर्रे में बिखर जाती है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। सुबह सवेरे की रोशनी कितनी सुखद होती है, मगर जो जो धूप चढ़ती है ये रोशनी आंखों को चुभने लगती है, खासकर गर्मी के दिनों में। अगर देखें तो जीवन और रोशनी में बहुत सारी समानताएं हैं, दोनों में ही चुनौती होती है। रोशनी के साथ जुड़ा है धूप छांव का खेल, रोशनी एक उपहार है, अगर ये ना हो तो जीवन कैसा हो जाए। और बाकी सब तो परीक्षा है, ये डर, ये मंजिल तक पहुंचने की सुगबुगाहट, रोशनी को जीवन से जोड़ने का हुनर सीखिए, कभी कभी ये रिश्तों को संजीवनी देने का भी काम करती हैं। क्या बात कही।
कार्यक्रम का ये गाना बताइए, किनके स्वरों में ये गाना है।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में बालू घाटों के लीज आवंटन का नया नियम लागू। अब जिलों के उपायुक्त होंगे सक्षम प्राधिकार, जिला खनन पदाधिकारियों के अधिकार घटे। सीबीएसई ने जारी किया 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा का शेड्यूल। असंतुष्ट छात्र 19 से 22 मई तक स्कैन कॉपी के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे दुमका के संजय पाल। लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के लिए हुआ चयन। राज्य भर में आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है वट सावित्री का पावन पर्व। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत। और राज्य में समय से 12 दिन पहले पहुंच सकता है मॉनसून। मौसम विभाग का अनुमान 26 मई को केरल और 5 जून तक राज्य में देगा दस्तक। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू घाटों की लीज आवंटन के लिए नया आदेश जारी किया है। सचिव अरवा राजकमल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब जिलों के उपायुक्तों को लीज निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकार बनाया गया है। झारखंड सैंड माइनिंग नियमावली 2026 के तहत सभी वैधानिक स्वीकृतियों के बाद ही लीज डीड पर अंतिम फैसला होगा। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। परिणाम से असंतुष्ट छात्र 19 से 22 मई तक मूल्यांकन शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अंकों के पुनर्मूल्यांकन और विसंगतियों के सत्यापन के लिए 26 से 29 मई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने बोकारो में कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस नीति के कारण जनता उसे नकार रही है।
1: कांग्रेस का पूरी तरह से मुस्लिमीकरण हो चुका है, एक्सेप्ट कर लिया है हम लोगों ने कि सारे मुसलमान के दम पर ही हमको आगे की राजनीति करनी है। तुष्टीकरण की राजनीति से जनता ने अब अपने आप को बाहर निकाल लिया है, हकीकत को पहचान लिया है। सभी लोग अब विकास के एजेंडे पर मोदी जी के साथ आकर के जो प्रोग्रेसिव लोग है वो बढ़ना शुरू कर दिए।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मधुबन स्थित मरांग बुरु दिसोम मांझी थान का द्वार बंद होने पर राज्य सरकार को घेरा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि संताल समाज की परंपरा और आस्था का अपमान किया जा रहा है। जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद राजेंद्र सिंह ने कहा है कि झारखंड इस समय गंभीर पर्यावरणीय और जल संकट का सामना कर रहा है। रांची में आयोजित एक कार्यशाला में उन्होंने झारखंड को समृद्ध बनाने के लिए यहां की प्रकृति और संस्कृति को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता बताई है।
2: यहाँ की कल्चर और यहाँ की नेचर, इन दोनों का इंटीग्रेशन करके प्लानिंग करनी होगी और इन दोनों के रक्षण और संरक्षण के लिए साझे कार्यक्रम चलाने। इस राज्य को वैसा विकास करना है तो फिर यहाँ की कल्चर

0: कल्चर और नेचर दोनों को इंटीग्रेट करके काम होगा तो राज्य समृद्ध राज्य होगा।
1: राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत आज से डोर टू डोर मकान गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए प्रगणकों की टीमें राज्यभर में घर घर जाकर मकानों का विवरण दर्ज कर रही हैं। प्रशासन ने आम जनता से सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय कार्य में सहयोग की अपील की है। दुमका जिले के काठीकुंड के युवा संजय पाल अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने वाली 13वीं इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 21 से 24 मई तक होने वाले इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में वे वैश्विक शांति, सुरक्षा और कूटनीति जैसे विषयों पर चर्चा में भाग लेंगे। संजय का चयन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर हुआ है। रांची सदर अस्पताल में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम और बायोमेट्रिक अटेंडेंस पोर्टल को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों में जागरूकता बढ़ाने तथा आयरन सप्लीमेंट वितरण को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा स्थित डायवर्सिटी पार्क का जल्द ही कायाकल्प किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विधायक समीर मोहंती ने यहां 18 दो मंजिला कॉटेज का निर्माण का भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि इस आधुनिक परियोजना से जहां स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं सैलानियों को बेहतर आवासीय और प्राकृतिक अनुभव मिलेगा।
2: मानुष भूजा में बेहतरीन पार्क बना रहे हैं, बहरागोड़ा में पार्क बना रहे हैं, कनेश्वर पहाड़ में सीढ़ी बन रहा है, वहाँ भी सुंदरीकरण का काम होगा, गोटा जिला का सुंदरीकरण हो रहा है, खड़ी डोरी का सुंदरीकरण हो रहा है, जालघोरा थान में हमने पिकनिक स्पॉट बना दिए 4 करोड़ का, और कॉटेज इसलिए बना रहे की बहरागोड़ा में होटल का व्यवस्था नहीं है, बाहर लोगों का आना जाना भी है। पार्क को बेहतर ढंग से अगर बनाएंगे और कॉटेज बना देंगे तो बाहर का लोगों का आना जाना भी बढ़ेगा।
1: रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्रियों को जल्द कई नई सुविधाएं मिलेंगी, जिनमें 10 रुपए में चाय कॉफी देने वाला उड़ान यात्री कैफे, किड्स प्ले जोन और हैंडीक्राफ्ट स्टॉल शामिल हैं। इन किफायती और आधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन आगामी 20 मई को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू करेंगे। दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड के सालतोला गांव में 26 किसानों ने 6 एकड़ जमीन पर सामूहिक खेती कर एक अनूठी मिसाल पेश की है। क्लस्टर मॉडल के तहत ये किसान एकजुट होकर करेला, तरबूज और भिंडी जैसी नकदी फसलें उगा रहे हैं। इस आत्मनिर्भर प्रयास में स्थानीय महिला किसान भी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। राज्यभर में आज वट सावित्री का पावन पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं आज निर्जला व्रत रखकर बरगद के वृक्ष की पूजा अर्चना कर रही हैं। पाकुड़ और हजारीबाग समेत विभिन्न जिलों के पूजा पंडालों और वृक्षों के पास सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है।
3: बट ब्रिज का जैसे दीर्घ आयु होता है, हम लोग भगवान से यही मनोकामना करते हैं कि मेरे हस्बैंड का भी बट ब्रिज के जैसा ही दीर्घ आयु लंबी उम्र प्राप्त हो। बांस का पंखा और बांस का डाली, ये दोनों शुद्ध होता है, इसीलिए ज्यादा यूज होता है।
1: देश भर में आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नागरिकों से स्वच्छता और सतर्कता अपनाकर डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घर के आसपास जल जमाव को रोकना और समय पर इलाज कराना इस बीमारी से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,76,000 रुपये प्रति किलो है। मानसून। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश में इस वर्ष मॉनसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। केरल में इसके 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद 5 से 6 जून तक इसके झारखंड पहुंचने की उम्मीद है। यदि यह पूर्वानुमान सटीक रहा तो राज्य में पिछले साल की तुलना में मॉनसून 12 दिन पहले पहुंचेगा। एथलेटिक्स। रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में 22 से 25 मई तक 29वें नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। इस बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के रेफरी, कोच और एथलीट्स अपनी ट्रेनिंग और तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में बालू घाटों के लीज आवंटन का नया नियम लागू। अब जिलों के उपायुक्त होंगे सक्षम प्राधिकार, जिला खनन पदाधिकारियों के अधिकार घटे। सीबीएसई ने जारी किया 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा का शेड्यूल। असंतुष्ट छात्र 19 से 22 मई तक स्कैन कॉपी के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे दुमका के संजय पाल। लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के लिए हुआ चयन। राज्य भर में आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है वट सावित्री का पावन पर्व। अखंड सौभाग्य के लिए महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत। और राज्य में समय से 12 दिन पहले पहुंच सकता है मॉनसून। मौसम विभाग का अनुमान 26 मई को केरल और 5 जून तक राज्य में देगा मॉनसून दस्तक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार हैं शोभा गुरटू। इनसे सुनते हैं दादरा।

लेकिन उसके पहले संदेश भी हैं। श्रोता ने, एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मी ने तो अप्रैल में ही मई जून की याद दिला दी थी, सो अब भी गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना। फिल्म जवाब का इन्होंने गीत याद किया है, और बहुत सारे गाने भी इन्होंने बताए हैं सूरज को लेकर, नीले गगन को लेकर, और बहुत सारी गानों की बात की है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि रोशनी चाहे चांद की हो या सूरज की, दोनों का ही अपना अलग जादू और सुकून है। जहां सूरज की रोशनी हमें ऊर्जा, गर्मी और नया दिन जीने की प्रेरणा देती है, वहीं चांद की रोशनी हमें शीतलता, सुकून और रात का ठहराव देती है। और सौर ऊर्जा की बात की है हमारे एक और साथी ने, लिखते हैं कि जगत भर की रोशनी के लिए सूरज जलते रहता है, और अब सौर ऊर्जा का जमाना आया है, वो भी सूरज पर ही निर्भर है। अब हम बिजली का चालू रखने के लिए इन्वर्टर चलाते हैं, उसको रिचार्ज मेंटेन करना पड़ता है। चांद और सूरज हमारे रोशनी के नैसर्गिक साधन है। आज हमें अपना सुरीला सफर गीतों से रोशन करके पूरा करना है, और इन्होंने कई गीत याद किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। शब्द है माना जनाब। फिल्म का नाम बताइए और आवाज पहचानिए किनकी है।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना, माशा अल्लाह कहना।

सही जवाब आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन सभी श्रोताओं का। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज है और हम बता देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था। एक श्रोता कह रहे हैं कि सोच लो अगर सूरज दादा न होते तो पृथ्वी एक बेजान अंधेरी बर्फ का गोला बन जाती, न पेड़ पौधे होते, न हम होते, न पशु पक्षी होते। शुक्र है सूर्य नारायण देव का कि जिनकी कृपा से आज पृथ्वीवासी हर जीव अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और एक और श्रोता ने याद किया है, काइन फल निकलता था इसको मशीन में तेल पिराकर और घी के समान उसका तेल निकलता था, उसे भी घर में दिया बत्ती के रूप में जलाया जाता था। एक और श्रोता ने याद किया है हमराज फिल्म के गाने का की बात करते हुए कि मैं बिहार से हूँ और आज के जमाने में बिहार में ऐसा समय आया जब 15 सालों तक हमारे गांव में 1989 से 2005 तक बिजली नहीं थी, तब लालटेन ही एक सहारा थी हमारे लिए, फिर मैंने सोलर लालटेन खरीदा। क्या बात है। एक साथी ने खुश होकर कहा है कि रोज रोज ध्यान लगाते हुए आज एक गाना मेरा लिस्ट में आया है, क्या बात है। और एक श्रोता कह रही है कि लालटेन के शीशे को उपले की राख से साफ करना पड़ता था, साफ करते समय बहुत एहतियात बरतना पड़ता था, ज्यादातर घर के बड़े लोग ही से शाम को करके रख देते थे। एक और श्रोता ने याद किया है कि दुकान में शाम होते ही लालटेन जलाते थे और कांच को साफ करना पड़ता था, बाती मिट्टी का तेल चिमनी भी बेचते थे, आज ये सब बंद हो गए हैं बिकने। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी से दिन निकलता है, चांद की रोशनी से रात का एहसास होता है, ज्ञान की रोशनी से जीवन संवरता है, वैसे ही अच्छे जीवन साथी से जीवन रोशनदान हो जाता है। क्या बात है। तो अब अगले गाने की

0: तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक संदेश सुन लिया जाए।
1: आएगी जरूर।
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
3: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
4: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
4: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: सुहाने सुरीले सफर की बात जब हो रही है तो हमारी एक श्रोता ने याद किया है, हमें एक हल्की सी याद है कि गलियों और सड़कों पर लैंप पोस्ट हुआ करते थे, जिसमें एक सरकारी आदमी आता था जो लैंप पोस्ट में तेल भरता था और जला देता था। रात भर लैंप पोस्ट जलता था, सुबह अपने आप बुझ जाता था, तब सूरज की रोशनी से काम चलता था। जी हाँ, वो भी एक जमाना था। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी मम्मी दादी नानी ने लालटेन की रोशनी में कढ़ाई और सिलाई भी की है। हाँ वाकई, और बहुत सुंदर कशीदाकारी की है। अब सवाल जरा गौर से सुनिएगा, गाना पहचानना है आपको और फिल्म का नाम बताना है। कुछ इस तरह की लाइनें हैं कि चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। तो पहचानिए कौन सा गाना है ये और किस फिल्म का है। और हम जब संदेशों की बात करते हैं तो एक बड़ा ही प्यारा सा संदेश दिख रहा है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों और शांति मन से है, जो अकेलेपन या बड़ी मुश्किलों के बावजूद मन को सुकून देती हैं। अकेले होने पर भी क्या छोटी सी बात से माँ को मन को सुकून दे जाते हैं। विशाल रोशनी की गर्मी में भी एक छोटी सी छांव मिल जाए तो वो मन को सुकून देती है। नीले गगन की विशालता में जब कोई एक चिड़िया चहकती है तो ये अकेलापन दूर कर देती है। जीवन की यही बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच किसी अपने का एक छोटा सा प्यार भरा शब्द या एक मुस्कान मन को शीतलता और राहत प्रदान करती है। यही जीवन है कि विपत्ति में भी छोटी छोटी सकारात्मक बातों को ढूंढ लिया जाए, जग ही नहीं मन भी रोशन हो जाए। क्या बात है। और अब अगला गाना जरा सुनिए और बताइए ये आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं। हंसने की बात है

पारस मणि फिल्म का ये गीत आपने बताया और हमारे एक श्रोता ने कहा कि अगला गीत बचेगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा और वो बच गया, क्या बात है। और जो हमने पहली पूछी है, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि गीत तो कुछ कुछ याद आ रहा है मगर शब्द नहीं आ रहे। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहली के इंद्रजाल ने उलझा दिया। ओहो हो, उलझिए मत, हम सुलझाए देते हैं। चलिए हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगल विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। एक संदेश है, सूर्यदेव की महिमा निराली है, जब से धरती अस्तित्व में आई है सूर्यदेव की कृपा बनी हुई है। दिन और रात होते हैं, वनस्पति को जीवन मिलता है, हमारे यहाँ प्रतिदिन सूर्यदेव को पूजा जाता है। सूरज और रोशनी की बातचीत की कल्पना अद्भुत है। एक और श्रोता ने कहा है कि जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब साल 1960 से मैं विविध भारती के शरण में आया। मेरे आकाशवाणी राम। बहुत सुंदर। जैसे जगत भर की रोशनी के लिए सूरज को जलते रहना जरूरी है, उसी तरह जगत भर के श्रोताओं के मनोरंजन के लिए विविध भारती का चलना जरूरी है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो गीत की लाइनें एक बार फिर से बता देते हैं। गाना है अंतरे की लाइनें हैं, चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। बताइए कि ये कौन सा गाना है और किस फिल्म का है। और अब ये अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये देखिए आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और फिल्म का नाम बताना है आपको। जहां शब्द से ये गाना।

तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उस पहेली की जो हमने गाने के रूप में पूछी थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई, पहले उसी का जवाब। आपने अभी जो पहेली पूछी, गाने के शब्द याद नहीं आ रहे, पर ऐसा लग रहा है कि फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ का गाना है, बड़ा बेदर्द जहाँ है यहाँ इंसाफ कहाँ है, कुछ इस तरह की इन्होंने बात कही है। बिल्कुल सही बात है, अजब है मालिक तेरा जहां, चिराग कहां रोशनी कहां, ये है गाने की पहली लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। पारसमणि फिल्म के गाने के गीतकार और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सही जवाब आया पारसमणि फिल्म की का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत रचना असद भोपाली की।

गीता रॉय और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने जो गाना सुना उसको सुनकर हमारे कुछ श्रोताओं को लगा कि हमने पहली बार सुना है ये गाना। ये गाना बड़े सरकार फिल्म का है, जैसा कि हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ तुरंत अपना संदेश भेजने के लिए। और अब अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच होता है या नहीं बताइए हमें, गाना मंजिल शब्द पर।

0: गजब कमाल, बड़ा ही दिलचस्प। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंजिल शब्द पर फिल्म संजोग से ये गाना आपकी लिस्ट से मिल गया, मैं डिस्टिंक्शन में पास हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। एक श्रोता ने बताया है प्रदीप कुमार और अनीता गुहा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, और एक और श्रोता कह रहे हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। एक साथी ने याद किया है, जहां तक मुझे याद है पुराने जमाने में शादी की बारात में लालटेन गैस बत्ती से उजाला किया जाता था और बारात ले जाई जाती थी, और गांव की पंचायत में भी गैस बत्ती का उपयोग किया जाता था। इसको पंच बत्ती कहा जाता था। इस दृश्य को राज कपूर की एक फिल्म में भी दिखाया गया था। कौन सी फिल्म थी वो, याद है आपको? शोले फिल्म में जया भादुड़ी को लालटेन जलाते और उसको धीमा करते हुए याद किया है एक श्रोता ने, और अंदाजा लगा रहे हैं एक और साथी कि ये जिंदगी के साथ ये अगला गाना बच सकता है। तो देखिए भाई कि ये गाना आपकी बात आपके लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं। हमें यह भी बताइए कि किसी की छोटी सी बात ने आपका जीवन क्या कभी बदला, या आपकी किसी छोटी सी बात ने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई और आपको याद रह गया।
1: छोटी सी ये दुनिया।

0: फिल्म के संगीतकार का नाम बताना है आपको।
1: दिखा नहीं हमारे दिल ने प्यार में।

सही जवाब आया, बहुत बहुत शुक्रिया। रंगोली फिल्म गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, स्वर और अभिनय किशोर कुमार। क्या बात है, पूरा जवाब। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी सी ये दुनिया पहचाने लगते हैं। श्रोता जो विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़कर मिले हैं, हर रोज मिल रहे हैं। और एक और श्रोता ने कहा कि ये गीत मेरी लिस्ट में था। एक श्रोता ने अंधेरे की बात की है और अंधेरे को विसंगतियों और असमानता का प्रतीक बताया है। रोशनी के लिए सूरज एकमात्र पर्याय नहीं, भौतिकवादी संसार के संदर्भ में या फिर मनुष्य के अंतर्मन में गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, सच्ची भक्ति और आंतरिक प्रेम ही एक दिव्य रोशनी है जो अंतर्मन में व्याप्त अंधेरे को दूर कर मार्ग प्रशस्त करती है। सृजन और कला के माध्यम से भी रोशनी प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए कि सृजन और कला या आपकी किसी छोटी सी बात से किसके जीवन में रोशनी आई या किसी ने आपके जीवन में इस तरह से रोशनी भर दी, एक पल के लिए लगा जैसे उजाला ही उजाला हो गया। याद हो तो बताएं। और अब ये गाना सुनिए और हमें ये बताएं कि फिल्म में फिल्म का नाम क्या है और प्रमुख कलाकार कौन है।

हमारी जो बात थी कि क्या किसी ने आपके चेहरे पर मुस्कान सजाई या आपने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई है, छोटी सी रोशनी अदा की है उसे, इसके जवाब में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मैंने अपने सहयोगी को कार्यक्षेत्र में कहा था, तुम टूर पे जाते हो, क्या करते, कोई नहीं देखता, सिर्फ दो व्यक्ति तुम्हारा काम देखते हैं, एक ऊपर वाला, एक स्वयं तुम, अतः खुद से पूछो। उसे बात लग गई और वो सुधर गया। क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से कई बातों का समाधान हो जाता है, कई बार बात बिगड़ भी जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बनेगी या बिगड़ेगी ये तो बिल्कुल दूसरे के कई बार मूड पर भी डिपेंड करता है। और ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या वो गाना, क्या वो बात दूसरे को भली लगने वाली है या नहीं। एक श्रोता ने किशोर दा कहा है कि किशोर दा ने ये गाना एकदम हेमंत कुमार जी के अंदाज में गाया है, कभी कभी तो धोखा भी हो जाता है कि किसकी आवाज है, छोटी सी दुनिया की बात कर रही है ये। हाँ भाई, छोटी सी दुनिया है, आवाजें भी मिल जाती हैं, अंदाज भी मिल जाते हैं। और एक और श्रोता ने गुस्सा जताया है कि 60 और 70 के दशक के गानों में ही सिमट कर रह गया है कार्यक्रम। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम और गाने भी शामिल करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात हो रही थी, जिस तरह के विषयों की बात हो रही थी, जिस तरह के शब्दों की बात हो रही थी, तो जो गाने अच्छे लगे और जो गाने हिट रहे, ज्यादा सुने गए, उन्हें ही हमने छांटा है। तीसरी कसम फिल्म और हरियाली और रास्ता में लालटेन दिखाई गई है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात हो रही थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे की, लेकिन उसके पहले हम सोचते हैं कि ये गाना जल्दी से सुन लिया जाए। हम आपको बताते हैं इसका जवाब भी। ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम पहचानिए, आवाजें पहचानिए किनकी है।

कई संदेश आए हैं लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाजों में बड़ी बहन फिल्म का ये गाना आपने सुना था सही जवाब। एक श्रोता ने कहा है कि हमें एक बूढ़े माली की मुस्कान याद आ गई। हमारे घर के सामने छोटा सा पार्क बना हुआ है पानी की टंकी के चारों तरफ और उसमें इतनी गर्मी में रोज एक बूढ़ा माली छतरी लगा करके घास काटते हैं। हम एक गिलास नींबू पानी देने गए तो इतनी गर्मी में मानो उन्हें तड़क मिल गई। उनकी मुस्कान से हमें जो खुशी मिली नहीं बता सकते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता ने बताया

किशोर कुमार और कुमकुम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के प्रमुख कलाकार। और एक और श्रोता ने कहा है कि पत्नी धर्मपत्नी के आगमन से 1975 में मेरी किस्मत बदल गई। उसके पहले शून्य में था, वो आई तो आगे एक लग गया यानी 10 बन गया। ये पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई ना? बिल्कुल आ गई। और मुस्कान के साथ साथ वक्त की ये घंटी भी आ गई कि अब आपसे इजाजत लेनी है। तो सुरीला सफर कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम, फिर मिलेंगे। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है गंगा दशहरा का पावन पर्व। ये दिन माँ गंगा के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए हिमालय में कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर गंगा जी धरती पर आने को तैयार हुई। जब गंगा धरती पर उतरी तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि उसको संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। इसीलिए इस दिन शिवजी की पूजा भी की जाती है और माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान और पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा न केवल एक पवित्र नदी है बल्कि इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। शांति और अच्छाई की प्रतीक गंगा नदी के बहते पानी में हजारों दीपक प्रवाहित किए जाते हैं। देश के कई प्रदेशों में बड़ी धूमधाम से गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी में ये एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है।

गंगा न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की भी पवित्र नदियों में से एक कहलाती है। गंगा के निर्मल और पावन जल पर समय समय पर बहुत सारे शोध भी किए गए हैं और विज्ञान की हर कसौटी पर गंगा का जल भी खरा उतरा है। विज्ञान भी मानता है कि गंगा जल में कीटाणुओं को मारने की क्षमता है। इसका जल हमेशा ही पवित्र रहता है। लेकिन जिस प्रकार आजकल न सिर्फ गंगा नदी बल्कि अन्य बहुत सारी नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है, इसे रोकने की जरूरत है। हमें समझने की आवश्यकता है कि गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि जीवनकाल और लोक संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। गंगा सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ साथ विकास की जननी

दोस्तों, भारत को नदियों का देश माना जाता है। भारत में सिर्फ गंगा को ही नहीं बल्कि अन्य नदियों को भी माता के रूप में पूजा जाता है। ये सदा से ही हमारे लिए जीवनदायिनी रही है। नदियाँ धरती पर जीवन के लिए एक आशीर्वाद हैं। हमें अपने जीवन में गंगा नदी की बहती धारा से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार वो अपने गंतव्य की ओर पहुंचने के लिए बहुत सारी रुकावटें आने के बाद भी निरंतर आगे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही रहना है। हम गंगा को माँ कहते हैं, लेकिन उसे माँ मानने का हमारा व्यवहार सिर्फ उसकी पूजा मात्र तक ही सीमित है। असल व्यवहार में हमने गंगा को कचरा और मल ढोने वाली मालगाड़ी मान लिया है। इसके कारण गंगा का जल प्रदूषित होता है, वो अपना संतुलन भी खोती है। वर्तमान में जल संकट एक गंभीर समस्या है। हम अपने दैनिक जीवन में जल को दूषित करेंगे, जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा मन भी अशांत होगा और हमारा जीवन भी अशांत होगा। इसीलिए गंगा को प्रदूषण से बचाकर हम अपने मन को भी प्रसन्न और स्वस्थ रख सकते हैं। गंगा की सफाई और स्वच्छता में भी हम अपना सहयोग कर सकते हैं। हमें गंगा के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर उसे संवारना होगा और उसे प्राथमिकता देनी होगी ताकि गंगा का दोहन बंद हो सके। और सही मायने में यही माँ गंगा की सच्ची सेवा और उपासना है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलेम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा।
3: भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत भारत
0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे
3: वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
5: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
6: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण

0: में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय 700 रुपए है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टागन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गाना मन्ना डे के स्वर में आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला कालजयी गीत स्कूल मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं, प्रदीप के बोल हैं और वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की रेशमी आवाजों में प्यार बरसाता, ये कालजयी गीत आपने सुना स्कूल मास्टर फिल्म से। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भाई भाई फिल्म से है। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की तर्ज।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया। वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
0: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म जिद्दी का ये गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, सुरों में पिरोया है सचिन देव परमन ने।

बोलो बोलो कुछ तो बोलो बोलो बोलो बोलो।

0: आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनसरोकार के विषयों पर संवेदनशील हैं। सोशल मीडिया पर मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री ने पलामू के उपायुक्त को हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के इकौनी गांव के 3 अनाथ बच्चों को शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये 3 बच्चे माता पिता के गुजरने के बाद परेशानियों से घिरे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मधुवन स्थित मरांगबुरू दिसम मांझीथान का द्वार बंद होने पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि इस स्थल की चाबी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास रखी गई है, जो संताल समाज की आस्था, परंपरा और धार्मिक अधिकारों पर प्रशासनिक हस्तक्षेप का प्रतीक है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांझीथान के लिए अविलंब एक नायिके को नियुक्त करने की मांग की है।
2: सरकार से और खास करके राज्य के मुख्यमंत्री से हम मांग करें, इस दिसम मांझी थान के लिए बिना विलंब किए सरकार एक नायके को नियुक्त करे, जो प्रत्येक दिन इसकी सेवा सेवा करे। अब दोबारा फिर हम आएंगे तो हमें यहाँ नायके मिलना चाहिए, यानी तो जब कभी भी मधुबन आएंगे इस प्रकार बंद रहेगी, इस ताला को हटा करके और समाज से आग्रह कर दो, इस क्षेत्र के जितना भी गांव प्रधान लोग हैं, मांझी बाबा लोग हैं, सबको बुला के कहेंगे कि भाई एक आदमी को तुम लोग नायके यहाँ नियुक्त करो।
1: प्रदेश भाजपा भ्रष्टाचार और राज्य सरकार की कथित वादाखिलाफी के खिलाफ मुखर है। पार्टी ने आज से 20 मई तक सभी प्रखंडों में धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर उदासीन है और अन्नदाताओं की राज्य में घोर उपेक्षा हो रही है। राज्य सरकार विकास समेत जनकल्याण के मोर्चे पर विफल साबित हुई है। प्रदेश कांग्रेस भी आंदोलन की राह पर है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्य के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। इस विषय को लेकर पार्टी ने सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है। इस राज्यव्यापी प्रदर्शन के तहत कई जिलों में आज प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर नेता और कार्यकर्ता आंदोलन के लिए जुटे हैं। आज रांची के बिरसा चौक पर भी पार्टी का प्रदर्शन जारी रहेगा। झारखंड उच्च न्यायालय में 18 मई से 8 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान हाईकोर्ट की 3 बेंच अत्यंत जरूरी मामलों की सुनवाई करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत आज से डोर टू डोर मकान गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए प्रगणकों की टीम राज्य भर में घर घर जाकर मकानों का विवरण दर्ज कर रही है। प्रशासन ने आम जनता से सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय कार्य में सहयोग की अपील की है। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। परिणाम से असंतुष्ट छात्र 19 से 22 मई तक मूल्यांकन शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अंकों के पुनर्मूल्यांकन और विसंगतियों के सत्यापन के लिए 26 से 29 मई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। राज्य भर में आज वट सावित्री का पावन पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं आज निर्जला व्रत रखकर बरगद के वृक्ष की पूजा अर्चना कर रही हैं। रांची समेत विभिन्न जिलों के पूजा पंडालों और वृक्षों के पास सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है।
3: सब महिलाओं पूजा कर रहे हैं, अपने पति के लिए लंबे उम्र के लिए पूजा करते हैं,
4: भी आयु के लिए, घर की खुशहाली के लिए, जिसे अखंड सौभाग्य पाने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही पवित्र और पावन पूजा माना गया है।
1: देश भर में आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नागरिकों से स्वच्छता और सतर्कता अपनाकर डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि घर के आसपास जल जमाव को रोकना और समय पर इलाज कराना इस बीमारी से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। और अब मौसम का हाल। राज्य के कई इलाकों में 21 मई तक जहां बारिश के आसार हैं, वहीं कुछ इलाकों में 22 मई तक आंधी और वज्रपात की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में फिलहाल तापमान में वृद्धि और कमी का दौर जारी है। आने वाले 5 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: मन चाहेगी मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

आपके मनचाहे गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म डाक के इस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनाथ गांव से नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दाग का ये गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

मोहब्बत से लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है। सुनना चाहते हैं रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

फासलों की खुशबुओं में महकती नज़दीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना, और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म उलझन का ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में।

0: कौन सी
1: फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, इस गाने को सुनना चाहते हैं। जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

ये थिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवालाल फिल्म से सुना। और अब अगला मनचाहा गीत, बड़ी प्यारी सी पसंद चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये मीठी सी नोकझोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ। सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने। तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

0: दिल के सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहेगी यह है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: इस हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज, ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज,
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को। ये
2: नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन,
1: इस पर दया कीजिए।
0: अरे, ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
3: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
4: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं।
5: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है, लीजिए मैंने अपना बाण लौटा लिया।
4: पुरु वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
5: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
5: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन, मेरा नाम शारंग्रव है।
4: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
5: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
4: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहाँ पधार कर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
5: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
0: फिर?
4: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
5: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
0: शकुंतला?
4: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
0: कुलपति कब लौटेंगे?
5: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है।
4: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
5: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी समिधा लेकर उपस्थित होते हैं।
0: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
4: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों भड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं। क्या रूप, क्या सौंदर्य है। आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं। वन लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
2: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
3: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
4: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
2: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे, समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूठ जाएंगी।
4: लताएं भी रूठती हैं क्या?
2: हाँ, अगर उन्हें आत्मीय की तरह पाला जाए तो रूठती भी है और प्रसन्न भी होती है, समझी?
3: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
2: क्या समझी है तू?
3: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
2: वो कैसे?
3: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन है, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से।
2: अरे अनुसुईया, ओह, जरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांध दी है इस प्रियंवदा ने।
3: ए, मुझे क्यों दोष दे रही है?
2: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
3: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
0: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
2: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूं?
3: तेरे मुंह से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
2: परिहास ना कर।
3: अच्छा नहीं करती, बता।
2: देख, वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी पड़ी हो गई। नहीं,
3: तेरी तरह
2: फिर परिहास।
3: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
2: हाँ बता।
3: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
2: धत, तेरा तो सिर घूम गया है।
3: सच, मैंने अपने कानों से सुना है।
2: अच्छा,
3: पिता कण्व कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
4: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
2: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
5: ओह, अरे ये भौरा कहां से आ गया?
2: अरे
5: ओह, अरे भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। ओह, अरे अरे मेरा पीछा छोड़, भाग, अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
3: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
4: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
5: हाँ,
3: वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
5: अरे बचाओ, बचाओ ना।
0: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए।
6: पृथ्वी पर पुरवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
3: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
4: आपके आते ही भाग भी गया।
3: आप खड़े क्यों हैं आर्य, विराजिए ना।
4: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
6: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
3: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य,
4: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
6: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठिए ना आप लोग भी।
5: ना तुम लोग बैठो, मैं भी। अब बैठ भी जा।
2: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
3: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
4: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
6: मैं अब क्या बताऊं इन्हें, मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूँ। पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूँ।
3: आज यदि पिता कण्व यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
6: और ही ढंग से?
4: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर वे आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला,
5: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
6: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
3: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
4: बहुत मीठा है इसका गला,
3: करती रहती है सबका भला,
4: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
3: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है।
4: कुलपति कण्व की सबसे लाडली बिटिया है।
6: किंतु कुलपति कण्व तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
3: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य, वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
6: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
4: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डूलता हुआ दिखाई देने लगा।
6: फिर
4: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया। मेनका के उस मादक रूप को देखकर।
6: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
3: किंतु क्या आर्य?
6: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
3: यह तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य, पिता कण्व तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
5: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
3: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
4: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
6: वृक्षों को सींचने का ऋण?
3: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
4: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
6: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
3: आप
6: ये लीजिए
3: अंगूठी। किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
4: आपके पास ये अंगूठी?
6: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
3: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
4: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
6: मैं आभारी हूँ।
7: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं, सावधान सावधान।
6: लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आए।
4: हे भगवान, अब क्या होगा?
7: सावधान, वन के जीव जंतुओं के कान के रूप में एक उच्चुंडल हाथी भी उत्पात मचाता आ रहा है। सावधान सावधान।
8: चलो चलो चलो, उस हाथी के यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
4: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
6: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
4: चलो शकुंतला।
5: चलो
6: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं, किंतु तो मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा। शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तुमसे ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो। प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो। भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना। गधा, घोड़ा, बैल, मक्खी, मच्छर, कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है। शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है। अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो, नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है! आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं।
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे? अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है।
0: भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूं।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज?
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: हैं? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
0: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
0: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेश क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
0: विशेष बात?
1: हाँ, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
0: अप्सरा की कोख से? और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव्य।
2: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
1: उन्हें तुरंत यहां भेज दो।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराज की जय हो।
1: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
4: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
1: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूं मुनिजन।
4: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहाँ नहीं है।
5: उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आर्य।
4: अब आप ही इस आश्रम को

0: आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
1: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक।
2: आज्ञा महाराज।
1: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहाँ ले आए।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूँ।
0: आर्य की जय हो।
2: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
1: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
2: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
1: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: माता का संदेश?
3: महाराज की जय हो।
1: क्या आदेश है माता का?
3: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
1: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता माधव्य।
3: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
1: एक काम हो सकता है माधव्य।
4: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
1: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
3: मैं तुम्हारे स्थान पर?
1: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
3: ठीक है महाराज, दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
1: और हाँ, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ, यहाँ तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
3: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
1: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
3: कहिए महाराज।
1: यही कि मैं यहाँ तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूँ, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
3: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा?
1: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं भी तपोवन को

0: आह, कितनी प्यारी पवन चल रही है। अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: आह, क्या कह रही हो अनसुया?
2: प्रियंवता, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से
2: तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवदा, तभी से इसकी ये दशा हो गई है।
0: इसी से पूछकर देखें?
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो? इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
1: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं, तभी से
2: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
1: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
0: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
2: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
1: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
0: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
2: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
0: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
2: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
0: वो कैसे?
2: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
0: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
2: मुझे एक उपाय सूझा है।
0: क्या?
2: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं।
0: फिर
2: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
0: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
2: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
1: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
0: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
1: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
0: क्या शकुंतला,
1: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
0: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
2: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
1: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार, मेरे सब विविध भारती सुनने वालों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
1: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
2: जरूर,
1: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशंस आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो मंचीय प्रस्तुति?
2: अन्ना जी के सिवाय, वसंत देसाई के सिवाय।
1: अच्छा,
2: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं गाया। अच्छा, मैंने
1: मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
2: अन्ना जी के गानों का शो करता भुला है ना बने करके,
1: जी जी,
2: उनका उसका नाम था।
1: हाँ हाँ।
2: तो हम शो करते थे षण्मुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग।
1: जी।
2: तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के।
1: जी जी जी।
2: यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया।
1: हाँ हाँ।
2: तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ, तो आपके गले में नहीं आई, तो वसंत जी मतलब ठीक है आपको ऐसा आता है ना, ऐसे गाओ चलेगा। अन्ना जी नहीं, नहीं नहीं, वो ऐसा ही आना चाहिए, नहीं। अच्छा। तो नहीं तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
1: अन्ना जी मतलब
2: श्री रामचंद्र जी,
1: जी।
2: तो षण्मुखानंद में शो था।
1: हाँ।
2: और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पे ये करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाई दे रहे थे। तो थोड़ी देर अन्ना जी ने सहन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
1: अच्छा।
2: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दिया, फिर वो लोग चुप बैठ गए।
1: अच्छा।
2: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है।
1: हाँ।
2: नाम नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके, मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
1: जी, जी,
2: वो पूरा रिकॉर्ड भी, रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एच एम वी में।
1: अच्छा।
2: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
1: Okay.
2: एक समय काली पास सुर है तो।
1: हाँ।
2: खर्च के जो सुर होते हैं।
1: हाँ।
2: आवाज आती ही नहीं थी गले से।
1: ओ,
2: तो उन्होंने वो ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब। तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल?
1: हाँ।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं नहीं वो नहीं, तू घर जा सुबह उठ के खर्च का रियाज कर।
1: हाँ।
2: फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना तू। वो किसी के भी सुन, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
1: जी जी,
2: ये दोनों में फर्क था, वसन जी और अन्ना जी।
1: अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है,
2: बहुत,
1: उसमें से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ, तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये हाँ, तो समझ में आता है।
1: हाँ।
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं, वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ। लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, वसंत जी का म्यूजिक था
0: जी,
1: और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उनकी दोनों की जुगलबंदी, वो दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा।
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: तो
1: मैं बहुत ये दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका एसएल स्टूडियो था शशांक लालचंद तारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ।
0: हाँ।
1: हमारा तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया।
0: अच्छा।
1: लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने मुझे ये कहा था जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का।
0: अच्छा।
1: और कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा आपके हुक्म। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा अच्छा। आशा जी की बात निकली है, तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से ऑफ कोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना,
0: प्राण जाए पर वचन जाए, वो नैयर साहब का,
1: नैयर साहब का,
0: क्या बात क्या बात।
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी। लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत।
0: ये गाना सुन लिया।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए, और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अंबा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ
0: जी,
1: पुराना
0: जी,
1: कोई फिल्म का, और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ, दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर, तो लोग एकदम ऐसे अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे, और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
0: जी, बिल्कुल,
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उस मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका,
0: अच्छा,
1: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था, मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला हम वो गाई है, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं वो मेरी है, तो उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से कोई कोई गाने इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहां के लोकल लोग बहुत खुश होते थे, उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना तो मस्त उनको मजा आता था सुनने में। उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं आपको बताया कि
0: बिल्कुल,
1: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था मेरे पीछे, बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रिका फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता
0: अच्छा,
1: था,
0: अच्छा, कटआउट बनाया
1: था, कट आउट बनाया था।
0: हाँ, हाँ,
1: तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, था पत्रे का बनाया था
0: जी, जी, जी,
1: मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दत्तर और सुनहरी यादें, वो मेरे एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वो ही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था। तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास प्रदेश में एक गांव है मंदसौर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड उसको हम साइक्लोरामा डालते थे,
0: अच्छा,
1: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
0: घूम रहा
1: ऐसा
0: अच्छा,
1: लगता
0: अच्छा,
1: था
0: अच्छा।
1: तो ऐसा भास होता था लोगों को, तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको लोगों को ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ, मेरी तो जहां तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की, तो बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ
0: अच्छा।
1: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा, लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने ऐसा गाना, फिर वो शांत हो गया आदमी।
0: श्रोताओं की बात निकली है
1: जी,
0: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में शोज किए हैं और विदेशों में भी किए हैं, हर शहर का श्रोता अलग होता है,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं लेकिन अनुभव से आपको मालूम होना चाहिए कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं एक साथ लगो पाठ पांच छह शांत धीमे गीत भी लोग हा करके सामने सामने ये करते हैं,
0: अच्छा, अच्छा।
1: फिर दो गाने के बाद ये कोडा सफाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप हाँ समझना चाहिए, वो सिखा
0: अच्छा।
1: के नहीं आती बात,
0: अच्छा, अच्छा।
1: और जहां तक पहली बार भी गए किसी शहर में किसी गांव में छोटे से गांव में भी
0: जी, जी।
1: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस प्रकार के गाने चाहिए,
0: अच्छा,
1: तो वो होने से ज्यादा अच्छा होता है।
0: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहां के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है
1: फर्क? नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे,
0: अच्छा,
1: ये है अच्छा लगता, क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं तो वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे, पहला प्रमिला भी अच्छा गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब पूछते थे फिर आके।
0: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
1: वो रफी साहब का गाना एक दुगाना है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे
0: जी, जी,
1: तो
0: जी।
1: वो आगे आके उनको उसको एक बोलते ना, मैं बताती हूँ आपको, रफी साहब बोले शुरू करते थे
0: जी।

0: पिया फिर जानी विस्की। अरे परसो भी रहेगा अरे तरसो भी। क्या जानी भाई आप इतना के पूना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते।
1: जी जी जी। तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं, ये गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर।

0: रहेगा।
1: प्रमिला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
2: प्लेबैक।
1: अच्छा ना।
2: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और हाँ, स्टेज के लिए गाना
1: बहुत फर्क है।
2: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
1: जी, जी,
2: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना,
1: हाँ,
2: ये होता है, ये ठपका दोष आता है। इसलिए वो अगर होता था, लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी, मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे दाद मिलती थी लोगों की, तो मैं खुश थी, वही वो इसमें ही खुश थी। और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा चला और नाम लेने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया कि ऐसा होना चाहिए ऑर्केस्ट्रा। एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगर धिंगा ये वो डांस वो ये सब नहीं, अच्छी तरह से भी करो तो फिर लोगों को पसंद। तो पुणे के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने मोरक्ष को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो बस वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत अच्छी है, दूसरा कोई कहने की जरूरत ही नहीं है।
1: शो में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो,
2: शालीनता हो
1: तो जरूर, सवाल ही नहीं,
2: बिल्कुल
1: बिल्कुल बहुत सुंदर होता है, क्या बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग है और वो शो के लिए आपके आए हैं?
2: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी ज्यादा नाम मुझे याद नहीं।
1: प्राइवेट शोज भी होते,
2: प्राइवेट शोज भी होते थे,
1: कंपनी के लिए,
2: कंपनी के लिए किसी, कंपनी के लिए बहुत शो हुए।
1: अच्छा,
2: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्रियल से आप तो है मेरे।
1: अच्छा,
2: नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट किया।
1: जी जी, प्रमिला जी अलग

0: पता और
1: सही बात, सही बात,
0: विशेषता होती है। फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी, शमशाद हाँ बेगम जी के प्रस्तुत,
1: हाँ जी, हाँ।
0: वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ,
1: किन कंपोजिशंस
0: में ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
1: हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे वो चैलेंजिंग थे।
0: अच्छा,
1: अभी आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है।
0: अच्छा,
1: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है, लेकिन पुराने जो गाने थे उसमें अगर जो म्यूजिक भी था बीच का, वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा, इस तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है, ऐसा चिल्लाते थे जरा भी। मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ, मेरा अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है, उन्होंने शुरुआत करियर की मेरे शो से की थी।
0: अच्छा।
1: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचेरे गाने, तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और उसमें सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो नंदुरवार करके गांव है छोटा सा धुलिया के पास, तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास शो, जैसे आते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया। मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको क्लासिकल का ज्ञान था, तो नहीं वो लास्ट में जो ताने है वो उसने नहीं लिया, वो तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर खान साहब की गाई हुई है वो, तो लेकिन रफी साहब गा नहीं सकते ऐसा नहीं था, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए है मुकरी, तो उतना भी उसको मालूम पड़ा म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए, पुराने जो गाने बराबर उनको ए करके चिल्ला देते वहां से।
0: क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार सुना है,
1: उनके दिमाग में
0: वैसा वो सुनना चाहते हैं।
1: अभी वो गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है टरा टरा टरा, वो आना ही चाहिए, ये तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना, इतना म्यूजिक चिपक के चलता था शब्दों को
0: जी। ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं
1: जी,
0: उनकी नजर से एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है,
1: मिलता नहीं है, सही बात,
0: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना
1: बजा करके
0: अपना उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
1: एक तो रिहर्सल, बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से। इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ, कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20-25 शो हुआ करते थे, वो ही, और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए, नहीं तो आज ये ढोलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का। तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था, सालों साल तक
0: जी।
1: अभी मैंने 2023 को एक शो किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू, तो शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज 4 साल से, तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करे, तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को
0: अच्छा
1: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीजें नहीं थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी, लेकिन एक काल के हिसाब से तो बदली हो जाएगा
0: जी।
1: तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का, उसमें एक रिहर्सल और शो
0: जी,
1: बस दूसरी रिहर्सल नहीं, एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी होगा जी। तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी 2-3 थे म्यूजिशियंस, एक संजय मराठे करके है
0: जी,
1: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
0: जी,
1: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड उसका खुद का ग्रुप है, तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ मुझे शो करना है, तो ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना रिहर्सल, तो एक रिहर्सल और
0: जी,
1: लेकिन
0: जी।
1: फिर भी लोगों ने पसंद किया इसको, शो को।
0: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
1: विनय मनके बोलूंगी, विनय मनके,
0: विनय मनके,
1: विनय मनके।
0: जी जी, मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत से विज्ञापनों में विनय मनके जी की आवाज हम सुनते हैं।
1: जी, जी। तो उसको जिंगल किंग ही बोलते थे। हाँ, बहुत सारे जिंगल गाए उसने। और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज परफॉर्म होता है, वो था। बहुत सारे हल्के बुल्के बातें भी करने का बीच में मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे नॉट दैट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के।
0: अच्छा।
1: तो ये कुछ कुछ कुछ कुछ बीच में अशोक जी इतने एक दाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा। फिर मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा आया
0: बहुत अच्छे।
1: फिर एक गाना था अन्ना जी का, भोली सूरत दिल के खोटे, नए जमाने की नारी, नए जमाने की नारी। फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली, कान में बाली।
0: हाँ।
1: तो ये बोला ऐसा, हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली, कुछ भी मतलब वो ठीक था, लोगों को भी मजा आता।
0: मस्ती के मूड में,
1: मस्ती के
0: हमेशा रहते थे।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे,
1: जी, जी।
0: लेकिन विनय जो अकेला संभालता शो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाना था उसको। बस सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब
1: जी,
0: था।
1: जी, जी।
0: अच्छा गाना।
1: प्रमिला जी, अब गाना सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं। कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए पड़वा के शो, वसंतदा पाटिल, शंकरराव चौहान और जो कुछ, विलासराव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए। वो बड़ा शो हुआ करता था और तो मैं किसी को बुलाती थी, या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी, हाँ। प्रभु कुंज में, तो उसके सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली। सामने दर्शन हुआ साक्षात, तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके, आपने कैसे आना किया, कशा कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढी पाडव्याला,
1: अच्छा
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे, लेकिन वो भार्गव जाने वाली थी,
1: अच्छा,
0: नहीं
1: अच्छा।
0: आई। फिर मुझे उन्होंने पूछते है कि कसं भाव तुम्ही असे प्रोग्राम करता है, एवढे प्रवास करायचा, पर गायला उभा राहायचं कसं करता, म्हटलं नाही अभी आदत हो गई है, हो जाता है। मतलब उसने, उसके पास वो नोन थी कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा मालूम
1: था उनको। क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने अलग अलग गाने उनके गाए
0: जी,
1: हैं।
0: जी।
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे?
0: उनका एक सजा फिल्म का गीत है,
1: हाँ
0: वो मैं शायद

0: प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी है, पाड़ा लपिकला आंबा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या उसका शो में शामिल होना
1: बहुत ही जरूरी था, मस्ट।
0: और भी एक तो पहले हम उसकी झलक सुनेंगे,
1: जरूर,
0: और फिर लावणी की भी बात करेंगे।
1: हो मसला बघून तुम्ही जाना हो पाऊन, नमुना बघून तुम्ही जाना हो पाऊन, हो पाऊन पाऊन।

0: ओ पाऊन जरा थांबा अरे घे पडाला पिकलाय आंबा, आला बाई पडाला पिकलाय आंब, हो नीट बघ पडाला पिकलाय आंबा। कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी, पर फिर ये गाना तो वंस मोर होता ही था
1: जी जी।
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन, तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ, तो पड़ाल पिकला मैं बोलूंगी आंबा आप बोलेंगे।
1: अच्छा।
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के आंबा बलकर, अरे क्या कर रहे हो आप, अंबा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए, इतना जोर से। फिर जोर से एकदम जोर लगा के अंबा आता था सामने से, मजा आता था। उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ किया,
1: वाह वाह वाह,
0: उनको भी शायद था
1: जी। प्रमिला जी, आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी, तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ का कोई गाना आप उन्हें जरूर सुनाया
0: करती थी। हाँ।
1: और अपनी लिस्ट में
0: कनाडा गाना सुनाती हूँ
1: जी जी जरूर,
0: मेरी लड़की बैठे ना मतलब खुश हो जाएंगे।

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि क्या,
1: अरे बाप रे, गुजराती तो वो एक गाना था।
0: हाँ हाँ,

0: गाना बहुत उधर था। और उधर गुजरात के एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे।
1: हाँ।
0: तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहां जब सब काठियावाड़ी ने वो झिबला पहनते हैं,
1: हाँ, हाँ,
0: शॉर्ट,
1: हाँ,
0: वो पहन वाला बैठे थे, तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए, ए प्रेमिला बेन नवो पिक्चर में गाने गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने
1: जी.
0: उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर, इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे उसमें। तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ बोलना।
1: जी, बिल्कुल, बिल्कुल। 1975 में जो शुरुआत हुई उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की फहरिस्त बनाई।

0: नाती वो वही थी।
1: अच्छा।
0: उनके गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं वो ही गाने चाहिए लोगों को।
1: वाह वाह
0: बहुत मजा आता है।
1: बहुत मजा आ रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुन करके। प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए तो वो कौन सा गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, ऊपर वाले का ये कर्म है कि आज आप यहाँ पधारी,
1: मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: ऊपर है डूपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स में आज भारतवंशियों को संबोधित करते हुए भारतीय हॉकी की सराहना की। श्री मोदी ने भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच सजोर्ड मारिजनी के हॉकी विकास के प्रति उनके समर्पण की भी प्रशंसा की। उन्होंने हॉकी के प्रशंसकों से आग्रह किया कि वे इस वर्ष के अंत में नीदरलैंड्स और बेल्जियम में आयोजित होने वाले FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप में टीम इंडिया का समर्थन करें। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने आज रामगढ़ व्यवहार न्यायालय परिसर में वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर और मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान न्यायमूर्ति रोशन ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर भी जोर दिया। होमगार्ड नियुक्ति परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर रांची में आज अभ्यर्थियों की ओर से पदयात्रा निकाली गई। JLKM नेता देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में

0: में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से पदयात्रा निकालकर समाहरणालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर श्री महतो ने अवलंब परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की। राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में आज एमबीबीएस के एक छात्र ने आत्महत्या कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही अन्य छात्रों और हॉस्टल प्रबंधन ने कमरे का दरवाजा तोड़कर छात्र को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। रिम्स के निदेशक डॉ राजकुमार ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि डिप्रेशन से बचने के लिए संस्थान में जल्द ही मोटिवेशनल क्लास शुरू किए जाएंगे। झारखंड समेत देश भर में आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इस अवसर पर गुमला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर सिविल सर्जन डॉ शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि डेंगू संक्रमित मादा एडिज मच्छर के काटने से फैलने वाली गंभीर बीमारी है, जिसे सतर्कता और साफ सफाई के माध्यम से आसानी से बचाव किया जा सकता है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के कार्यक्रम में स्वागत है और सभी जन के जोहार भी नामता देने से आज हमारे साथे आयल हथिन संतोष भाई। तो संतोष भाई तोरो जोहार।
1: तोरो जोहार प्रणाम नामता बहन और साथे साथ किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के कार्यक्रम में स्वागत करो ये साथ ही संतोष देने से जोहार प्रणाम करो ये। और देखा कि कार्यक्रम में लिया है तो बहुत सारा जानकारी लेके लिया है, नवा नवा जानकारी लेके लिया है। तो पूरा कार्यक्रम सुनती ना अपन पास पेन को भी जरूर रखती ना, जे भी जरूरी बात हम इन बतेबे जरूर नोट करती
0: एकदम। और आज जो हम इन बात करबे वो है,
1: आज हम जो बात करबे कि जे हम के जो सरकार द्वारा बहुत सारा योजना निकालल जा है, तो योजना के बारे में आज हम बात करबे कि 2026-27 के लिए खरीफ फसलन के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में आर्थिक मामला के मंत्रिपरिषद समिति सीजन 2026-27 के 14 खरीफ फसलन के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ोतरी के मंजूरी दे देती है।
0: एकदम हर किसान के लिए देखला कि जे न्यूनतम समर्थन मूल्य हो है यानी कि MSP ई मूल्य में जब बढ़ोतरी हो है तो किसान खातिर ई बहुत फायदेमंद हो है, लाभकारी हो है। और यही है कि MSP में जब गिरावट आ जाए है तब है किसान के लिए ई फायदेमंद नहीं हो है। तो हम इनके कहा है कि ये चीज अपर जो है फायदा वाला बात है कि जे 14 खरीफ फसल जो है एकर में न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के मंजूरी दिया गेल है। तो एकर बारे में हम इन आगो भी जैसे कि जानबे कि एकर से जो है किसान सभी के उनकर उपज के जे लाभ मिले वाला जो कीमत हो है वो मिल जाए, लाभ मिल जाए ओकर में। और पिछला साल के तुलना में अगर हम इन देखबे MSP में सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी होले है अब धर पिछला साल के तुलना में, वो क्या है सूरजमुखी के जो बीज है ओकर में 622 रुपए प्रति क्विंटल, ओकर बाद कपास में 557 रुपए प्रति क्विंटल और नाइजर सीड में 515 रुपए प्रति क्विंटल और तिल में जो है 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है बढ़ोतरी करेले सिफारिश करल गेल है।
1: बिल्कुल।
0: और EMSP में जो है सभी भुगतान करल के लागत भी शामिल है, जैसन कि जे किराया पर लियल गेल जे इंसान सब के मजदूरी हो है, बैल या मशीन के मजदूरी, लीज पर या

0: पट्टा पर जे लियल जमीन हो है ओकर लेल दियल किराया और बीज उर्वरक जे हो है खाद जैसन जितना भी कच्चा माल है एकर इस्तेमाल में होय वाला खर्च, सिंचाई खर्च, औजार पर होय वाला खर्च और कृषि भवन जे बनो है ओकर लागत में कमी, साथ में काम करे वाला पूंजी पर जे है ब्याज और जे पंप हमीन पानी पटाल चलाओ है ओकर लेल डीजल या बिजली या आर चीज से भी जैसे कि जब चलो है तो ओकर पर जे खर्च बैठो है वो खर्च और पारिवारिक मजदूरी के जे अनुमानित एक कीमत हो है सब चीज एकर में शामिल है।
1: तो देखा कि कितना बेस बात है और हमने के उम्मीद है कि किसान भाई बहन की जानकारी सुन के जरूर लाभ मिलते हैं और भी जानकारी हमने ले लिया और कोशिश करवा कि हर प्रकार के जानकारी अपन किसान भाई बहन के दिए। तो देखा कि हमने के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कितना अच्छा खरीफ फसल के बारे में जो मूल्य बढ़ोतरी की मंजूरी देती है बहुत फायदेमंद साबित होते हैं और किसान भाई बहन खतीले बहुत आगे चल के उनके फायदा मिलते। तो हम कहे मतलब है तो हमने यही कहल चाहे कि हमने के जे भी किसान भाई बहन थी ओकरिन के हर प्रकार की जानकारी हमने इन कार्यक्रम के माध्यम से देवे और भी हमने बतेवे।
0: तो देखला के हमें जैसे कि बात कर लिए कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य में जे वृद्धि हुआ है तो ये है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के देने से जे है ये बढ़ोतरी करल गेल है न्यूनतम समर्थन मूल्य में और हमें जे है कार्यक्रम में आगो भी बनल रहे और अब धर सुनाओ हुए जरूरी संदेश।
1: बिल्कुल,
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: तो देखा कि जरूरी संदेश सुन लिया, और हमने जैसे कि पहले बातचीत कर लिए कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में आर्थिक मामला के मंत्रिमंडल समिति सीजन 2026-27 के 24 खरीफ फसलन के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ोतरी के मंजूरी दे दिलती, जेकर से हमरे के किसान भाई बहन के बहुत लाभ मिल रहा है। हमरा उम्मीद है कि हमरे के किसान भाई बहन इससे जुड़ के ओकर से लाभ जरूर लेथिन।
7: एकदम। और अब हम इन कार्यक्रम में जो है आगे बात करबे कि जैविक खेती जो है आज के समय में कितना जरूरी हो गया है।
6: बिल्कुल, और हम बतावे चाहो कि जैविक खेती आज के समय में किस प्रकार से जरूरी हो गया है, ओकर से का का फायदा हो गया ओकर बारे में बताए। सबसे पहला फायदा जे कि पर्यावरण और स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से बहुत जरूरी है। जैविक खेती करे

0: से फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी हो है, साथ ही साथ जैविक खेती से उपजल अनाज और साग सब्जी पौष्टिक और स्वाद भरल हो है। तो देखो कि पौष्टिक खाए बा तो तोहर भी शरीर स्वस्थ रहते, और हम के जे किसान भाई बहन खेती जैविक खेती में शरीर स्वस्थ रहते, पौष्टिक से यही फायदा हुआ। और जैविक खेती में जैविक खाद और जैविक कीटनाशक के इस्तेमाल होवे से जैविक खेती में कोई भी रासायनिक खाद या कीटनाशक के इस्तेमाल न हो है। इस कारण से माटी के सेहत भी में कोई भी नुकसान ना हुए और दिन ब दिन माटी में सुधार हुआ है। तो देखा कि जैविक खेती से कितना सारा फायदा, पहला फायदा हुआ कि पर्यावरण हमने के अच्छा हुआ, दूसरा हमने के फायदा स्वास्थ्य पर हुआ, तीसरा फायदा हमने के आर्थिक रूप से अच्छा हुआ, सबसे बड़ा फायदा हुआ मिट्टी में जो उर्वरक शक्ति हमेशा बढ़ते रहो और में किसी प्रकार में उर्वरक की कमी ना हो, दिन ब दिन हमने के मिट्टी में सुधार होते जाए
1: एकदम। जैसन की तू बताला कि एकर में जैविक खेती जब हम इन कर रही है तो ओकर में का है कि रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ।
0: बिल्कुल,
1: अब तो ये बहुत बेस बात बताला। तो एकर से का हो है कि जब वो रासायनिक खाद और कीटनाशक कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो है खेती में, तो एकर से हम इनके जैसे खेत के माटी है ओकरा कोई तरह के नुकसान नहीं हो है, और ना ही हम इनके जो जानवर हो है उखिन के नुकसान हो है, ना ही हम इनके नुकसान हो है, और पर्यावरण भी सुरक्षित रहो है। तो हम इनकी चीज देखे के चाहिए, समझे के चाहिए, और रासायनिक खाद और कीटनाशक पे जो होए वाला खर्च हो है वो भी कम हो जाए, बच जाए एक तरीके से। और जैविक खेती से अगर हम इन देखल जाए तो एक तरीके से एक जीरो बजट के खेती हम इनका हो ही है।
0: बिल्कुल,
1: और काहे कहो ये काहे कि तू देखला कि खाद और कीटनाशक पे जो खर्चा है वो नए के बराबर हो है। अब देखला कि हर किसान के पास कुछ न कुछ तो जानवर जरूर हो है, और उकर में का हो है कि हम इनके जो खेत से घास पात निकलो है, फसल के जैसे कि डंठल देखला कुंडा भूसा जे भी निकलो है, तो इस सब चीज का है हम इन अपन जानवर के उकर भोजन के रूप में खिला सको ही है। और दूसरा चीज है कि जे हम इनके जानवर से जे मिलो है जैसे कि गोबर और गोमूत्र, एकरा हम इन खाद के रूप में जे है अपन खेत में इस्तेमाल कर सको। और एक साथे का है कि जैसे नीम के जो पेड़ है हर जगह जगह मिल जाए है, और एक नीम के पेड़ के साथे जे है बहुत सारा ऐसा झाड़ी है जैसे कि सिंदवार हो गया, अकवन हो गया, सदाबहार है, कनेल है, जे की मतलब हर जगह मिल जाए है। और अकवन के पौधा तो तू देखला कि रोड किनारे कितना मिल जाए।
0: बिल्कुल,
1: और इस सब पौधा के कारण है बकरी हो गए जानवर हो गए न खाए है। तो ऐसा पौधा जे की जानवर न खाए है, ऐसा सब पौधा मिला के और ओकरा जो है कीटनाशक घर में तैयार करल जा सको।
0: बिल्कुल,
1: तो यहाँ तो तू देख ला कि खर्च जो है न के बराबर है। तो यही ले ले जैविक खेती के जो है जीरो बजट के खेती भी कहल जा है। और एकर से हम इनके है कि काफी मतलब फायदा है, नुकसान कहीं नहीं है।
0: बिल्कुल, देखा कि अकर में जीरो बजट है लेकिन ओकर में थोड़ा सा हमने की मेहनत और जानकारी होवे चाहिए, बिना जानकारी तू ना बना सकब। तो हमने के सबसे पहले जानकारी हासिल करे पड़ते कि किस प्रकार से बनावे के चाहिए, कौन कौन पौधा मिक्स करे के चाहिए जकर से हमने के जैविक खाद तैयार हो जीते। और जैविक खेती करे से देखा कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और फसल जो उत्पादन होता है अच्छा खासा उत्पादन होता है, सबसे बड़ा चीज मिट्टी में जो उर्वरक शक्ति रहते हुए अच्छा बढ़ते जाते, साथ ही हमने के खासे पौष्टिक आहार भी मिलते, तो बहुत सारा फायदा है। और हम चाहे किसान भाई बहन के कि जैविक खेती को और अग्रसर ज्यादा होवे चाहिए और कम से कम रासायनिक खाद के प्रयोग करे चाहिए।
1: एकदम सही कहला, और हम इन है सो कार्यक्रम में आगू बढ़ हुई है, और जो जानकारी है आज हम इन ले ही है कि सोनाली मुर्गी के बारे में। और ये ऐसा एक प्रजाति है मुर्गी के जेकरा में खर्च बहुत कम है और मुनाफा ज्यादा है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये मुर्गी पालन जे करे से बहुत फायदा है, और का फायदा है ये हम इन जानबे ये जानकारी से। जानकारी देते थे अंजू कुमारी
0: और हम इन धने से जे बातचीत करे थे नामता परवीन,
1: तो सुनना हो पहले ही जानकारी।
0: बिल्कुल,
2: तो किसान भाइयों हमारे वे है ओरिया और हमारे साथ है अंजू कुमारी जी। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: तो आप लोगों को ये बता देते हैं कि अंजू जी जो है कि बहुत अच्छे से और पहले से ही मशरूम उत्पादन का काम करते आई हैं और काफी सफलतापूर्वक अपना काम को ये करती है, और अभी जो फिलहाल ये नया काम शुरुआत की है मुर्गी पालन का, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मशरूम उत्पादन का काम करते हुए आप मुर्गी पालन का काम कैसे शुरू की, इस तरफ आपका झुकाव कैसे आया?
3: देखिए,

0: मेरा सबसे पहले फोकस रहता है कि कम इन्वेस्टमेंट हो और ज्यादा मेरा प्रॉफिट हो।
1: अच्छा
0: ठीक है, तो सभी मतलब कोई भी काम करने में क्या होता है कि आपको बहुत चीजों का बदलाव करना होता है।
1: हाँ
0: तो मेरा सबसे पहला रहा है कि हम बदलाव ना करके सबसे पहले देखें कि लाभ कैसे ले। तो जैसे मशरूम का रहा, तो मेरे घर पास बहुत सारे कमरे खाली पड़े हुए थे, तो उसमें मशरूम मैंने उत्पादन किया। क्योंकि अगर अगर कोई भी चीज को काम करेंगे तो बहुत ज्यादा लागत लगता है, चीजों में खर्चा होता है। लेकिन मशरूम के लिए कुछ नहीं रहा, सिर्फ मशरूम की सामग्री में ही मेरा पैसा लगा। तो
1: हाँ
0: कम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा प्रॉफिट।
1: जी
0: वैसे ही ये मुर्गी पालन में भी वैसे ही रहा कि सोच रहे थे कि और कुछ ऐसा करना चाहिए कि जब मेरा मशरूम ना बिके तो कम से कम कुछ और आमदनी का जरिया बने
1: जी जी
0: बिना ज्यादा खर्चा किए हुए। बस
1: हाँ
0: सिर्फ खर्च हो तो एक ही पार्ट में हो।
1: जी
0: तो याद आया कि अभी बहुत चला हुआ है एक, अभी आप नस्ल के बारे में जानते होंगे, सोनाली नस्ल। ठीक
1: अच्छा
0: है, वो एक हाइब्रिड है लेकिन वो एकदम देसी मुर्गे की तरह है। ठीक है, तो उसी का, और उसका बिजनेस बहुत अच्छा फल फूल रहा है। तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, तो फिर जैसे पता चला तो फिर उसी मुर्गे का पालन करना शुरू कर दिए। बस ये रहा कमरा और मेरा
1: अच्छा
0: जो पैसा लागत लगा मुर्गी में।
1: जी, तो ये सोनाली जाति की जो मुर्गी का पालन आप कर रहे हैं,
0: जी
1: तो इसके बारे में आप पहले बताइए कि ये किस तरह की मतलब मुर्गी है, इससे क्या फायदा होता है, और इसका मतलब एक शुरुआत से कि आप चूजा लाए तो क्या आपको पड़ा, कितना चूजा आप लाए, तो ये चीज आप बताइए।
0: देखिए, सोनाली जो है वो एक बांग्लादेशी ब्रीड है जो कि क्रॉस है उसका, इसको कहते हैं कि RIR और फ्यूमी के नस्लों को क्रॉस करके बनाया गया है, जो लगभग देसी की तरह है। और इसमें खासियत ये है कि ये जो हम लाए यहाँ लोकल एक एजेंसी से उठाए, जो लोग चूजा रखते हैं, तो किसी तरह जैसे पता करते करते पता चला कि वो लोग बेचते हैं चूजा, तो वहां से मैंने 50 चूजों का ऑर्डर दिया, तो वो हमारे घर तक 50 चूजे पहुंचा दिए। जब 50 चूजे आ गए, उसके बहुत अच्छे से, जैसे उन लोगों का स्टार्टर होता है, जैसे आप अगर आप दाना बहुत सारा मिलता है दुकान में लेकिन दाना नहीं, हम क्या बोले कि सिर्फ हमको एक चीज पे खपत करना था, वो चूजे पे, मतलब जो हम कर रहे हैं उस पर, और बहुत सारा खर्चा को मेंटेन, जैसे कि पहले जान गए तो कि इसके लिए और क्या कर सकते जो लागत कम हो। तो क्या किए, घर में ही गेहूं था उसका दर्रा बनाकर चावल को छोटा छोटा मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर और वो करके दलिया बनाकर उन लोगों को चूजा को दिए। कम से कम 15-20 दिन दिए, फिर जब वो बड़े हो गए
1: तो
0: तो थोड़ा,
1: मतलब स्पेशल स्टार्टर वगैरह जो दिया
0: हाँ
1: जाता है ब्रॉयलर मुर्गियों को, तो वो चीज इसमें नहीं लेना
0: नहीं
1: है
0: नहीं
1: ना।
0: नहीं आप घर के चीजों को देकर आप कर सकते जस, तो वैसे करके फिर चूजे से शुरुआत की। वो मेरा 50 का चूजा था। ठीक है, तो फिर 50 का चूजा था, तो उसमें से मेरा फिर 15 मुर्गा निकला। उसमें पता नहीं चलता है कि मुर्गा है कि मुर्गी, तो
1: जी
0: फिर
1: जी
0: वो जैसे जैसे बड़े हुए तो पता चला 15 मुर्गा है
1: हाँ
0: और 35 मेरी मुर्गियां हैं।
1: हाँ
0: तो ऐसे करके
1: अच्छा, इसमें अलग से आपका दाना वगैरह लेने का जरूरत नहीं है, और बाकी रख रखाव में क्या इसमें ध्यान देना पड़ता है आपका स्पेशल, जैसे कि साफ सफाई हो गई, बॉयलर वगैरह में होता है ना कि बाहर का जूता चप्पल पहन के हम लोगों को अंदर नहीं जाना है, उसके साफ सफाई पे ध्यान देना है, नीचे जो कुन्नी डाला हुआ होता है या धान का जो भूसा होता है वो डाला होता है उसको समय समय पे साफ करना है, पानी का बर्तन साफ करना है, इसमें क्या ध्यान देना होता है।
0: हाँ, देखिए ये है जैसे उसमें है वैसे ही है, लेकिन ये नस्ल में ये सबसे अच्छी बात है कि वो ये जल्दी बीमार नहीं पड़ते। पहले भी बोले कि ये देहाती की तरह है, देहाती मुर्गी जो है वैसे ही है, ये जल्दी, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत होती है, जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। और क्या है कि कमरे का, हाँ, सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो बीट वगैरह होता है, अगर मुर्गियां, अगर आप स्वस्थ लंबे समय तक उन्हें स्वस्थ रखना चाहते तो जाहिर जाहिर सी बात है गंदगी को तो साफ करना पड़ेगा। उनका बर्तन साफ हम लोग करते हैं, पानी का जो कंटेनर है उसको अच्छे से साफ करते हैं, ताकि अगर वो बीट वगैरह वो लोग पानी में जो कभी कभी चला जाता है गंदगी या पांग या धूल गंदा वो सब, तो हम लोग डेली उसको साफ करके ही बर्तन में देते हैं। और कमरे का सफाई 1 सप्ताह में करते हैं, और क्या रहता है कि थोड़ा सा एयरी होता है ताकि जो उनका मतलब जो वहां पे गैस है वो बाहर निकलता रहे, तो बढ़िया वेंटिलेशन का रखते हैं हम लोग ध्यान की, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे। और दूसरी चीज की उन लोगों का, हाँ, नीचे हम लोग थोड़ा भूसा देते हैं ताकि जैसे वो थोड़ा सा उन लोगों को बैठने का, क्योंकि वो लोग को खुदाई करने का आदत रहता है तो कम से कम स्क्रैचिंग करता रहे, इसलिए तो हम लोग भी उसमें ये लकड़ी का भूसा हम लोग डालकर उसको नीचे में और रखे हुए हैं। फिर पार्ट वाइज उनको थोड़ा छोटा छोटा जगह बना दिए ताकि वो बैठे अगर अंडा देना रहे तो वैसे करके। ठीक है, तो ऐसे
1: तो मुर्गी फार्म जैसे लोग करते हैं ना, तो अलग अलग तरह की मुर्गियों का पालन करते हैं, ज्यादातर तो ब्रॉयलर मुर्गियां जो होती है वो लोग करते हैं। तो आप सोनाली प्रजाति की जो मुर्गियां पाली हैं, तो यही मुर्गी पालने का आप फैसला क्यों ली, क्या फायदा है इसमें?
0: देखिए, एक तो होता है कि बिजनेस तो आपका सरपरि है, इसकी जो आपको आमदनी का जरिया चाहिए, लेकिन क्या कर रहे हैं वो आपके लिए और आपके समाज के लिए भी बेहतर होना चाहिए, ये भी जरूरी है। अब ब्रॉयलर का तो जैसा आप जान चुके हैं, तो सबका अपना बिजनेस करने का तरीका। मेरा बिजनेस तरीका है कि हम खुद अच्छा खाएं और हमसे जो भी ले वो भी अच्छा ले। तो मेरा पहला ये रहा है कि आजकल सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो जैसे कि इसमें क्या है कि ये देहाती के जैसा ही आता है, तो इसके अंडे में वही क्वालिटी होती है जो देसी मुर्गी के अंडे में। तो मेरे घर में खुद बच्चे, हम लोग भी खुद अच्छा खाना चाहते हैं, तो हम क्यों बाहर का अंडा ले। तो एक तो रहा कि खुद भी अच्छा खाने के लिए, और क्या रहा, ये मेरा देसी तरीके से बड़ा हो रहा है। तो अगर हम भी चिकन मटन के भाई शौकीन है, तो हम लोगों को भी जब मुर्गा खाना रहता है तो हम ब्रॉयलर क्यों लाए, क्यों ना घर में जब इतनी जगह है तो पालो भैया, खिलाओ। और इसमें खाने का खर्चा तो बोले कि घर का जितना किचन वेस्ट है, मेरा बगान का पत्ता घास वगैरह रहा वो सब खिला रहे हैं, तो वो सब खा रहा, हेल्दी खा रहा, तो जो भी प्रोडक्ट होगा वो हेल्दी होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि एक अच्छा खाने का ऑप्शन मेरे पास है। तो जब भी मन किया कि अगर नॉनवेज खाना है तो अंडा है अवेलेबल है, तो जो बच्चे जाकर फास्ट फूड मेरे घर के बच्चे खाएंगे बाहर में, एग रोल, एक भुर्जी, एक चौमिंग, वो घर में खा रहे हैं। और अगर किसी बगल वाले को, जैसा कि बहुत ज्यादा यहाँ कोई पाल नहीं रहा है तो ऑप्शन है नहीं किसी के पास कि देसी अंडा का जुगाड़ कहाँ से, तो बहुत सारे आजू बाजू के लोग भी मेरे पास खरीदने को आ रहे हैं। तो एक अंडा 20 रुपए का बिकता है, तो मान लीजिए कि मेरा क्या हो जा रहा है, एक दिन का साग सब्जी का भी खर्चा निकल जा रहा है। तो इस वैल्यूएबल के लिए और ये हेल्दी चीज के लिए, इसलिए इसका पालन हम कर रहे हैं। और ये रहता है कि मुर्गी जो है, इस मुर्गी का ये अच्छा चीज है कि ये अपने पूरे लाइफ साइकिल में, 3 साल का लाइफ साइकिल होता है, एक साल में ये 200 से 260 अंडे देती है कंटिन्यू। और ये मुर्गी जो है ये 4.5 महीने से 5 महीने के अंदर में अंडा देना शुरू कर देती है। अब मुर्गा जो है वो 6 महीने में 1.5 से 2.5 केजी का तैयार हो जाता है, ज्यादा बिना मेहनत का ज्यादा।
1: और इसमें जैसे कि हम पूछना चाहेंगे कि ब्रॉयलर में होता है क्या कि वैक्सीन का जरूरत पड़ता है कि जब चूजा लाए तो उस समय आंख नाक में वैक्सीन डाला जाता है, फिर बाद में भी वैक्सीन पड़ता है, तो इसमें क्या वैक्सीन की जरूरत पड़ती है?
0: हाँ, इसमें शुरू में जब चूजा हेचरी से जब निकलता है तब उनको वैक्सीनेट किया जाता है, उसके बाद इन्हें कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ता है। बस रख रखाव, साफ सफाई और उसका सही तरीके से खाना पीना आप वो दे, ये हेल्दी रहेंगे। अगर आप खुले में भी छोड़ना चाहते हैं तो ये खुले में भी चर कर रहेंगे, जैसे देहाती मुर्गी रहती है मुर्गी।
1: बस मतलब वैक्सीनेशन जो होता है बस वन टाइम होता है। और इसमें क्या है कि आपका जो अंडा हुआ वो किस रेट में बिक जाता है, जो मुर्गा है वो आप कैसे बेचते हैं?
0: तो ये अंडा जो है हम लोग 20 रुपए पर पीस देते हैं जी, और अंडा का कीमत हो गया 20 रुपए, और मुर्गा जो है वो हम लोग जैसा जगह है उस मुताबिक बेचते हैं, नहीं तो यहाँ 350 से 400 रुपए किलो बिकता है एक मुर्गा
1: जी। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा है। और जैसा कि आप बता रही है कि बहुत कम समय में, कम लागत में ये मतलब तैयार हो जाता है, दाना वगैरह में इसका जो भोजन है उसमें ज्यादा खर्च नहीं है, तो बहुत ही अच्छे तरीका से आप इस काम को कर रही है। और जैसा कि आप कहे कि मतलब घर को संभालते हुए एक व्यवसाय करना चाहती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो आप और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी वो आप बताइए।
0: देखिए, मेरा तो यही कहना रहेगा कि आप ये जो है सोनाली मुर्गी या कोई भी मुर्गी फार्म करे, तो इसमें ये है कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, सुबह शाम 10 मिनट का रहता है कि आप जाइए उन्हें खाना पानी देकर और आ जाइए, वो अपना आराम से रहेंगे। तो अगर बहुत भी बिजी है और उन्हें आय का एक अच्छा स्रोत ढूंढना है और उनके घर में स्पेस भी है, या फिर स्पेस भी नहीं है, अगर चरने का उनके पास जगह है, तो इसका पालन आराम से वो कर सकती है और लाभ ले सकती है।
1: अच्छा, लास्ट में आपसे जाते जाते एक सवाल और करना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे महिलाओं के मन में ये सवाल भी रहेगा, किसान भाइयों के मन में सवाल रहेगा कि क्या इस मुर्गी को पालने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत है क्या?
0: देखिए, ये तो है कि ट्रेनिंग का तो

0: जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इन्हें किन्हीं को लगता है तो हाँ, किसी ना किसी का तो साथ लेना पड़ता
1: जी
0: है,
1: जी
0: क्योंकि आप पूरी तरह से, कभी कभी क्या होता है कि मुर्गियों में अलग अलग कुछ कुछ बीमारियां दिखने लगती हैं, तो आपको जानकारी नहीं होता है तो आप उसका सही देखभाल नहीं कर सकते,
1: जी जी
0: तो आपको किसी ऐसे डॉक्टर के या जो जानकार है उनके संपर्क में तो रहना पड़ेगा,
1: जी
0: तो उस प्रकार से आप उनका देखभाल कर सकते हैं। और मेरी बात है कि तो ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन बहुत सारे एजेंसी जो है वो ट्रेनिंग दिलवाते हैं फार्मिंग का, तो वहां से लेकर वो अपना काम शुरू कर सकती
1: जी
0: है।
1: चलिए अंजू जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों के साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो देखा कि हमने कितना बेस जानकारी सुना ली, और जानकारी है लेकिन सोनाली मुर्गी पालन से का फायदा, कैसे पालन चाहिए और अपन बेरोजगारी के कैसे दूर करे चाहिए, बहुत अच्छा बात बतेलथिन और जो जानकारी दिए थेलथिन ओकर नाम है अंजू कुमारी, और हम इन दने से जब बातचीत कर थेलथिन नाम आता परवीन, तब बड़ा बेस जानकारी है। और हमने के उम्मीद है कि जानकारी सुन के हमरी के किसान भाई बहन जरूर सोनाली मुर्गी पालन करथिन और ओकर फायदा जरूर उठेथिन।
3: एकदम सही कहला। और अब जो समय है वो है बाजार भाव और मौसम के जानकारी के बारे में हमें बता दीजिए।
2: तो देखा कि आज के बाजार भाव में लाल आलू है 20 से 25 रुपए प्रति किलो, सफेद आलू है 15 से 20 रुपए प्रति किलो, प्याज देखा कि 20 से 25 रुपए प्रति किलो है, वहीं देखा फूल गोभी है 40 से 45 रुपए प्रति किलो।
3: और पत्ता गोभी जो है 20 से 25 रुपये किलो है, पटल जो है 40 से 45 रुपये प्रति किलो, भिंडी जो है 30 से 35 रुपये किलो, नेनुआ 30 से 35 रुपये किलो, कद्दू जो है 30 से 35 रुपये किलो।
2: और वहीं देखा कि हरा मिर्च है 80 से 100 रुपए प्रति किलो, शिमला मिर्च है 90 से 100 रुपए प्रति किलो, गाजर देखा कि 40 से 50 रुपए प्रति किलो है, बीट 40 से 50 रुपए प्रति किलो है, बीन्स देखा कि 40 से 45 रुपए प्रति किलो, मूली 35 से 40 रुपए प्रति किलो है, और धनिया पत्ता देखा कि 80 से 100 रुपए प्रति किलो है, और अदरक है 100 से 120 रुपए प्रति किलो।
3: और वहीं जो है खीरा के जो कीमत रहले वो है 20 से 30 रुपए प्रति किलो, टमाटर भी 20 से 30 रुपए प्रति किलो, लाल साग 20 से 30 रुपए प्रति किलो, पालक साग 25 से 30 रुपए प्रति किलो। और आज के मौसम के जानकारी जो बता दीजिए कि अधिकतम तापमान जो रहले वो है 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहले 27 डिग्री सेल्सियस और आद्रता आज के रहले 37%।
2: और देखा कि कल के तापमान के बारे में बता दिया चाहिए, तो कल के जो अधिकतम तापमान रहते 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो तापमान रहते 27 डिग्री सेल्सियस, वहीं आद्रता के अगर हम बात करिए कल के तो 35%।
3: और अब जो है कार्यक्रम में हम इन बात कर रहे योजना के बारे में जे की सरकार देने से चलावल जाए है।
2: बिल्कुल, सरकार द्वारा देखा कि बहुत सारा योजना चलावल जाए, ओकर में देखा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो कि भारत सरकार द्वारा चलावल जा रहा है, और एकर में देखा कि छोट और सीमांत किसान के लेल चलावल जा रहा है, और सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजना है, ये योजना के तहत तय कहा हुआ कि 60 वर्ष के हो जाए के बाद किसान सवेन के हर महीना 3,000 रुपया करके पेंशन दिया जा है।
3: एकदम, यानी कि जे किसान सब हथिन उनकर मतलब 60 साल जब हो जाए है ओकर बाद जे है आजीवन जे है 3,000 रुपया हर महीना दियल जाता है पेंशन के रूप में है ना। और एकर में एक चीज आर का है कि अगर जे लाभ पाए वाला जे किसान हथिन उनकर अगर कोई कारण से मृत्यु हो जाए है तो उनकर जे जीवन साथी है उनकर का हो है कि पेंशन के 50% यानी कि आधा, यानी कि देखा जाए कि 3,000 के आधा हो गए 1,500 रुपये, तो 1,500 रुपये उनकर हर महीना पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलो है।
2: और अगर मैं एक चीज और बता दिए चाहे किसान भाई बहन की ये अपन इच्छा से जमा राशि आधारित योजना है, अगर में किसान के उम्र के हिसाब से 55 रुपया से लेके 200 रुपया तक हर महीना जमा करे के हुआ है, और इतना ही पैसा सरकार देने से किसान के पेंशन खाता में जमा करल जा है, आवेदन करे के समय किसान के उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होवे के चाहिए।
3: एकदम सही कहला। और अब हमें देखो ये कि किसान के पास का चीज हो चाहिए एकर आवेदन करे ले, तब एकर में कहा है कि जे किसान है उनकर पास मतलब 2 हेक्टेयर से तक के ही जो है खेती लायक जमीन होय के चाहिए।

0: से ज्यादा जमीन नहीं होके चाहिए। और दोसर जो है कि मतलब अगर जो किसान दोसर कोई सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ल हथिन उनखर है सो पेंशन के लाभ नहीं मिलता है। और एक और चीज है कि जे भी किसान अगर जैसे कि आयकर देव हथिन यानी कि टैक्स पे ही जो हो है अगर वो है तब उनखर भी ई पेंशन योजना के लाभ नहीं मिलता है। और एक साथ साथ आर भी जे दस्तावेज चाहिए
1: क्या कि दस्तावेज में हो गलो कि आधार कार्ड दिए पड़ते है, बैंक खाता विवरण दिए पड़ते है, खसरा खतौनी जो जमीन के दस्तावेज हो ओकरा दिए पड़ते है और पासपोर्ट फोटो साइज दिए पड़ते है
0: एकदम। और आवेदन जो है वो जो नजदीक के है जन सुविधा केंद्र हो है तो वहाँ पर जाके जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है वहाँ पर एक आधारिक मतलब आधिकारिक एक पोर्टल हो है वहाँ पर अपन पंजीकरण करवा सको हथिन।
1: बिल्कुल,
0: तो इस चीज ध्यान दिए के है और यहाँ पर से आवेदन आसानी से करल जा सको है।
1: तो देखा कि अब हमरी घड़ी के दिन देखो ही तो कार्यक्रम किसान वाणी से हमरी के जाए के बेरा हो गए और हमरी को उम्मीद है कि कार्यक्रम में बहुत सारा ये योजना बतेली है उस योजना से हमरे के किसान भाई बहन के जरूर लाभ मिलते हैं जुड़थिन और जब भी अब तो नवा नवा और भी जानकारी लेके अब इस कार्यक्रम में। तो यही जानकारी के साथ कार्यक्रम किसान वाणी से हमारा संतोष भाई के
0: और हमारा नहमता बहन के अनुमति देती
1: जोहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम होगा खेती बारी, बस कुछ ही देर में।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुन रहे सभी ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम में स्वागत है और साथ ही नहमता की तरफ से सप्रेम नमस्कार
1: और संतुष्ट की तरफ से भी आप सभी को स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। साथ ही नमस्कार और नमता जी आपको भी स्वागत करते हैं, साथ ही हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार संतोष जी, और हम लोग कार्यक्रम में आ गए हैं, ढेर सारी बातें करेंगे और साथ में जरूरी संदेश भी सुनाएंगे, जानकारी भी लेकर आए हैं और साथ में एक खूबसूरत सा गीत भी लेकर आए हैं।
1: तो देखिए कार्यक्रम की शुरुआत तो हो चुकी है और हम चाहते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में क्या हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं।
0: जी बिल्कुल, तो क्या है कि हम लोग जैसे कि खेती का काम करते हैं और ऐसे भी क्या है ना कि हर किसान जो है खेती के साथ साथ पशुपालन का काम या मुर्गी पालन का काम, बकरी पालन का काम जरूर करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हर किसान के घर में कोई ऐसा किसान नहीं होंगे जो कि जिनके यहाँ मतलब दो चार मुर्गी या एक दो पशु नहीं हो, तो ऐसा होता है। लेकिन अगर व्यवसायिक तौर पर हम लोग देखते हैं कि खेती के साथ साथ जो है अगर मुर्गी पालन का काम किया जाए व्यवसायिक तौर पर, ऐसे तो दो चार हर घर में होते ही है, तो व्यवसायिक तौर पे करने से क्या है बहुत ज्यादा इसमें फायदा है मुर्गी पालन में।
1: बिल्कुल, और करना भी चाहिए, उससे क्या होता है कि आपका जो आमदनी है दुगनी हो जाएगी इस खेती से, जो खेती बाड़ी

0: जो आपका आमदनी अलग है, उसके साथ अगर मुर्गी पालन का काम करते हैं उसका आमदनी अलग है। लेकिन उसके लिए हमें सही से जानकारी चाहिए। अगर मुर्गी पालन करना चाहिए तो उसके पहले हमको जानकारी रखनी चाहिए और किस प्रकार से उसका सेड होना चाहिए, से खान पान में क्या चाहिए, कौन सा नस्ल रखना चाहिए, क्या फायदे, सारा जानकारी रख के अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो बहुत सारा फायदा है। अगर हम फायदा के बात करते हैं और मुर्गी का जो हम लोग मुर्गी पालन करते हैं उससे किस प्रकार से हम लोग का जो उत्पादन जो आमदनी हो सकती है उसके बारे में कुछ हम बता देना चाहते हैं अपने किसान भाई बहनों को। सबसे पहले देखिए, अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं उसके प्रकार के बारे में, अंडा उत्पादन के लिए भी आप मुर्गी पालन करते हैं, दूसरी बात मांस उत्पादन के लिए भी आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, देसी मुर्गी का पालन करने से आपको आमदनी, तो कहने में अंडा उत्पादन के लिए आप मुर्गी पालन करो उसमें अच्छा खासा आमदनी है, मांस उत्पादन करने के लिए भी उसमें अच्छा खासा आमदनी है, और देसी मुर्गी पालन करते हैं तो उसमें और ज्यादा फायदा है। तो कहने का मतलब हर प्रकार का आप मुर्गी पालन कर सकते हैं और मुर्गी पालन करने से बहुत ज्यादा फायदा है, बस बस थोड़ी सी मेहनत और जानकारी इसमें चाहिए और उसका हर मौसम का अनुरूप एक जो शेड बना रहता है उसको बनाना चाहिए। अभी देखिए कि गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम के अनुसार उसको अब हवा हवा आना चाहिए, उसके लिए खिड़की को थोड़ा रखना होगा, साथ ही गर्मी में उन लोग को लू से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए या गर्मी से बचने के लिए उसको पंखा का ये सब सारा व्यवस्था रखना होगा, साथ ही उसको खान पान में क्या देना है, इन सभी बातों पर विशेष ध्यान।
1: मुर्गी पालन जैसे हम लोग करते हैं ना, तो जो शेड बनाते हैं तो खिड़कियां होती है, दरवाजे होते हैं, तो वहां पे क्या है कि जूट का बोरा हम लोग लगा सकते हैं और दिन के समय में उससे बोरी को भिगा सकते हैं पानी से, ताकि बाहर का जो गर्म हवा जाए वो ठंडा हवा में तब्दील हो जाए, बदल जाए और अंदर मुर्गियों को लू नहीं लगेगी।
0: बिल्कुल, कार्यक्रम में और भी हम लोग बातचीत करेंगे, बहुत सारा जानकारी लेकर आए, तो हम सभी का या हमारे सुन रहे ग्रामीण भाई बहन का भी मन होगा कि एक प्यारा सा गीत हो जाए तो
1: जी,
0: और भी अच्छा लगेगा,
1: तो सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा गीत और साथ ही जरूरी संदेश।
0: बिल्कुल,
2: बदलो बदलो आदत बदलो,
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए, अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें, RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो देखिए, हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारा गीत सुने और जोरदार संदेश भी सुने। और जैसे कि हम लोग बातचीत कर रहे थे पहले कि अगर खेतीबाड़ी के साथ साथ अगर मुर्गी पालन का काम भी करते हैं तो आपका आमदनी अच्छा होगा। साथ ही अगर आप इसी अगर पशुपालन का भी काम करते हैं तो आपका आमदनी और भी व्यवसाय बढ़ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको सही जानकारी चाहिए और कोई अनुभवी किसान, उनसे भी जानकारी आप लेके पशुपालन का भी काम कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा खासा आमदनी है। तो उसी के लेकर एक भेंटवार्ता लाए हैं कि गर्मी के दिनों पशुओं को कैसे देखभाल करना चाहिए और एक पशुपालन करने से एक आमदनी का जरिया कैसे बनता है, इस सब पर बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि अपने किसान भाई बहनों को जानकारी सुनाए और जो जानकारी दे रहे हैं उनका नाम है प्रमोद यादव और हम लोग तरफ से जो बातचीत किए हैं
2: वो संतोष कुमार दास।
1: तो सुना जाए।
2: बिल्कुल।
3: श्रोताओ, आज हमारे बीच मौजूद हैं पशुपालक प्रमोद कुमार यादव और जो कि गांव सिंधवारी के रहने वाले हैं, बड़का गांव। तो आज इनसे बातचीत करते हैं कि पशुपालन कैसे करते हैं, पशुपालन करने से क्या क्या फायदे हैं। तो प्रमोद जी, सबसे पहले तो आपको हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही हमारा नमस्कार।
4: जी नमस्कार।
3: तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पशुपालन जो कर रहे हैं लगभग कितने सालों से कर रहे हैं पशुपालन?
4: जी हम, मेरे यहाँ तो मेरे दादा भी पशुपालन करते थे
3: जी,
4: फिर पिताजी कर रहे हैं, फिर अभी हम लोग भी कर रहे हैं
3: जी।
4: पशुपालन यानी हमारा शुरू से पुरखौती संपत्ति के रूप में।
3: तो लगभग कितने साल हो गए?
4: मेरे होश से पहले ही अगर हम इसमें गए हुए हैं तो मेरा अभी तकरीबन साल चल रहा है। जब से हम होश संभाले तब से देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे घर में पशु

0: पालन जारी है।
1: मतलब आपका कहने का मतलब आपका खानदानी चल रहा है कि पशुपालन करना
0: जी
1: आप करते आ रहे हैं
0: जी।
1: सबसे पहले आपसे ये जानेंगे आगे कि पशुपालन जो कर रहे लगभग आपके पास कितने पशु हैं?
0: अभी हमारे पास कम से कम 17-18 पशु हैं, जिसमें कि गाय 5 है और बछड़ा उसका 5 है और फिर 2-4 उसे थोड़ा बड़ी है जो कि पिछले साल जो इतनी हुई थी
1: जी जी,
0: तो अभी वो लोग बड़ी हो गई है
1: जी। तो इतने 18 आपके पास पशु हैं
0: जी।
1: तो आगे अभी देखिए कि गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मी के मौसम में खास करके विशेष ध्यान देना पड़ता है पशुओं को, तो आप किस तरह से पशुओं को देखभाल करते हैं और क्या व्यवस्था रखे हुए उनके रखने का और खाने पीने का?
0: जी, रखने के लिए तो उसको सबसे पहले हम लोग गौशाला जो है शुरू से है हम लोग के यहाँ गौशाला, उसको रहने में कोई वैसा दिक्कत नहीं और रहने के लिए गौशाला है बढ़िया नीचे हुए लेंथ किया हुआ
1: जी
0: है
1: जी।
0: और खाने पीने के लिए उसको नाद बनाया गया है
1: जी।
0: जैसे कि आप पूछे कि खाने में क्या क्या, तो सुबह में वही उन लोगों को कुट्टी भूसी जो है
1: जी।
0: देते हैं, उसके बाद दोपहर में पानी पिलाना और थोड़ा पुआल वगैरह देना
1: जी।
0: फिर शाम में वही कुट्टी चोकर दर्रा जो गाय देती है उसको दर्रा देना और चुन्नी, जबकि अब गर्मी का सीजन आ गया है, ठंडा का सीजन में तो हम लोग इतनी देते थे कड़वा खली
1: जी,
0: लेकिन गर्मी का सीजन है तो उसको चुन्नी देते हैं
1: जी,
0: जिससे उसका थोड़ा शरीर बना हुआ रहे
1: जी। तो आगे ये बताइए कि अभी गर्मी का मौसम के अनुसार गर्मी से बचने के लिए घर में से गौशाला बनाए तो जिससे गर्मी से बचाव हो उसके लिए आप क्या किए?
0: गौशाला में अभी तो फिलहाल हम लोग को अब आ गया है कि थोड़ा पंखा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह हम लोग को मच्छर काटता है उस तरह गाय लोग को भी थोड़ा काटता है
1: जी जी।
0: और पंखा लगाने के थी है, फिर सुबह में कम से कम एक दिन में एक बार उसको नहाया जाता है
1: जी जी।
0: और हम लोग नहाते भी हैं दिन में एक बार, हालांकि हम लोग के यहाँ पानी का थोड़ा किल्लत है लेकिन उसको थोड़ा दूर में है कुछ चापाकल, उसमें जाके हम लोग नहलाते हैं
1: जी।
0: थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन नहलाते हैं उन लोग
1: हर दिन उन लोग को। और घर में से साफ सफाई का जैसे गौशाला का साफ सफाई कब कब करते हैं ताकि पशुओं को दिक्कत ना हो या किसी तरह का बीमारी ना हो?
0: पशुओं को गौशाला को साफ एक बार सुबह में और एक बार शाम में साफ करना जरूरी है, और सुबह में कम से कम एक बार फिनाइल से धो देना ताकि मक्खी ना लगे
1: जी जी, तो इस तरह से
0: बचाव होता है।
1: तभी गर्मी के मौसम में कौन ऐसा बीमारी जो अक्सर लगती है पशुओं में?
0: गर्मी में वैसा तो अभी कोई बीमारी का प्रचलन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा लू लग जाता है जो अभी चारा मतलब गाय लोग को कम मिलता है
1: जी।
0: खेत तरफ चारा कम मिलता है और इधर भी थोड़ा महंगा हो जाने के कारण चारा कुछ उन लोग को फर्क पड़ता है, गर्मी में बरसात की अपेक्षा फर्क पड़ता है उन लोग को चारा में
1: जी।
0: तो चारा में फर्क पड़ने का कारण उन लोग को थोड़ा लू लगने का डर रहता है, और दूसरा बात है कि लू लगना और थोड़ा जब जो गाय लोग थोड़ा ज्यादा एथी हो जाती है तो उस कमजोर हो जाती है, उसको जू पकड़ना चालू कर देता है, तो उसके लिए रोज दिन धोना और जू के एथी मारने के लिए एक दवा आता है बुटेक्स नाम है उसका
1: जी,
0: उसको पानी में घोल के और उसको दिया जाता है, रगड़ा जाता है बदन पे
1: जी,
0: तो उसको रगड़ने से नियमित एक दो दिन रगड़ने से वो सारे जू झड़ जाते हैं
1: जी। तो इस तरह से गर्मी में बचाव किया जाता
0: जी।
1: अगर ये बताइए पशु लोग को खाने में क्या देना चाहिए संतुलित भोजन में ताकि पशु से गाय जो होती है अधिक दूध दे? ऐसा
0: अधिक दूध देने के लिए दर्रा अभी मकई का और चुनी
1: जी,
0: चना का चुनी होता है
1: जी,
0: वो देना अनिवार्य जरूरी है ताकि ये है थोड़ा ठंडा है
1: जी,
0: ठंडा रहता है तो शरीर को ठंडा रखेगा और दूध भी देगी गाय
1: जी।
0: उसके अपेक्षा आप थोड़ा गाय लोग को गुड़ का पानी पिलाना चाहिए ताकि गर्मी में उसको ठंडक का एहसास हो अंदर से, ताकि लू ना लगे, और अगर गाय को लू लग गया बाय मिस्टेक लग गया तो उसके लिए आप उसको ग्लूकोमेडी का पानी पिए और तुरंत है डॉक्टर का सलाह लीजिए, ट्रीटमेंट वगैरह करवाइए उसको, थोड़ा घरेलू उपचार से हल्का सा दूर रखिए। घरेलू उपचार है कि उसको थोड़ा ग्लूकोज का पानी पिलाइए और गुड़ का शरबत पिलाइए उसको,
1: तो इस तरह से बचाव किया जा सकता है। अगर ये बताइए कि जो खाने के लिए देते हैं पशुओं को तो उसके लिए व्यवस्था क्या है, किस तरह से देते हैं खाने के लिए?
0: उसको खाने के लिए उसको नाद का प्रयोग किया जाता है, नाद और टप का
1: जी,
0: जो टप को भी अच्छा से साफ सफाई रखना चाहिए और नाद को भी। अधिकतर देखते हैं कि खाना देने के बाद उसको कुछ दिन तक उसी तरह रहता है और अंदर में थोड़ा एथी गंध देने लगता है।

0: के रूप में है मेरा एक ये पशुपालन। गाय दूध देती है उसको हम बेचते हैं, वो दूध हम मेरे लिए भी उपयोगी है, हम भी खा पी लेते हैं। उसके बाद गाय गोबर करती है जो मेरे खेत बाड़ी में खाद के रूप में प्रयोग करते हैं हम उसको।
1: जैसा आप बोले कि दूध प्राप्त हो जाती है, तो दूध आपको कितनी प्राप्त हो जाती है?
0: दूध हमको लगभग एक टाइम में 16-17 लीटर दूध प्राप्त हो जाती है।
1: अगर हम बात करते हैं कि 16 लीटर पर डे आपका होता है दूध, तो महीना में आपका आमदनी कितनी हो जाती है, जैसे बेच के इसे खा पी के और भी?
0: अभी कितना? अभी तक वैसा कोई अदर काम नहीं करते हैं, लेकिन इसी यही पैसा से हम इतना बता देना चाहते हैं कि यही पैसा से हम लोग का घर चलता है, हम लोग का पढ़ाई लिखाई भी अभी तक अच्छा हो रहा है, पहनावा ओढ़ावा भी अभी यही से चल रहा है, मतलब एक अच्छे परिवार की तरह हम लोग रह लेते हैं।
1: कहने मतलब कि आप पशुपालन से एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपका आर्थिक स्थिति भी पशुपालन से अच्छा हुआ है
0: जी।
1: और जैसे आप दूध से आमदनी हो जाती है, साथ ही आप दूध का क्या और भी करते हैं कोई, जैसे दही बनाना
0: जी? दूध का जब अब गर्मी का सीजन आया तो बेचते, दही बेचते नहीं है, लेकिन हम अपने लिए दही जरूर बनाते हैं,
1: तो उसे आप घर में खा भी लेते हैं
0: जी।
1: और भी क्या फायदे हैं जो पशुपालन करने से?
0: फायदे तो यही है कि कम से कम बेरोजगारी हम लोग का नहीं है
1: जी। जी
0: जो शुरू से है हम लोग थोड़ा इसी में बिजी रहते हैं, अपना व्यस्त रहते हैं।
1: जैसे गाय के साथ साथ जैसे बैल भी है
0: जी,
1: तो उससे आपका खेत,
0: उससे
1: में
0: खेत बाड़ी का काम होता है। बैल से बछड़ा, जब गाय बछड़ा देती है तो उससे फिर हम उसको बैल बनाते हैं, बैल बनाने के बाद उसको खेत में उपयोग करते हैं। बैलगाड़ी भी हमारे यहाँ है उपयोगी, जो कि बैलगाड़ी से भी हम अपना सामान को ढोते हैं
1: जी। जी
0: तो बैल से भी हम अपना उपयोग कर लेते हैं, जो बाछी होती है बाद में जाके वो आगे चल के गाय बनती दूध देती है, उससे भी हमारा फायदा है।
1: जितना आपको दूध होती है सिर्फ आप गांव तक में ही बेचते हैं, या तो आपका मांग है कहीं होटल में या तो कहीं रेस्टोरेंट में?
0: जी होटल में तो मांग नहीं है, लेकिन हम गांव से अलग बाहर दूध बेचते हैं
1: जी।
0: गांव में भी बेचते हैं, लेकिन उससे आगे भी थोड़ा अगला गांव में
1: भी व्यवसाय फैला हुआ। आपका दूध हर जगह मांग होती है
0: जी,
1: खास करके आपको, आप लोग को त्यौहार में तो ज्यादा मांग होती होगी
0: जी। दूध तो
1: जैसे
0: दूध तो सबके घर में उपयोगी है, त्यौहार हो तो पूजा करने के लिए, किसी के घर पार्टी हो तो कुछ अलग फंक्शन में दूध का उपयोग होता है, और दूध मतलब हर एक के घर में अभी उपयोग होता है, तो दूध से मतलब हम लोग।
1: अच्छा बता सकते हैं कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसमें आपको ज्यादा आमदनी होता है दूध से?
0: जी हाँ, ईद में हम लोग का दूध अच्छा बिक्री होता है, छठ पूजा में अच्छा बिक्री होता है
1: जी। आने वाली ईद में तो उम्मीद है कि अच्छा आमदनी होगी
0: जी,
1: तो होता
0: जी, दिवाली में भी होता है और दुर्गा पूजा में होता है। दूध हर एक पूजा में अनिवार्य है, दूध हर एक पूजा में चढ़ावा के लिए, तो ऐसा नहीं है कि कोई त्यौहार में दूध का मांग नहीं है, सब हर एक त्यौहार में दूध का मांग होता है
1: जी। जी
0: पूजा करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा दूध तो चाहिए
1: जी। जी तो इस तरह से आपका हर त्यौहार में आमदनी है, साथ ही अगर त्यौहार ना रहे तो भी आपका
0: जी
1: हर दिन आमदनी, दूध पहुंचा के भी आपका आमदनी हो जाती है
0: जी।
1: इस तरह से बहुत सारे फायदे हैं
0: जी।
1: और भी क्या फायदे आपको नजर आते हैं पशुपालन में? जैसे आपका खेती बाड़ी भी हो जाता है, दूध भी होता है, और भी कुछ फायदा नजर आता है?
0: अगला लड़का को देखिएगा कि थोड़ा बेरोजगारी महसूस करता है, वैसा हम लोग में नहीं है
1: जी। जी
0: हम लोग एक रोजगार के रूप में यहाँ पे कार्यरत है
1: जी। जी
0: हम लोग को शुरू से रोजगार का प्राप्ति है, अगर वैसा कोई काम न मिला तो गाय बैल का काम हम लोग का,
1: पशुपालन आप आराम से कर सकते हैं, बेरोजगारी दूर हो सकती है। अच्छा, ताकि ये जानना चाहेंगे कि आज के युवा लोग होते हैं अपने व्यवसाय को छोड़ के, जैसे पशुपालन छोड़ के वो बाहर चले जाते हैं, और अच्छा अपना घर में काम रहते हुए बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, उसके लिए आप संदेश में क्या कहना चाहेंगे, पशुपालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
0: जो गांव में रहते हुए बाहर चले जाते हैं उसका कुछ प्रॉब्लम होता है कि पैसा आमदनी नहीं आ जाता है, थोड़ा उसको दिक्कत होता है, आर्थिक तंगी होती है, तो वो लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं, तो उन लोग का जाना ठीक है, लेकिन एक बार हम उन लोग को सलाह देना चाहेंगे कि कम से कम एक बार आप लोग पशुपालन कीजिए, पशुपालन करना चाहिए, और थोड़ा पशुपालन करने से फायदा है कि दूध बिक जाता है, दूध बेचने से आपका जो बेरोजगारी है वो दूर हो जाएगा, और मतलब कृषि वगैरह करने से आपका अनाज का उपयोग हो जाएगा, मतलब पशुपालन करते हुए कृषि भी कर सकते हैं आप, ताकि बेरोजगारी दूर हो जाए, आप बाहर जाने से बचिएगा, आपको घर में ही रोजगार प्राप्त

0: होगा। यहाँ तक तो सरकार भी पशु पालने के लिए बहुत सारी योजना निकाल रही है, लोन दे रही है, तो एक बार क्यों ना लोन लेके शुरू करनी चाहिए।
1: सही बताएं तो प्रमोद जी हमारे इस कार्यक्रम में आए और पशुपालन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी और अपना बेशकीमती समय दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: तो देखिए अभी हम लोग जानकारी सुन रहे थे कि गर्मी के दिनों में पशुओं की देखभाल किस तरह से किया जा सकता है और यह आमदनी का जरिया हो सकता है, और जानकारी दे रहे थे प्रमोद यादव और इनसे बातें कर रहे थे संतोष कुमार दास।
3: तो देखिए बहुत अच्छी जानकारी थी और हमें उम्मीद है कि जानकारी सुन के जरूर हमारे जो युवा भाई बहन है वो पशुपालन से जुड़ेंगे, जो लाभ बताया गया है वो लाभ से जरूर फायदा लेंगे।
2: जी बिल्कुल। और अभी देखिए कि खेतों में जो भी हमारे फसल लगे हुए हैं तो अभी समय है उन फसलों की देखभाल करने की।
3: बिल्कुल।
2: कि अभी देखिए मौसम तो आए समय बारिश हो ही जा रही है और ऐसे में क्या है कि कहीं कहीं अगर पत्थर वगैरह पड़ जाता है तो उसमें क्या है कि फसल हमारा खराब हो सकता है।
3: बिल्कुल।
2: तो इन सब चीजों पे ध्यान देना है कि जो भी फसल अगर काट के हटाने लायक है तो उन्हें तुरंत खलिहान में ले ही आना चाहिए, खेत से हटा देना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि जहाँ अगर पानी की जरूरत हो रही है यानी सिंचाई की जरूरत है तो हम लोगों को सिंचाई की व्यवस्था रखनी चाहिए, क्योंकि बारिश ऐसा नहीं है कि हर समय बारिश होती ही रहेगी, तो हम लोगों को ध्यान ये देना है सिंचाई पे।
3: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही एक जरूरी बात बताना चाहेंगे, फसल बीमा योजना जरूर करा लें, क्योंकि समय समय पर देखिए प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है और हमारे फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, जो हमारी जो नुकसान होती है उससे जो हमारा भरपाई हो सकता है, तो कोशिश करनी चाहिए सभी किसान भाई बहनों को कि अपने खेतों में फसल बीमा योजना जरूर से जरूर करा लें।
2: बिल्कुल। और अब देखिए देखते ही देखते समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो कार्यक्रम खेती बारी से मुझे नाहमता को
3: और संतोष को
2: दीजिए इजाजत।
3: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोक। प्रस्तुति थी प्रशांत गौरव की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनसरोकार के विषयों पर संवेदनशील हैं। सोशल मीडिया पर मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री ने आज पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत को हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के इकौनी गांव के 3 अनाथ बच्चों को शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। इसके बाद उपायुक्त ने गांव पहुंचकर अधिकारियों को सरकारी योजनाओं से बच्चों को जोड़ने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि ये 3 बच्चे माता पिता के गुजरने के बाद परेशानी में हैं। प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। इसे लेकर आज रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के समीप पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक राजेश कच्छप और सुरेश बैठा समेत पार्टी के कई नेता मौजूद थे। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने आज रामगढ़ व्यवहार न्यायालय परिसर में वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर और मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस दौरान न्यायमूर्ति रोशन ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया। झारखंड समेत देश भर में आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर गुमला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर सिविल सर्जन डॉ. शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि डेंगू संक्रमित मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलने वाली गंभीर बीमारी है, जिससे

0: सतर्कता और साफ सफाई के माध्यम से आसानी से बचाव किया जा सकता है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेहनत कश।

कार्यक्रम मेहनत कश सुन रहे सभी श्रमिक भाई बहनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही शगुफ्ता का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। तो चलिए अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं आगे और जानते हैं कि भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने मिलकर महिला श्रमिकों के उत्थान, सुरक्षा और आर्थिक मजबूती के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे ई श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। इनके तहत पेंशन, मातृत्व लाभ और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न स्तरों पर महिला श्रमिकों के लिए संचालित प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में आइए जानते हैं। पहला है असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए केंद्रीय योजनाएं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह योजना असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक पेंशन योजना है। 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच जुड़ने पर 60 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं को 3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन मिलती है। ई श्रम पोर्टल, असंगठित क्षेत्र जैसे घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर की महिलाओं को इस पोर्टल पर पंजीकरण करके बीमा सुरक्षा और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए यह योजना है। इसके तहत पहले बच्चे के जन्म पर पोषण के लिए ₹5,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। दूसरा है राज्य स्तरीय श्रमिक कल्याण योजनाएं। यदि आपका पंजीकरण राज्य के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में है तो आपको निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं, जैसे मातृत्व प्रसूति सहायता, महिला श्रमिकों को सुरक्षित प्रसव और पोषण के लिए कई राज्यों में ₹15,000 से लेकर ₹16,000 तक की आर्थिक मदद दी जाती है। मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान या कल्याण योजना, कुछ राज्यों में पंजीकृत महिला कामगारों को साड़ी, बर्तन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीद के लिए प्रति वर्ष वित्तीय सहायता दी जाती है। शुभ शक्ति योजना या कन्या विवाह सहायता, महिला श्रमिकों की बेटियों की उच्च शिक्षा या विवाह के समय रुपए

49,000 से रुपए 51,000 तक का अनुदान दिया जा सकता है। श्रोताओं, बातें तो हम आगे भी करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, उम्मीद है आपको ये गीत जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए, इस प्यारे से गीत के बाद हम अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं आगे और जानते हैं कि क्या है महिला उद्यमियों और स्वरोजगार के लिए योजनाएं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अपना खुद का छोटा व्यापार जैसे सिलाई, बुटीक, कृषि आधारित काम शुरू करने वाली महिला श्रमिकों को बिना गारंटी के ₹10 लाख तक लोन मिल सकता है। दूसरा है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, पारंपरिक महिला कामगारों जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनने वाली को मुफ्त प्रशिक्षण और टूलकिट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हमारी बहनें इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपनी नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र या राज्य श्रम विभाग के कार्यालय या योजनाओं से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट जैसे ई श्रम पोर्टल या माई स्कीम प्लेटफॉर्म पर जाकर आवेदन कर सकती हैं और इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठा सकती हैं। तो इस जानकारी के बाद आइए सुनते हैं एक जरूरी संदेश।

0: তা টেলিলক অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in या টোল ফ্রি নম্বর 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये सुनते हैं भेंट वार्ता। अग्निशामक के यंत्रों से जान माल की सुरक्षा के उपाय। भेंट वार्ताकार है मोहम्मद सोहराब खान और भेंट करता है प्रमेंद्र कुमार मिश्रा।
5: श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि सरकारी, गैर सरकारी और निजी भवनों में लगाया गया अग्निशामक यंत्र सुरक्षा की दृष्टि से काफी जरूरी है। और यह क्या चीज है, यह कैसे काम करती है, इन सभी सवालों के जवाब हेतु आज हम बातचीत करते हैं मोहम्मद सोहराब खान जी से, और ये बताएंगे कि यह क्या चीज है और यह कैसे काम करती है। तो सबसे पहले सोहराब खान जी, आपको हमारा और हमारे आकाशवाणी की तरफ से नमस्कार, आदाब।
6: सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
5: हम ये जानना चाह रहे थे कि आप जो है अग्निशामक यंत्र के रखरखाव के बारे में आप बहुत सारी जानकारी आपके पास है और आप लोगों को जागरूक भी करते हैं, और आपका एक दुकान भी यहाँ पर है इंदरपुरी से थोड़ा आगे
6: पगमल रोड में, जो विशाल मेगा मार्ट है। अच्छा, उससे जस्ट आगे में, राइट हैंड साइड में।
5: तो आप जो है सो इस के बारे में आप ये बताएं कि आपने कहाँ से शिक्षा दीक्षा लिया, अभी तक आप कहाँ कहाँ तक क्या पढ़ाई की है, इसके बारे में बताएं।
6: हमारा जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री है इकोनॉमिक्स में। उसके बाद जस्ट हमने अच्छे परसेंटेज नहीं आने के कारण मैं नेट और आगे पढ़ाई चालू नहीं रख सका, तो हमने एक अलग सेक्टर जो कि फायर से रिलेटेड था, सेफ्टी से रिलेटेड था, उसका एक कोर्स किया जो कि जमशेदपुर में न्यू यूनिशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उससे हमने डिप्लोमा का कोर्स किया फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का। और गुजरात से ही फिर मैंने एक एडिशनल कोर्स किया डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। छोटी छोटी जो भी डिग्रियां होती है उससे हमने अपने आप को अपडेट किया।
5: सोहराब खान जी, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो इसके जो तकनीकी पहलू हैं और इसके साथ साथ जो व्यवहारिक पहलू हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो आपके हिसाब से या तकनीकी जानकारी के हिसाब से आग के कितने प्रकार होते हैं?
6: देखिये, आग के प्रकार के जानने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि आग होता कैसे है, लगता कैसे है। आग अचानक नहीं लगता है, उसके लिए मिनिमम तीन चीज़ का होना ज़रूरी है। सबसे पहले ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ में कोई ईंधन, आग को जलने के लिए कोई फ्यूल या कोई ईंधन का होना ज़रूरी है। ये दो चीज़ होने के बाद तीसरा चीज़ आता है हीट का, यानी कोई गर्मी का। अगर वो तीन चीज़ जब तक एक साथ नहीं रहता तब तक आग लगेगा ही नहीं। और ये तीनों चीज़ का एक चेन है जिसको फायर ट्रायंगल हम लोग कहते हैं, इसमें फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये तीनों चीज़ आता है। अगर कहीं भी आग लगती है तो सबसे पहले हम लोगों को उसका हीट को रिमूव करना पड़ता है।
5: अच्छा, तो उसको कैसे करते हैं?
6: उसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर के माध्यम से करते हैं और देखते हैं कि क्या, अगर कोई बंद कमरे में आग लगी है तो उसका एग्जॉस्ट, उसका विंडो खोल करके हम लोग उसके हीट को, पैकिंग जो रहता है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है उसका फ्यूल को रिमूव करना। अगर जहां आग लगी हुई है और वो छोटा सामान कोई रखा हुआ है और उस कमरे में या उस ऑफिस में बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ, तो कोशिश करते हैं कि जिसमें और आग लग सकता है, तो ये कॉमन सी चीज़ हर घर में, अगर कहीं भी आग लगता है तो घर वाले जो आग लगा हुआ उसको तो नहीं बजाते हैं, पहले जो नहीं लगा उसको उठा के ले आते हैं। उसका दो सेंस है कि उनकी जो बेशकीमती सामान है वो बच जाए, और दूसरा आग और ना लगे उसके लिए कोई सामान ही ना बचे, तो ये दो चीज़ बचती है। तीसरी चीज़ है ऑक्सीजन को हटाना। ब्रह्मांड पूरा ऑक्सीजन भरा हुआ है लेकिन उसको हटाने का कोई माध्यम नहीं है, हम लोग यही जानते हैं।
7: दो तिहाई जो है पृथ्वी में पानी भरा हुआ और बाकी ब्रह्मांड में ऑक्सीजन तो बहुतायत है,
6: तो उसको हटाने के लिए ही जो स्रोत का यूज होता है उसको हम लोग अग्निशामक यंत्र कहते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जाना जाता है, जो मैक्सिमम ऑफिसेज कॉरपोरेट और गवर्नमेंट ऑफिसेज में कंपलसरी है कि इसको रखना ही रखना है, जो हमारे जान माल दोनों का सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा चीज आता है कि इसका क्यों जरूरत पड़ता है फायर एक्सटिंग्विशर का, तो सबसे पहले हम लोगों को कितने तरह का फायर होता है उसको जानना जरूरी है, और किस फायर को, किस आग को, किस एक्सटिंग्विशर से, किस अग्निशामक यंत्र से बुझाने के रूप में आता है उसको जानना जरूरी है, और कैसे हम एक अग्निशामक यंत्र को इस्तेमाल करें ये जानना जरूरी है, और इसका रख रखाव सबसे बड़ा है, इसका रख रखाव कि किस तरह से हम इस फायर एक्सटिंग्विशर को रख रखाव करें कि ये लंबे समय तक सर्विस दे सके, अपना योगदान दे सके, और मेन जब समय जब काम करता है
7: जी,
6: जब जरूरत पड़ता है इसका, उस जरूरत में ये काम ही अगर ना आए तो वो कैसे हम कहेंगे ये अग्निशामक यंत्र का हम लोग इस्तेमाल कर पाए।
7: तो यहाँ दो बातें हुई कि अग्नि के प्रकार के हिसाब से, जैसे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो बीमारी के हिसाब से दवा देते हैं,
6: जी,
7: तो
6: जी,
7: क्या
6: जी।
7: उसी तरह से है कुछ कि अग्नि किस प्रकार से जली हो और उसमें हम उस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर
6: जी हाँ जी एकदम आप सही फरमा रहे हैं। जितने तरह पहले हम क्लास ऑफ फायर के बारे में बात करते हैं, उससे पहले कि जो अग्निशामक यंत्र है उसका इस्तेमाल कोशिश करें कि वैसा नौबत ही ना आए कि हमको उसको इस्तेमाल करना पड़े
7: जी, ये तो
6: सबसे पहला एहतियात जो हम लोग बरतते हैं, क्योंकि एक छोटा सा फैमिली है, आज के टाइम में हर घर में एक गैस मिलेगा ही, स्टोव हीटर ये सब जनरल यूज की चीजें हैं वो हर घर में रहता ही है, तो घर के जो भी लेडीज हैं या जो भी जेंट्स हैं, आजकल हॉस्टल में लड़के लोग कोई भी खाना बनाने के लिए वो सब सामान रखते हैं जो अत्यंत ही ज्वलनशील रहती है, और उससे भी आग लगने का संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। तो पहला चीज़ है कि हम लोग प्रिवेंट करें उस चीज़ को कि कैसे उससे बचा जाए, हो जाने के बाद तो क्योर कोई भी कर सकता है, उसके बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों को अगर आग से बचना है तो सबसे पहले एक गुड हाउसकीपिंग का कंसेप्ट दिमाग में रखना होगा कि कौन सा सामान कहाँ रखना है। ऐसा नहीं है कि जहाँ हमने ज्वलनशील पदार्थ रखा है वहीं हम कोई चलती हुई मोटर रखे, या फिर माचिस या जलाने का कोई सामान ज्वलनशील पदार्थ भी रख दी हो, कि दोनों इन फ्यूचर में कभी भी अगर ऐसा होता है कि आग लगा तो वो दोनों एक दूसरे का साथ दे करके,
7: जैसे कहा जाता है कि आग के बगल में बारूद नहीं रखना चाहिए,
6: जी जी वही है,
7: या कोई हीट है उसके बगल में हम माचिस ना रखें,
6: जी जी जी,
7: तो
6: जी,
7: ये तो हो गया कि मुसीबत को बुलावा अगर
6: बुलावा देते
7: हैं तो फिर फिर हम उससे फिर कैसे बचेंगे।
6: तो अब गुड हाउसकीपिंग के कंसेप्ट के बाद जस्ट दूसरा चीज था, आज के टाइम में जो कि बहुत ही बुरी चीज है धूम्रपान, जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको तो नुकसान होता ही, बास में बगल वालों को भी नुकसान होता है जो उनके आसपास में रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनका ये एक आदत सी बन गई है, और जो कॉरपोरेट में वो लोग काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा चीज़ ये किया गया है कि उनके लिए एक अलग से प्लेस दे दिया जाता है।
7: अच्छा ये हो गया कि अभी आप बताए कि जैसे अगर हम गुड हाउस कीपिंग करते हैं, अगर सही सामान को सही जगह पर रखते हैं तो आग लगने की संभावना कम हो जाती है, लेकिन आग के प्रकार कौन कौन से हैं और कौन कौन से आग में हम किस तरह के अग्नि सामग्री यंत्र का हम प्रयोग करेंगे।
6: देखिए अभी जो अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग में फायर को 5 भागों में बांटा गया है, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी एंड क्लास के। क्लास ए फायर में हम लोग कपड़ा, लकड़ी, पेपर, रबर इत्यादि से, प्लास्टिक इत्यादि से जो आग लगता है उसको हम लोग क्लास ए फायर में रखते हैं, और इसका जो फायर एजेंट है वो है पानी। ऐसा नहीं है कि अगर ये इन चीज़ों पे अगर आग लगती है तो आप काफ़ी कॉस्टली मटेरियल आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फॉर्म टाइप गैस, वो काफ़ी महंगा आता है। तो इस चीज़ों में हम उसका इस्तेमाल ना करें, पानी हम इजली हम इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है क्लास बी फायर, जो कि मोटर गैसोलीन और अल्कोहल टाइप का फायर होता है, जो इन ईंधन के द्वारा आग लगता है उसको हम लोग क्लास बी फायर में रखते हैं। इसको हम लोग ड्राई केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा सकते हैं। तीसरा आता है क्लास सी फायर, जो कि इलेक्ट्रिक के द्वारा आग लगता है। इसको कभी भी हम लोग फायर को, इस तरह का फायर को हम लोग पानी से ना बुझाएं, क्योंकि इसको ग्राउंड कंडक्ट मिल जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके लिए स्पेशली ड्राई केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उसको हम लोग इस्तेमाल करना पड़ता है। चौथा आता है क्लास डी फायर, जो कि सोडियम और पोटाशियम मैग्नीशियम का से बना फायर को कहते हैं। और पांचवा और अंतिम जो है क्लास के फायर होता है, जो कि किचन और किचन के जो ग्रीस और ऑयल से जो आग लगती है उसको क्लास के फायर में रखते हैं।
7: तो अब हम किसी भी अग्निशामक यंत्र को हम उसको जो इस्तेमाल करते हैं उसका पद्धति क्या है उसका?
6: पहला अग्निशामक
7: के होते हैं,
6: अग्निशामक यंत्र को इस्तेमाल करने से पहले हम ये बात करेंगे ये कितने तरह का होता है। ये टोटल दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड इसका इंस्टॉलेशन होता है और दूसरा पोर्टेबल होता है। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलेगा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में, सिनेमा घरों में और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग वगैरह में। ये कंपलसरी है कि आपको इस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर लगाना ही चाहिए। और आए दिनों में भी जितने मॉड्यूलर्स हैं वो लोग तो बहुत अच्छे बड़े बड़े मॉल में, बिल्डिंग में इन इसका काफ़ी अच्छा मतलब लोग लगा रहे हैं, बिल्डर फैसिलिटी दे रहे हैं। और पोर्टेबल जो है वो आपके एक छोटी छोटी गाड़ियों में जो फोर व्हीलर है उसमें भी आप पोर्टेबल देखते हैं, एक छोटा सा 2 किलो का 1 किलो का जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर रहता है वो रहता है पोर्टेबल, जिसको आप कहीं भी ले कर आ जा सकते हैं।
7: अच्छा, ये तो आप जो बता रहे हैं पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो है, इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। जब बिजली लगता है, बिजली से जब करंट उत्पन्न हो तब हम क्या प्रयोग करेंगे, और जब किचन में अगर आग लग जाए तो हम क्या प्रयोग करेंगे, इस तरह से आग के अगर प्रकार की हम बातचीत करें और उसको बुझाने के तरीके की अगर हम बातचीत करें तो वो आप बताएं कि हम किस तरह के अग्निशामक यंत्र को हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे और इसको कैसे चयन कैसे करेंगे।
6: जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का अगर
7: प्रकार का बात करें होगा, जी
6: क्योंकि पहले हम ये बात करें फायर एक्सटिंग्विशर कितने तरह का होता है। ये 5 तरह का होता है, एक वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, एक फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर और लिक्विड पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, जो स्पेशली किचन के लिए यूज होता है। और अब हमें नहीं मालूम है कि ये कौन से क्लास के फायर का एजेंट है, तो इसके लिए हमें कलर कोडिंग को ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करें तो आराम से हम अपने आग पे काबू पाने के लिए सही फायर एक्सटिंग्विशर का अग्निशामक यंत्र का चयन कर सकते हैं।
7: तो इसका कोड क्या है?
6: तो क्लास ए फायर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर मशीन में जो कलर कोड रहेगा वो रेड रहेगा। दूसरा क्लास बी फायर
7: जो पानी के लिए,
6: जो पानी, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक के लिए जो रहता था। दूसरा जो है आपका ऑयल एंड गैसोलीन जो है क्लास बी फायर, उसके लिए क्रीम कलर का कोड रहेगा, उसमें कलर कोड उसका क्रीम रहेगा, जिसको हम लोग फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तीसरा जो हमने बात किया वो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, जिसका कलर कोड ब्लू है, जो कि किसी भी क्लास के फायर पे इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा जो है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, जो मैक्सिमम ऑफिसेज वगैरह में और शॉपिंग मॉल वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका कलर कोड ब्लैक रहता है, जो ये भी तीनों तरह के, चारों तरह का जितने भी क्लास ऑफ फायर है सभी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरा रहा कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका, अभी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के अग्निशामक यंत्र अवेलेबल, पुराना जो लेटेस्ट पुराना जो टेक्नोलॉजी था उसमें ऊपर से वल्व खोलने के जैसा रहता है, वल्व को खोल करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद नोजल से प्रेशर आता है, तो उसमें बहुत दिन से अगर रखरखाव में ध्यान नहीं देते हैं तो उसको खोलने में काफ़ी परेशानी आती है। फिर उसको ध्यान में रखते हुए जो नया अभी आया है वो प्रेशर गेज के हिसाब, उसमें मालूम भी नहीं चल पाता है कि ये एक्सपायर कम कर जाता है,
7: ज्यादातर ये समस्या रहती है कि
6: जब जरूरत पड़ता है तो उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। लोग बोलते हैं कि कोई काम का नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है। कोई भी चीज अगर उसको रिसर्च करके ही बनाया जाता है और बनने के बाद उसका कभी ना कभी इस्तेमाल होता ही है।
4: इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम मेहनत कश से शगुफ्ता को दीजिए इजाजत।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना अरफन फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

यादों की कसम। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत सुरेश वाडकर की आवाज में। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है आओ प्यार करें।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण हमारे रांची केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया, प्रस्तुति थी संजीव कुमार लाल की। मिली वे 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सेवा प्रसारक
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।

0: हर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: शाम के 7 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पलामू के उपायुक्त पहुंचे हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के इकौनी गांव, 3 अनाथ बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का दिया आदेश। गयाजी परैया स्टेशन से चतरा तक नई रेलवे लाइन परियोजना को केंद्र ने दी मंजूरी। सांसद कालीचरण सिंह ने कहा, आर्थिक और सामाजिक विकास को मिलेगी गति। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जमशेदपुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया उद्घाटन। संगठन की मजबूती पर दिया बल। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों पर कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। आकाशवाणी रांची की ओर से शास्त्रीय संगीत संध्या रागांजलि का हुआ आयोजन। और आगामी 7 और 8 जून को बोकारो में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। 23 वर्ष से कम आयु वर्ग के पहलवान दिखाएंगे अपना दम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जन सरोकार के विषयों पर संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर मामला संज्ञान में आने के बाद आज पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत को हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के इकौनी गांव के 3 अनाथ बच्चों को शिक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उपायुक्त ने गांव पहुंचकर अधिकारियों को सरकारी योजनाओं से बच्चों को जोड़ने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि ये 3 बच्चे माता पिता के गुजरने के बाद परेशानी में हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के गयाजी परैया स्टेशन से चतरा तक नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने बताया कि रेलवे ने इसे विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। श्री सिंह ने बताया कि इस परियोजना से जिले में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज जमशेदपुर में 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री साहू ने कहा कि यह प्रशिक्षण अभियान कार्यकर्ताओं को संगठन के विचारधारा, कार्य पद्धति और राष्ट्र सेवा के मूल मंत्र से जोड़ने का

0: सशक्त माध्यम है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण अभियान संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं में वैचारिक दृढ़ता लाने का कार्य करेगा।
1: भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र सर्वोपरि है, इस भाव से हम पार्टी में जुड़ने का काम करते हैं और पार्टी से जुड़ करके हमारे विचारधारा है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य दलों के कार्यकर्ता अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ती है, इसीलिए हम बोलते हैं पार्टी विद द डिफरेंस।
0: प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। इसे लेकर आज रांची के अल्बर्ट चौक के समीप पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत पार्टी के कई नेता मौजूद थे। जामताड़ा जिले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट संकलित करने का कार्य चल रहा है। इस सिलसिले में एसडीएम अनंत कुमार ने आज पलाजोरी में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
2: राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उसके सशक्त अनुश्रवण के लिए वरीय पदाधिकारियों को नामित किया गया है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि पंचायतों में जाकर सभी योजनाओं को निरीक्षण करते हुए कोऑर्डिनेशन का अभाव है उसे संबंधित उनको प्रतिवेदन हम लोग को देना है।
0: राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में आज एमबीबीएस के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही अन्य छात्रों और हॉस्टल प्रबंधन ने कमरे का दरवाजा तोड़कर छात्र को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि डिप्रेशन से बचने के लिए संस्थान में जल्द ही मोटिवेशनल क्लास शुरू किए जाएंगे।
3: थोड़ा डिस्टर्ब तो था, लेकिन बच्चों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना कुछ बड़ा स्टेप ले लेगा। आश्चर्य की बात यह है कि बच्चा डबल शेयरिंग रूम में रहता था, तो उसने दूसरे को कह दिया कि आप लोग सो, हम अकेले सोएंगे। अब वो भी बेचारे नहीं समझ पाए मन में क्या चल रहा था, और ऐसा अक्सर डिप्रेशन में होता है।
0: होमगार्ड नियुक्ति परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर रांची में आज अभ्यर्थियों की ओर से पदयात्रा निकाली गई। जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में निकली यह पदयात्रा मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से शुरू हुई और समाहरणालय के मुख्य द्वार पर सभा में तब्दील हो गई। इस मौके पर श्री महतो ने अविलंब परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी रांची की ओर से आज शास्त्रीय संगीत संध्या रागांजलि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सितार वादक पंडित मोर मुकुट केडिया, सरोद वादक पंडित मनोज कुमार केडिया और तबला वादक श्रीजीत चटर्जी ने अपनी प्रस्तुति दी। इस मौके पर पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख और आकाशवाणी रांची केंद्र के उप महानिदेशक अभियंत्रण डीसी हेमब्रम समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने आज रामगढ़ व्यवहार न्यायालय परिसर में वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर और मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस दौरान न्यायमूर्ति रोशन ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया।
4: पेपरलेस काम तो धीरे धीरे अब हो ही रहा है, शुरू हो गया है। लंबित मामले में मैं यही कहना चाहूंगा, हर एक जज अपना अपना काम करे, लंबित मामले थोड़े घटेंगे। और दूसरा, केस तो घर से शुरू हो रहा है, हस्बैंड वाइफ का केस मैट्रिमोनियल 17% अभी पूरे हिंदुस्तान में। एक दूसरा साइबर क्राइम है, आदमी अपने लालच में विक्टिम हो रहे हैं और केस बढ़ते जा रहे हैं।
0: देवघर में नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि जसीडीह थाना क्षेत्र में छापेमारी के क्रम में मादक पदार्थों के 6 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि तस्करों के पास से करीब 20 किलोग्राम गांजा, मोबाइल, दोपहिया वाहन, नकदी और अन्य सामान जब्त किए गए हैं।
2: एक के पास से एक जो एफजेड का मोटरसाइकिल है उसके बाइक से कुल 172 ग्राम गांजा बरामद हुआ, तो टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 20 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है और जो गांजा खरीदने आए थे उनके पास से जो कैश की रिकवरी हुई है वो 28,500 की रिकवरी।
0: धनबाद पुलिस ने धनसार थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई एक हत्या मामले का खुलासा कर लिया है। जिले के नगर पुलिस अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि इस हत्या में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पत्थर, मोबाइल और अन्य सामान जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देश भर में आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर गुमला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि डेंगू संक्रमित मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलने वाली गंभीर बीमारी है, जिससे सतर्कता और साफ सफाई के माध्यम से आसानी से बचाव किया जा सकता है। और अब मौसम का हाल। राज्य के कई इलाकों में 21 मई तक जहां बारिश के आसार हैं, वहीं कुछ इलाकों में 22 मई तक आंधी और वज्रपात की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में फिलहाल तापमान में वृद्धि और कमी का दौर जारी है। रांची समेत राज्य के सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। आने वाले 5 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 7 और 8 जून को बोकारो में आयोजित किया जाएगा। 23 वर्ष से कम आयु वर्ग की इस प्रतियोगिता में वर्ष 2003 से 2007 तक के सभी पहलवान मेडिकल सर्टिफिकेट अथवा पैरेंटल सर्टिफिकेट के साथ भाग ले सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पलामू के उपायुक्त पहुंचे हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के एकौनी गांव, 3 अनाथ बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का दिया आदेश। गयाजी परैया स्टेशन से चतरा तक नई रेलवे लाइन परियोजना को केंद्र ने दी मंजूरी। सांसद कालीचरण सिंह ने कहा आर्थिक और सामाजिक विकास को मिलेगी गति। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जमशेदपुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया उद्घाटन। संगठन की मजबूती पर दिया बल। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों पर कई कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। आकाशवाणी रांची की ओर से शास्त्रीय संगीत संध्या रागांजलि का हुआ आयोजन। और आगामी 7 और 8 जून को बोकारो में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। 23 वर्ष से कम आयु वर्ग के पहलवान दिखाएंगे अपना दम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पाकुड़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता।
1: पाकुड़ जिले के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में जनगणना का काम जोर शोर से चल रहा है। डिजिटल जनगणना के तहत मकानों की गणना एवं सूचीकरण कार्य को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। इस पर बात की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने।
2: इसमें स्पेशल ये है कि पूरी तरह से डिजिटल है। इसमें ऐसी कि दो चरण हैं, एक मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना पहला चरण और दूसरा है जनसंख्या।
1: गांवों एवं शहर में व्याप्त पेयजल एवं विद्युत समस्या के निदान की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस पर पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के अनुग्रहित प्रसाद शाह ने।
3: आज पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और पूरे जिले में चापाकल बंद पड़े हैं। सौर ऊर्जा से संचालित जितने भी जलापूर्ति योजना है वो सब बंद पड़ा हुआ है। इसकी चिंता सरकार को न है न प्रशासन को है। शहरी जलापूर्ति योजना ये लंबे समय से चल रहा है इसका काम, लेकिन आज तक उसका काम पूरा नहीं हुआ। जल तो आ गया अब शहर तक, लेकिन घर घर में अभी तक पानी पहुंचा नहीं। सरकार की उदासीनता के कारण ये धीमी गति से चल रही है। इसी प्रकार लिट्टीपाड़ा में जो महत्वाकांक्षी योजना है ग्रामीण जलापूर्ति योजना, बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना, वो महत्वाकांक्षी योजना जो रघुवर सरकार के समय में शुरू हुआ था, आज तक वो योजना बंद पड़ा हुआ है। वहाँ के आदिवासी पहाड़िया जनजाति लोग आज नाला नदियों का पानी पीने के लिए मजबूर हैं और

0: क्यों चलकर जाकर पानी लाते हैं।
1: बकाया वेतन भुगतान सहित कई मांगों को लेकर ऊर्जा मित्रों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और अपने मांगों से संबंधित ज्ञापन कार्यपालक अभियंता विद्युत कार्य को सौंपा। इस पर बात की ऊर्जा मित्र दिवाकर चौबे ने।
2: 3 महीने के बाद ही हम लोग को पिया परेशान मिलना चाहिए कि फिर भी कंपनी आज देंगे कल देंगे करते करते करते करते 22 महीना पार कर दिया और अभी पता लगा कि ये लोग पीएफ देने के मूड में नहीं है और साथ साथ हम लोगों का पीएफ के बदले में एवज में हमारा वेतन भी काट लिया है।
1: महंगाई के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पर बात की झारखंड मुक्ति मोर्चा नेत्री उपासना मरांडी ने।
3: आप ये भी नहीं कर सकती, सरकार की युद्ध के चलते गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है। इनके मन में, केंद्र सरकार के मन में ये चोर जरूर था, तभी जब सारे राज्यों में हमारे चुनाव हो गए के बाद जब रिजल्ट आ गए, सरकारें बन गई 22 हमारे राज्य में, पूरे देश में जब भाजपा की सरकार बन गई तब इन्होंने ये नीति लागू की मई 1 को, जब सारे इलेक्शन खत्म हो गए और सीधे 993 रुपए का जो वृद्धि किया गया है वो बिल्कुल भी हम लोग बर्दाश्त करने के लायक नहीं है ये वृद्धि। और साथ ही जो कमर्शियल जो सिलेंडर का किया गया है उसका कहीं ना कहीं बोझ जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, जो मध्य आय वर्ग के लोग हैं, उन पे पड़ेगा।
1: पाकुड़ पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
4: अभी आप सुन रहे थे पाकुड़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्य।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

सुखविंदर सिंह की आवाज में अभी आपने सुना तेरे नाम फिल्म का ये गीत। आइए अगला गीत सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है इक्का राजा रानी।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। रात्रि के 7:30 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

कार्यक्रम का पहला नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है बादशाह।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाहत सुन रहे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत है, साथ ही शगुफ्ता का प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए श्रोताओं, फरमाइशी गीतों के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

बचना ए हसीनो, अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत सुखविंदर सिंह शेखर और हिमानी कपूर की आवाज में। और इस गीत को सुनना चाहा था लाखी शरीफ से मोहम्मद गुलाम हसन, मोहम्मद गुलाम सरवर, जामा मस्जिद रोड हजारीबाग से मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, शराफत हुसैन, बिल्किस फातिमा, कनीस फातिमा, यास्मीन फातिमा और शहनाज फातिमा। चेपाकला बड़कागांव से इसी गीत को सुनना चाहा था श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती सभ्या ठाकुर, दिलेश्वरी, श्री भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जीतेश आदर्श, अनुराधा रूपमणि और प्रियंका दीपिका। छत्तीसगढ़ बाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से

कभी कभी। श्रोतो, आखिरी फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, और इस गीत को सुनना चाहा था नया टोला भीखनपुर भागलपुर से। आप हैं गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा पासवान, विकास पासवान, नितिन पासवान और मनोज पासवान। इसी गीत को सुनना चाहा था लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, धनक शमरो साहू, इंदिरा विहार रायगढ़ से अक्रम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां और वलीउल्लाह नूरजहां, बुलंदशहर से हैं बदरू अली अंसारी, फर्जू अली अंसारी और फर्जी वली अंसारी, लुधियाना पंजाब से इसी गीत को सुनना चाहा था अमरजीत सोनम कौर और परमजीत आदिबा कौर। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। फिल्म का नाम है अंदाज अपना अपना और इस गीत को सुनना चाहा है जीटी रोड पर ही से सीताराम मालाकार, इंदु देवी, कैलाश भगत, अनीता देवी, हर्षिका रानी, पूनम और कुसुम। झुमरी तिलैया से हैं जगन्नाथ प्रसाद साहू। दिल्ली शहर मोरी गेट से हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। तो आइए इन सब की पसंद पर सुनते हैं फिल्म अंदाज अपना अपना का ये गीत।

आवाज़ी है श्री राम की और फिल्म का नाम है ये जवानी है दीवानी। इस गीत को सुनना चाहा है रेंज ऑफिस बरही से वासुदेव मालाकार, संगीता देवी, अनुपमा कुमारी, अंजलि मालाकार, गंगा मालाकार, ज्योति कुमारी और सभी परिवारगण। अहमदाबाद से हैं जतिन मेहता, बालचंद वटके, फुलवा मेहता, विकास वटके और नीलेश वटके। सीसीएल बरकाकाना से रविंद्र वर्मा, अमन वर्मा, आरती वर्मा, उर्वशी वर्मा, रिया वर्मा, परी, कोको, चारू और आरके वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहा है माली टोला खिरगांव से। आप हैं वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित भगत, अनिकेत भगत, ऋषि और राहुल।

आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की। फिल्म का नाम है बाहर आने तक और इस गीत को सुनना चाहा है पंचमंदी रोड हजारीबाग से कलाम अहमद आरजू, नीलोफर परवीन आरजू, हबीबा खातून आरजू, कहकशा परवीन आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू और शमा परवीन आरजू। बरका खाना से हैं मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, शाहिन सुल्ताना, अफजाल ताज और तस्नीम। आदर्श नगर मलोट से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सोख शर्मा, शाइना शर्मा और निमान शर्मा। रेलवे स्टेशन हजारीबाग से हैं शमीम अहमद, निखत परवीन, एहसान अहमद, तहसीन बानो, आरजू परवीन, नसीम अहमद, खलील अहमद और निसार अहमद। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म बाहर आने तक का ये गीत।

बधाई हो। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत गुरु रंधावा और नेहा कक्कर की आवाज में, और इस गीत को सुनना चाहा था भुरकुंडा से रानी, दिया, प्रकाश, शोभित, रूपा, संध्या, मृदुला और ढेर सारे दोस्त। अमरावती महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनना चाहा था कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा, सालिया, सोएब खान, मुस्तुबा खान, रऊब और शाहिद। गानीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक और परिवार के सभी लोग। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। डामाडी हरली से इसी गीत को सुना चाहा था उमेश चंद पांडे, शंभु चंद पांडे, अनिल चंद पांडे, साकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, शमी, अपराजिता, अपूर्वा, टोकू एवं समस्त पांडे परिवार।

आवाजी है सोनू निगम और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम है अंश और इस गीत को सुना चाहा है मेन रोड बड़का गांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोलू बाबू एवं ढेर सारे साथीगण। औरंगाबाद से हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। रातुराज राजी झारखंड से हैं सचिनानंद दुबे, नटवर निर्मोही, कुमार दिवाकर और सत्यम सावरिया। सौदागर मोहल्ला रामगढ़ से हैं महबूब आलम, शबनम नूरी, मकसूद आलम, शहनाज नूरी, पाकिजा बेगम, महमूद आलम, महफूज आलम और शमशाद बेगम।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे सुनेंगे News@9 और 9:15 पर सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे

0: भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी।

0: हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और योग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक

अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी या किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

फिल्मी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का। लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल और आज के फनकार हैं इनके बेटे जाने माने अभिनेता विकी कौशल।

विकी कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विकी कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विकी कौशल को फिल्मों का माहौल घुट्टी में मिला था।

विकी कौशल की माँ वीणा एक गृहिणी है और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और उसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाए। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज गायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान। और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की।

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव ते चिकन खुराना, इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

0: 2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।
1: वर्षा

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, अपनी ट्यून क्या है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र और आप लुत्फ उठा रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा का।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना अब्दुल्ला फिल्म का ये गीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, मन्नडी और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बॉबी।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार।

श्रोताओं, आज के हमारे फनकार हैं गीतकार किशोर कुमार, तो आइए सुनते हैं उनके गाए हुए कुछ गीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के फनकार।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
1: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhoomi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है. मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं. इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा.
2: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashvani, the Ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations. Head of Engineering and Product Development at Artifacts in Sweden, Per Stenfeldt, expressed optimism about stronger industrial collaboration and greater business opportunities between India and Europe arising from the India-European Union Free Trade Agreement. Electronics manufacturing company Tata Electronics and Dutch semiconductor equipment major ASML have joined hands to enable chip manufacturing in India. The pact was announced during Prime Minister Narendra Modi's visit to the Netherlands. ASML is known for having a monopoly in a category of lithography equipment which is critical for production of advanced small-size semiconductors. A Delhi court today sent the prime suspect in the NEET paper leak case P.V. Kulkarni and another accused Manisha Wagmare to CBI custody for 10 days. Special CBI judge Ajay Gupta ordered the remand after the probe agency submitted that the DO needed to be taken outside the national capital for further investigation and that the larger conspiracy had to be investigated. In IPL cricket, chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans were 177 for 1 in 16 overs against Kolkata Knight Riders in Kolkata when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 245 for 2 in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
3: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। यही संपन्न होता है हमारा आज का प्रसारण। प्रातः 5:53 पर हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।